107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, शक संवत 1948, तदानुसार 24 जून सन 2026।

में राम क्षण क्षण में श्याम हो, मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान।

करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, सुमंगलम सुप्रभात। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:01 हो रहे हैं और आपकी मित्र तरुश्री आप सभी के समक्ष उपस्थित है भक्ति भावों से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। तो चलिए सदैव की तरह इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ।

श्रोताओं, भक्ति वो ज्योति है जो हमारे अंतर मन को प्रकाशित करती है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल सच्चे मन और प्रेम की आवश्यकता है। जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो जीवन में कोई कठिनाई हमें रोक नहीं पाती।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ, ओनली ऑन FM रेनबो। आस्था वो शक्ति है जो पत्थरों को भगवान बना देती है। ये विश्वास का वो दीप है जो जीवन की हर अंधेरी रात को रोशन करता है। जब आस्था गहरी होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की इच्छा में स्वयं को पूरी तरह से अर्पित करना। जब हम पूरी निष्ठा से समर्पण करते हैं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। आइए सुनते हैं प्रभु के नाम एक और मधुर भजन।

श्रोता, भक्ति में वो ताकत है जो जीव को संसारी विषय विकारों से सुख नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा के सुख में पहुंचा देती है। परम सुख स्वरूप, परम रस स्वरूप परमात्मा के अनुभव में जगा देती है। और जब कृष्ण भक्ति की बात होती है तो बस यही आस होती है कि जरा पास में बैठो

श्रोताओं, अब समय हो रहा है कि ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यात्रा समापन से पहले एक मधुर भजन आप सभी के लिए पुष्पांजलि प्रोग्राम में। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को कतर के रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को कतर की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनपदों में

अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कल कहा कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ऐसे में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, विद्युत आपूर्ति, फसली ऋण तथा वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों के 956 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदा बहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

ये महफिल उन पुरानी यादों की जो आज भी हमारे दिलों की धड़कनों में बसी हुई है। तो आइए इन मधुर गानों के सफर को आगे बढ़ाएं, जिनकी मिठास वक्त की धूल को चीर कर भी आज भी ताजा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्रोग्राम सदाबहार गीत में। मैं हूँ आपकी दोस्त तरुश्री, रहूंगी आपके साथ इस पूरे घंटे खूबसूरत गीतों के साथ।

दोस्तों पता है कि आजकल गर्मी इतनी हो रही है, आप लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन आज सुबह एक अजीब सा सरप्राइज मिला मुझे। जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो आसमान थोड़ा सा धुंधला था, जैसे अक्सर इस 5 बजे की भोर में उजाला हो जाता है ना, वो नहीं मुझे मिला। मुझे लगा शायद आज मुझे ही, शायद मैं कुछ जल्दी उठ गई क्या, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये आसमान में आज बादल ने घेराव कर रखा है। तो हम निकल पड़े अपने स्टूडियो की तरफ और रास्ते में सरप्राइज जो था वो ये कि 2-4 बूंदे ऐसे हथेली पर गिरी, तो मुझे लगा अरे ये तो बारिश होने लगी।

दोस्तों, तो मौसम तो लवली लवली हो रहा है और मौसम में ये जो मस्ती है अलग ही मस्ती है। और ऐसे में अगर कोई चुपके से बिना बताए कहीं जा रहा हो तो उन्हें बीच रास्ते में रोकना तो बनता है, क्योंकि जब सफर इतना हसीन हो तो अकेले जाने की जिद भला क्यों।

दोस्तों वेलकम बैक, 7:22 का वक्त और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ। अच्छा मौसम, अच्छे गाने, ये जब सवेरे सवेरे मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और आपका दिन अच्छा गुजरे ये हमारी पूरी प्रयास, ये जो हमारा है ना प्रयास, ये पूरा प्रयास रहता है, पूरी कोशिश रहती है। और अगला जो मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ वो बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है और अक्सर हम लोग ने कई बार गुनगुनाया है। और वैसे भी इन सदाबहार नगमों की खासियत ही यही है कि जब भी आप सुनते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं, जैसे कि ये वाला गाना। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ये म्यूजिक सुन के अंदाजा लगा लिया कि ये गाना कौन सा है, हम तो आपके आशिक हो गए। फटाफट हमें मेल करके बता भी दीजिए कि क्या आप ये पहचान गए गाना। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

सच्ची सच्ची बताना कितने लोग पहचान गए थे ये गाना म्यूजिक सुन के। और वैसे सच बताऊं तो कुछ लोगों का मेल भी मेरे पास आ गया कि हाँ सच में आंसर तो सही बताया उन्होंने, लेकिन हो सकता है उन्होंने सुनने के बाद भेजा हो। आपका क्या ख्याल है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो श्रोता है ना वो बहुत ही प्यारे हैं और उन्हें पता चल जाता है हमारे मन की भावना क्या है, तो इसीलिए इसी बहाने आपसे बातचीत हो जाती है, इस मेल के बहाने आपसे मेल मिलाप हो जाता है ना। और ये जो प्रोग्राम है ये इसी पर तो आधारित है, बहुत खूबसूरत से गाने, मोहब्बत भरी बातें, और ये जो अंदाज़ है आप लोग इतना प्यार भरा मेल भेजते हैं ना कि एक एक लव्स मेरे दिल को छूता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सारे मेल्स पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ा ही प्यारा सा गीत है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर मोहब्बत में तकरार ना हो तो प्यार का मज़ा थोड़ा सा फीका रह जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना जब कोई अपना बहुत शिद्दत से रूठता है तो उन्हें मनाने का अंदाज़ और भी हसीन हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना हुजूर आप चाहे जितना भी रूठ कर दूर चले जाइए, दिल जो है ना आपका वो हमें आपकी ओर खींच के ले आएगा, या आपका दिल हमारी ओर खींच के ले आएगा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: दोस्तों अब वक्त है कुछ मेल शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं और अब अगर शामिल नहीं किया ना मेल तो मुझे पता है कि हमारे जो श्रोता है ना वो अभी जो मैंने गाना सुनाया जी रूट कर कहाँ जाइएगा, लेकिन हाँ रूट ज़रूर जाएंगे। तो पहला मेल शामिल करते हैं बेनित कुमार जी का, लेकिन आधा अधूरा आपका मेल रह गया। अक्सर दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग सब कुछ मेल के सब्जेक्ट में ही लिख देते हैं, मेल लिख नहीं पाते और सब्जेक्ट की लिमिट होती है। तो कृपया मेल भेजा करिए तो आप उसको प्रॉपरली लिख कर भेजा करिए। फिलहाल विनीत कुमार हमें ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं और सदाबहार गीत इन्हें बड़ा अच्छा लगा और इनको पुष्पांजलि प्रोग्राम भी अच्छा लगा और इन्होंने बिल्कुल सही पहचाना गाना, हम तो तेरे आशिक हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने गाना और आपके आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। सुधांशु जी भी मेल कर रहे हैं और ये हमें पोस्ट मुहाना थाना इडौंजा

बख्शी तालाब जिला लखनऊ से मेल कर रहे हैं पुष्पांजलि ने, बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम सदाबहार गीत भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो मौसम मौसम लवली मौसम उनको बहुत अच्छा लगा, मेरा भी फेवरेट गाना है। मैंने कहा ना आज जब मौसम मैंने देखा ना तो मेरे को तुरंत ये दिमाग में ये गाना आया था, तो मैंने सोचा मैं अपने श्रोताओं को जरूर पक्का सुनाने वाली हूँ ये गाना। शकील अहमद जी हमें जायस जिला राय बरेली से मेल कर रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी फेवरेट सॉन्ग सदाबहार गीत में सुनने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके मेल के लिए और कोशिश तो हमारी यही है कि जब भी आपको मैं ये प्रोग्राम प्रेजेंट करूं तो वही गाने सुनाऊं जो सच में दिल को छू जाते हैं। वैसे तो हर एक गीत जो सदाबहार है ना वो सदाबहार इसीलिए तो कहा गया है। और लिखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि अब बहुत जल्दी बारिश देखने को मिल जाए क्योंकि गर्मी से तो अब दिल ऊब चुका है, इतनी ज़्यादा दिनों तक अब गर्मी ना हो। वैसे तो ये हमारे इंडिया में भारत में सबसे ज़्यादा जो मौसम टिकता है वो गर्मी है, बाकी सब आवन जावन है। तो गर्मी से रिश्ता थोड़ा मेल जोल कर लीजिए, गर्मी से नाराज़ होने से कुछ नहीं होगा, गर्मी में आम खाने को मिलता है। राम राज जी मेल कर रहे हैं और इन्हें सदाबहार गीत बड़ा पसंद आया है और ये हमें गांव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं, रायबरेली से। राम राज, राज भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण, प्रजापति, इतने सारे नाम हैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। और लिखते हैं कि सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने गाने सुनाए हैं वो बहुत ही सुपर हिट है, आज का कार्यक्रम रोज़ सुनते हैं, ईमेल करते हैं और इसीलिए आपकी ईमेल शामिल भी होती है। रामराज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत से मेल के लिए। मोइनुद्दीन जी मेल कर रहे हैं हमें खैराबाद सीतापुर से और बहुत धमाकेदार गाने बजा रही हैं बिल्कुल, और भी गाने हैं अभी हमारे लिस्ट में, वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए एक और प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: हाँ जी चलिए कुछ और मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि मेल्स तो खूब सारे आ गए हैं। अब मैंने सोचा कि मेल्स ही पढ़ लेते हैं। सुरेश वर्मा जी हमें मेल कर रहे हैं, संदीप गिरी ये हैं और जरीगवा सीतापुर से मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि इनको अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। उमा शंकर शर्मा जी ने भी मेल किया है और ये हमें मादी अदमपुर हिसार हरियाणा से मेल कर रहे हैं। लिखते हैं, इन सदाबहार गानों की खासियत ये है कि ये हमारी सांसों में बस गए हैं और इनके सिग्नेचर ट्यून शुरू होते ही गाना खुद ब खुद लबों पर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैंने कहा था ना कि देखते हैं ये म्यूज़िक सुनकर कैसे कोई अंदाज़ा लगाता है कि गाना क्या होने वाला है। तो हमारे बीच में लोग हैं जिन्हें बस ये धुन सुनाई देती है और वो तुरंत तपाक से पहचान लेते हैं, हाँ ये वाला गाना था, है ना। राधेश्याम जी मेल कर रहे हैं हमें कासगंज से और मास्टर राधेश्याम शक्या लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग तरुश्री, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू सो मच, आप ही के लिए है तो आप इंजॉय कीजिए ये प्रोग्राम। आंचल वर्मा हमें हरदोई से मेल कर रही हैं और बाकी तो इन्होंने गुड मॉर्निंग कह दिया है और गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। पिंकी बारी जी अमीनाबाद लखनऊ से मेल कर रही हैं और भाई ये सब आप जो भेज देती है ना फोटो मेल के साथ, हमें समोसे और चाय सब मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपने मेरी भूख बढ़ा दी। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था आज और आपने चाय का प्याला दिखा दिया हमें। अब मैं कहाँ जाऊँ बताइए। अच्छा ये जो म्यूज़िक है, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा कि जब भी ये बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती है तो मैं पहचान जाती हूँ कि आज तरुश्री मैम आई। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सबकी एक अपनी अपनी सिग्नेचर ट्यून है और हो सकता है और भी लोग ये ट्यून इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रोता है ना वो सब बहुत स्मार्ट हैं। पुष्पांजलि में जो पहला सॉन्ग गणेश जी का बजा था भजन, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीपन जी का मेल आया है, ये हमें नागौर गांव रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो सच कहूँ ऐसे ही गाने अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं जब बचपन में कानों में ऐसे गाने की धुन सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई रेडियो कैसे नहीं सुनता होगा, यहाँ तो बिन रेडियो सुने दिन नहीं गुजरता। सच में रेडियो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। रजनीश पासवान जी ने मेल भेजा है, गुड मॉर्निंग, और इन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है तो हमारे साथ बने रहिए।

बहुत खूबसूरत गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। संजय वर्मा लखनऊ से मेल कर रहे हैं और जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से मेल कर रहे हैं। राधे राधे, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सदाबहार गीत इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत ही सुकून देते हैं ये। हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। वाह, क्या बात है। तो चलिए, एक अब खूबसूरत सा गाना आपके लिए, इतने सुंदर लाइन्स आपने भेजी है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, और इस पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ। और कुछ और मेल्स मैं शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि समय जो है ना वो बड़ा कम बचा है, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी हम मेल्स तो शामिल करेंगे, जितने भी लोगों ने हमें प्यार भरे मेल भेजे हैं। अशोक कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं रायपुर मितौली लखीमपुर खीरी से, सदाबहार सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। वकील अहमद जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि आवाज़ अच्छी लगती है, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है। और ये बात एकदम सही कही आपने वकील जी, वकील अहमद जी। और वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी ज़िला सीतापुर, अब ये जो है ना मैं थोड़ा आपका नाम ही नहीं जानती थी अभी तक। चलिए अच्छा लगा आपका मेल पढ़कर। कोमल मौर्य जी हमें मेल कर रही हैं और लिखती हैं, ये हमें ग्राम सकरा पोस्ट काकोरी लखनऊ से मेल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, सदाबहार गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं और फैमिली के साथ सुन रहे हैं, काम करते हुए आनंद ले रहे हैं इस मौसम का भी, और क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, आज तो मौसम ने थोड़ा सा करवट बदली है, अब देखते हैं दिन ब दिन कैसा रहेगा ये, थोड़ा और करवट ना बदल ले। पता चला हम इंतज़ार कर रहे थे बारिश का और अचानक से धूप निकल आई। सुल्तान रजा जी मेल कर रहे हैं और ये हमें कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी से मेल कर रहे हैं। सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, अफजल रजा, मामी पापा, शुभ प्रभात एफएम रेनबो। ओफो, सबका नाम ले लिया उन्होंने, मैंने सबका नाम ले लिया ना, कोई छूट तो नहीं गया। एक इन्होंने कुछ लिख के भेजा है, याद है वो दौर जब एक चिट्ठी आने का इंतज़ार हफ्तों तक किया जाता था, फिर भी रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहता था। आज मैसेज सेकंडों में पहुंच जाते हैं, लेकिन लोग मिनटों की देरी पर भी नाराज़ हो जाते हैं। वक्त बदल गया पर उन चिट्ठियों का एहसास, उनकी मिठास आज भी दिलों में बसी हुई है। यही तो ये जो खूबसूरत सदाबहार गीत है ना, ये यही हमें एहसास दिलाते हैं। बबीता राव जी हमें मेल कर रही हैं बेली काला गुसाईगंज लखनऊ से, और लिखती हैं कि 6 बजे से सुन रही हैं, हमारे साथ बनी है, पुष्पांजलि सदाबहार गीत प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और आप लोग जब ऐसे तारीफ़ करते ना, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मुझे शक होता है ये मेरी ही आवाज़ है ना जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी श्रोता हमसे जुड़ते हैं और इतनी प्यार भरे मेल भेजते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इस खूबसूरत से प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन कहीं जाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका और हमारा साथ अभी बाकी है। 8:15 पर मैं लेकर आऊँगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ एक और दोस्त के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 8 बजे हिंदी में समाचार आएंगे दिल्ली केंद्र से, तो बने रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के

0: अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज

0: ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

0: कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपर फूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार कर गिर कर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही तो इंसान को चलना

0: सिखाती हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जैसा कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमें हम कोशिश करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हादसे होते हैं हमारे आसपास जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं, और वो ऐसी सीख है जो आगे आने वाले दिनों में और बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है।
0: बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का 100.7 एफएम रेनबो। मैं आरजे अंजू शुक्ला और मेरे साथ हैं आरजे तरुश्री। हम दोनों लेकर आए हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह, लेकिन आज भाव कुछ बदले हुए हैं। लखनऊ में जो हादसा हुआ, या अक्सर ऐसे हादसे हमारे आसपास होते हैं, अचानक किसी का परिवार का चिराग बुझ गया, किसी माँ की गोद सूनी हो गई, किसी पिता के सपने राख में बदल गए, लेकिन क्या ऐसे हादसे केवल समाचार हैं? ये हादसे वास्तव में समाज से बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आज इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर। गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
1: जी हाँ, कुछ सकारात्मक सोचने के लिए, कुछ सकारात्मक बदलाव के लिए ही आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी।
2: जी हाँ दोस्तों, इस मॉर्निंग मंत्रा के सेगमेंट में आज कुछ हम कहना चाहते हैं,
1: और कहना ये चाहते हैं कि क्या हर बार चिताएं जलती हैं, हर बार आंखें होती हैं नम, हर बार कुछ वादे होते हैं फिर भी न होती हैं लापरवाहियां कम, कब तक यूं ही हादसों को मुकद्दर कहकर टालेंगे हम। आइए संकल्प लें कि आज से अपनी जिम्मेदारियों को सचमुच संभालेंगे हम।
2: जी हाँ दोस्तों, इस हादसे में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई उन सभी को श्रद्धांजलि, और साथ ही उनके परिवारजन, उनके जो अपने हैं उनको एक हौसला मिले इस दर्द से निपटने का। इस हादसे से हमें एक सबक मिलना चाहिए, और ताकि ये जो गलतियां हुई हैं ये आगे ना दोहराई जाए।
1: ऊपर वाला उन परिजनों को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, और बस यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी FM रेनबो आपके साथ है, आपके हर दुख में, आपकी हर तकलीफ में।

0: बिल्कुल दोस्तों, ऊपर वाला सबका है और सब उसके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम ऊपर वाले के सहारे छोड़ते हैं जब सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिस भी रूप में आप उस परम पिता परमेश्वर को मानते हैं उसका नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और अक्सर हम यही प्रार्थना करते हैं ना तरु, कि हमारा परिवार, हमारे अपने हमेशा सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने अंजू, और हर बार हम ये कहते हैं जब भी कोई हादसा होता है हमारे आसपास, तो हम ये कहते हैं ना दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या केवल कार्रवाई काफ़ी है या हमें अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी? हर हादसा एक पैटर्न बताता है, कभी होटल, कभी अस्पताल, कभी कोचिंग संस्थान या कभी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो कहते हैं ना जगह बदलती है मगर कहानी वही रहती है, लापरवाही, अनदेखापन, या फिर आखिर में जो निर्दोष हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या हमने पिछले हादसों से कुछ सीखा? शहर बढ़ रहा है जितनी तेज़ी के साथ, क्या हमारी और आपकी सुरक्षा या सुरक्षा के जो मेजरमेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं क्या? लखनऊ या हम किसी भी मेट्रो सिटी की बात कर लें, किसी भी बड़े शहर की बात कर लें, वो तेज़ी से फैल रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहाँ कभी मकान थे आज वहाँ कोचिंग सेंटर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, छोटे छोटे प्ले स्कूल हैं कॉलोनीज़ में, और कभी कई बार तंग गलियों में। लेकिन क्या सभी पर, सभी जगहों पर सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है? क्या सकरी गलियों में चल रहे व्यावसायिक संस्थानों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच पाएगी? हमने कभी, हमने और आपने सोचा है ऐसा?
1: और अक्सर अंजू ये देखने को मिलता है कि अक्सर हम जब इस तरह के, आप अभी एक तंग गली में चले जाइए और आपको लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ मकान होंगे, लेकिन अभी उन्हीं तंग गलियों के आगे आप पढ़कर देखिए तो कितना सब कुछ कमर्शलाइजेशन बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये जो आपने कहा कि क्या उन तंग गलियों से गुजर कर क्या फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है, अगर एक ऐसी जगह पहुँचनी है जहाँ पर ज़रूरत है और वहाँ पर अगर ये समय से ना पहुँच पाए या फिर इसको पहुँचने में दिक्कत, तो फिर उस सुविधा का लाभ ही कैसे उठाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, और ये सवाल हमें किसी भी डिपार्टमेंट, प्रशासन, सरकार से नहीं पूछना, हमें अपने आप से पूछना है, आपस में बात करनी है। जब हम अपने बच्चे को किसी स्कूल, कोचिंग, या हम जब किसी ऑफिस में भी काम करने जाते हैं या बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। स्कूल कोचिंग की बात करें तो रिजल्ट कैसा है, कितने परसेंटेज रिजल्ट सक्सेस रेट है उनका, फीस कितनी है, टीचर्स कैसे हैं, या स्कूल कोचिंग की रेपुटेशन कैसी है, या जब हम कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं खासतौर पर प्राइवेट कंपनीज में, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है।

0: पर हम ना ध्यान देकर हमारा जो पैकेज है वो कितना है उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या कभी हम पूछते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम और आप या हमारे बच्चे वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या वहां पर आपातकालीन निकास या इमरजेंसी एग्जिट है?
1: जी हाँ, या फिर अग्निशमन या फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि ये मानक बहुत ही बेसिक मानक
0: बेसिक है बिल्कुल।
1: और ये कुछ दिनों पहले अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ही कंप्लायंस के साथ ये रूल जारी किया गया था, क्योंकि पिछले अभी कुछ हादसे हुए थे जिसमें हमने होटल में देखे थे कि आग लगी और काफी ज्यादा जनमानस को नुकसान पहुंचा था। तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मानक निकाला गया था कि आप कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे तो वहां पर आप सेफ्टी इक्विपमेंट या फायर इक्विपमेंट से, या फिर अगर किसी भी तरह से फायर या फिर और भी अन्य दुर्घटना होती है तो उनसे बचने के आपको एक बेसिक मानक जो है वो सेट करने हैं। मगर फिर भी अगर ये हादसा दोबारा हुआ है तो इससे हमें क्या सीख मिली कि क्या हमने इसे अनदेखा कर दिया इतनी दुर्घटना को देखने के बावजूद? तो ये आपको हमें समझने की जरूरत है कि क्या हमारे पास, जैसे कि बताया, आपातकालीन निकास है कि नहीं, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर या फिर और इक्विपमेंट्स वहां पर है कि नहीं, या उनका समय समय पर उनका रख रखाव हो रहा है या नहीं, कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो लगा दिए गए हैं और उसका कोई काम नहीं होता
0: और सालों साल से लगे हुए हैं और जब इमरजेंसी आई तो वो खुली नहीं रहा है, वो
1: बिल्कुल
0: यूजलेस हो गया है। मॉक ड्रिल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अगर हम इस तरह के हादसों के बाद जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको दोष दिया जाता है या भवन मालिकों को दोष दिया जाता है। लेकिन आज आज जो हम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में 100.7 FM रेनबो पर बात करना चाहते हैं वो है हमारी और आपकी जिम्मेदारी।
2: मुद्दा आज का।
0: जी हाँ, मुद्दे पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी को भी दोष देने के बजाय सिर्फ आज के मुद्दे पर इस प्रोग्राम के जरिए एक नागरिक होने के नाते, माता पिता होने के नाते, छात्र होने के नाते या सीधे से एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं शहर की सुरक्षा और हम ये सेफ्टी मेजर्स को लेकर। ये कुछ भी आप अगर कहें कि अगर आपके घर के सामने कभी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें इससे क्या मतलब। लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि आप ही के घर के सामने ऐसी आग लगे और उसमें उस चपेट में कोई आप ही का अपना आ जाए, तो ये फिर और कुछ नहीं बचता, हमारे पास सिर्फ पछतावा बचता है और कुछ नहीं। तो ये पछतावा ना होने पाए इसके लिए हम और आप क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं बिना किसी को दोष दिए? अपनी जिम्मेदारी बताइए और हमें लिख के भेजिए fmakashwanilakhnau@gmail.com पर।
0: आज बहुत सारी और ऐसी बातें निकल कर आएंगी जिन पर हमको और आपको विचार करना होगा, तो अगर आप हमें मेल करेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर मेल नहीं भी कर रहे हैं तो सुनिए ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ, बहुत सारे अधूरे सपने रह गए। कितने सारे लोगों ने, उनके बच्चों ने कुछ सपने संजोए होंगे, कुछ राह तक रही होंगी माँ कि अभी मेरा बेटा या बेटी वापस आएंगे, लेकिन क्या मिला? बस ये हादसा जो था वो सच में दिल को कचोट के रह गया।
1: बिल्कुल तरुषि, और जब हम इस तरह के हादसों के बारे में सोचते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं असमय, जब इस तरह की तकलीफ आती है ऐसे परिवारों पर जहां पर बहुत सारे सपने बुने जाते हैं, किसी के परिवार का एक ही कमाने वाला कोई सहारा होता है, या जो घर से ये सोच कर निकलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और आज घर वापस आऊँगा तो सुकून की नींद आएगी, क्या पता कि वो आज हमेशा के लिए सो जाएंगे। और जब बच्चों और ख़ास तौर पर युवाओं के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वास्तव में दिल मन एकदम व्यथित हो उठता है, और हमें तो पूरी रात नींद ही नहीं आई जब इस तरह की घटना हमने देखी, और रात भर हम न्यूज़ देखते रहे, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी, प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो बनाकर डाले उनके पास। हम लोग हर बार कहते हैं ना तरुण कि कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं मोबाइल लेकर, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास वीडियो बनाने के अलावा और कुछ था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे।
0: सच में, आपने, मैं आपको बताऊं कि ये जो हादसा हुआ वो मेरे घर के बहुत ही नज़दीक हुआ, और जब ऐसी सिचुएशन आई तो कई सारे लोग जो उधर से गुजर रहे थे वो रुके, मदद के लिए भी रुके, मगर क्या कर सकते हैं वो इससे ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से आग फैलती गई, जैसे शुरुआती टाइम पर जब भी कभी आग लगती है तो सिर्फ एक चिंगारी से शुरुआत होती है, लेकिन वो चिंगारी कब इतनी भीषण आग में बदल जाती है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते।
1: बिल्कुल।
0: और ये जैसा कि बताया हम लोगों ने, इसी बात पर ही तो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि वो चिंगारी आग ना बन पाए, उसकी रोकथाम के लिए हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है।
1: और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, ऐसी दुर्घटनाओं के पहले आहट हमें मिलती है, हमें अंदेशा होता है कि यहाँ पर तो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे हम अगर किसी मार्केट में जाएं, मैं अगर अपने लखनऊ की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहां पर कंजस्टेड हैं, बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, बहुत सारा ऐसा सामान है जो ज़रा सी चिंगारी से, जैसे कपड़े की बात कर लें या पेपर्स की बात कर लें, तो ज़रा सी चिंगारी से वहां पर भीषण आग लग सकती है, और वहां पर इमरजेंसी में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए त्वरित जो उपाय हैं वो बिल्कुल नदारद हैं। तो क्या हम और आप सिर्फ भवन मालिकों की ये जिम्मेदारी होती है? हम एज ए सिविलियन जब हम उस जगह पर जाते हैं, क्या हम उसको टोकते हैं या उसकी शिकायत करते हैं? जो सुरक्षा के मानक हैं वो हम पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो दिखाई पड़ने वाला जो एक मानक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है।
0: जी, और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में भी आ रही है वो ये कि अज्ञानता किस चीज़

0: की, अगर अगर हम हमें ज्ञान ही नहीं है कि इस सिचुएशन से निपटना कैसे है, तो हम नहीं कर सकते. जैसे ये मॉक ड्रिल्स होती हैं फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, कई सारे स्कूलों में होती हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स में होती हैं, लेकिन ये मॉक ड्रिल शायद कुछ ही लोग हैं, मेरे जान में तो बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये मॉक ड्रिल अटेंड की है, है ना. तो ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं या फिर ऐसे जो हमारे आसपास के लोगों को अगर ये ज्ञान हो कि हमें इससे बचना कैसे है, तो शायद कई जिंदगियां बच सकती थी.
1: बिल्कुल, बहुत सारी जिंदगियां बच सकती थी. और जब वो जैसे कि बाथरूम में बंद करना, अगर हालांकि ये जो केस है जो लखनऊ अलीगंज में हुआ, ये जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, तो हम और आप उस पर बोलने से हमें बचना चाहिए नियम के अनुसार. तो बस हम इतना कहेंगे कि जब कभी कोई घटना होती है तो अक्सर लोगों को बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि वॉशरूम में आप सारे टैप्स खोल कर, नल खोल कर पानी बहता रहे और आप जमीन पर लेट जाइए मुंह पर कपड़ा बांध कर, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन जब संख्या इतनी ज्यादा हो तो क्या, हमें सिर्फ ये जिम्मेदारी तय करनी है कि जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, जो क्षमता से अधिक भीड़ वाले लोग होते हैं, जहां पर जैसे मार्केट है, स्कूल कॉलेजेस हैं, कोचिंग संस्थान हैं, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, यहां पर सुरक्षा के मानक हैं या नहीं, और अगर हम या हमारे अपने वहां पर जा रहे हैं तो क्या वो सुरक्षित वहां से वापस निकल पाएंगे किसी भी आपातकालीन स्थिति में. ये सबसे बड़ा सवाल है और इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है. सिर्फ भवन मालिकों को दोष देना कि उनको उनकी जिम्मेदारी सिर्फ समय पर किराया लेना है, ये नहीं. हम और आप भी भवन मालिक हैं. आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर को किराए पर दे रखा होगा किसी कमर्शियल पर्पज से या रेजिडेंशियल पर्पज से. क्या आपने वहां पर रहने वाले और जहां जो भी संस्थान वहां चल रहा है वहां उस पे सुरक्षा के मानक पूरे किए हैं? अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी हमें.
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने. और नागरिक होकर हम और आप इस चीज़ से बच सकते हैं. अगर जैसे जैसा कि आपने कहा कि जो मानक तय हैं उनसे बचना ही क्यों है, क्योंकि वो तो हमारी सेफ्टी के लिए है. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हेलमेट आपके पास है और आपने हाथ में पहन रखा है उसको सिर पे लगाने की जगह, तो ये आपका कभी हादसा होगा तो आपका सिर को बचाने के लिए वो हेलमेट है. आपके हाथ और पैर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका सिर है, आपका दिमाग. अगर उस पर गहरी चोट लगी तो आपके हाथ पर अगर सलामत भी रहे तो भी आप अपनी जान गवा बैठेंगे. तो ये सिर्फ बिल्कुल वैसा ही है कि हम कतरा रहे हैं. हम क्यों कतराते हैं? क्या चंद पैसे बचाने के लिए या फिर उस एक तरह से एक जिम्मेदारी से विमुख होने के लिए? क्यों कर रहे हैं हम?
1: बिल्कुल, और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तो होती ही है. नियम केवल फाइलों के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, समय समय पर निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है. बताइए हमें मेल करके अपने विचार fmakashwanilakhnow@gmail.com पर.

0: 8:49 का समय हो गया है, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ. अंजू और तरुश्री हैं आपके साथ और आज बात शहर में हो रहे लगातार हादसों की, चाहे वो अग्नि का हादसा हो या किसी भी तरह का कोई ऐसी दुर्घटना जो लापरवाही की वजह से हुई है. और ऐसे में एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक सिविलियन होने के नाते हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं. और आज ये मुद्दा हमने आप श्रोताओं तक भी भेजा है. हमारे पास शिल्पी जी का ईमेल आया है इंदिरा नगर लखनऊ से, और उन्होंने ये लिखा है कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत ही नामी गिरामी स्कूल है, इसका नाम हम जाहिर सी बातें नहीं लेंगे इस प्लेटफॉर्म से, उन्होंने ये लिखा है कि हम मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत कंजस्टेड क्लासेस हैं और बेसमेंट में भी कक्षाएं चलाई जाती हैं और बाहर आने का रास्ता एक ही है और लिफ्ट तो आपातकालीन स्थिति में प्रयोग नहीं कर सकते. उन्होंने ऐसा लिखा है कि लखनऊ में अलीगंज में जो हादसा हुआ है उसने वास्तव में हमारा दिल दहला दिया है और स्कूल खुलते ही हम सभी अभिभावक स्कूल प्रशासन से इस विषय में बात करने वाले हैं. बिल्कुल सही बात है आपने जो बात कही ना, अगर हम अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे, जब हमारे बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाएगा तब.
1: बिल्कुल सही कहा. और इसी तरह की जो मेल्स हैं वो हम तक लगातार पहुंच रही हैं, कई सारे लोगों ने अपने विचार हम तक भेजे हैं. उसमें से सुनील प्रांजल जी हैं विकास नगर लखनऊ से हमें मेल भेज रहे हैं. लिखते हैं कि ये आग से सुरक्षा का मुद्दा कल ये हमेशा उठाना चाहिए था, ज़रूरी था, क्योंकि आज जब हम अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रहे हैं तो हमें इस पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है. सरकार के ऊपर हर बात की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है. हम भी समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए. आप अपने घर में अगर आग लगेगी, भूकंप आएगा, चोरी होगी या उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं. हमें लगातार घर में, अगर हमारे घर में एक पालतू कुत्ता भी आ जाए तो मारने के लिए हमें डंडा नहीं मिलेगा. सरकार और पुलिस के भरोसे हर काम नहीं डालना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: समाज को विचार करना चाहिए. तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक और घटना मेंशन करी है जो मैंने अभी बताया कि होटल में आग लगी थी कई दिनों पहले, तो किसी ने उससे कुछ सीख नहीं ली, थोड़े दिन संवेदनाओं में बहे और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो गया.
0: और मुझे तो लगता है तरु कि जब हम होटल में रह रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं हाल ही में वैष्णो देवी गई थी और मैंने जो चौराहे पर, खुली जगह पर, स्थान पर जो होटल था उसमें कमरा लिया और वहां पर अगर हम बात कर लें या किसी भी टूरिस्ट प्लेस की बात कर लें तो बहुत सारी सकरी गलियों में छोटी छोटी बिल्डिंग्स में होटल्स हैं जिनमें वो जो सीढ़ियां होती ना, जीना होता, वो भी पर्याप्त नहीं है, चौड़ा होता है कि वहां पर दो लोग तो एक साथ चल ही नहीं सकते.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: इतने छोटे छोटे होते हैं तो हम और आप जब वहां जा रहे होते रुकने के लिए तो हम इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं देते, तब तो

0: हमारा ध्यान सिर्फ ये रहता है, इस पर रहता है कि ये सस्ता कमरा मिल रहा है
1: जी। और इसी तरह की गतिविधि पे, मतलब इस पे जोर दिया है सुनील जी ने भी कि जो ये सेंटर या जो हादसा भी हुआ उसमें लिफ्ट थी केवल, स्टेयर्स तो थी ही नहीं, तो या फिर क्या कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई तो लिफ्ट तो बंद हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं सोचा, इसका उपाय क्यों नहीं सोचा गया पहले से ही। तो हम अपनी अगर चलाते हैं तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो रहे हैं, अगर हम कह रहे ना आज के टाइम पर जहां पर एआई सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम एआई के साथ क्या हम इतने लापरवाह होते जा रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो और हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे, तो स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं, हम किस कदर चले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी लाइफस्टाइल अगर स्मार्ट हो रही है तो हमारी सोच भी तो स्मार्ट होनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी मेजरमेंट्स पर ध्यान दें। दिलावर खान जी का भी मेल आया है, श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जी हमें मेल कर रहे हैं, लिखते हैं कि रास्तों का सकरा होना, प्रवेश यानी एंट्री और निकास यानी एग्जिट द्वार का छोटा होना या रास्ता अवरुद्ध होना ऐसी दुर्घटनाओं का सबसे ज़्यादा होने का बड़ा कारण होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, इमरजेंसी एग्जिट्स तो बहुत सारी जगहों पर होती ही नहीं है।
1: और जैसे कि अभी ये बोला कि क्या अगर हम दो मंजिला तीन मंजिला, और भी मैं आपको बताऊं जैसे कि इन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ लिफ्ट थी, स्टेयरकेस तो थी ही नहीं। अभी हाल ही में मैं एक होटल में गई थी, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी, और मैंने वहां पर देखा वहां पर स्टेयरकेस नहीं थी, मतलब जबकि इतना प्रतिष्ठित होटल है वो, मगर वहां पर स्टेयरकेस नहीं, या फिर वो स्टेयरकेस दिख ही नहीं रहा है, जरूर हुआ होगा क्योंकि इस तरह के मानकों का ध्यान रखा जाता है होटल में, लेकिन वो अगर हमें मिल ही नहीं रहा है या उसका हम जैसे बोर्ड लगाते हैं साइन नहीं लगाएंगे तो अक्सर लोग पहुंचेंगे कैसे वहां तक।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो है जिस तरह के अस्पताल में आप देखिए कि कई बार जो डोर होते हैं वो एक तरफ से खुलते हैं, है ना, अस्पतालों में अक्सर ये देखा गया है ताकि कोई अवैध प्रवेश ना करे। तो इस तरह की गतिविधियों में क्या होता है कि कभी एक तरफ वन साइडेड डोर होते हैं कि बाहर से नहीं खुल सकते, अंदर से सिर्फ खुल सकते हैं, तो ऐसी जो चीजें हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है ऑब्वियसली, कि या कुछ रूल्स को रेगुलेशंस को करने के लिए, मानक को मानने के लिए बनाई गई, लेकिन फिर भी क्या हमारी सुरक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं उचित है।
0: बिल्कुल, हम इतने घरों की भी अगर बात करें तरु, तो हम लोग घरों को इतना पैक्ड कर ले रहे हैं कि कभी कोई हमारे घर में कूद ना जाए, कहीं कोई चोरी की घटना ना हो जाए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अगर किसी इमरजेंसी में हम घर के अंदर फंस गए तो हम कैसे बाहर निकलेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ और सिर्फ आग लगने की बात नहीं है, ये और भी गतिविधियों को भी अगर और भी दुर्घटनाएं देखी जाए, या फिर जो कहते हैं कि नेचर्स जो हमारे साथ ऐसा करता, कभी भूकंप आ गया या कभी इस तरह की घटनाएं हो गई या बहुत तेज हवाएं चलने लगी या कुछ ऐसा हो गया जहां हम फंस गए अपने ही घर में, तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं, कई सारे ईमेल्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, कृष्ण कुमार, मोनू जी, अरुण कुमार, सुधांशु जी, शिवेंद्र गुप्ता जी, आप सबके ईमेल्स हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम जो अपने स्तर से चीजें चेक करें वो तो है ही, हमें अगर शिकायत करनी होगी तो हम कहां कर सकते हैं और क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, हमें बताइए कि कितने जागरूक हैं आप, एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और नहीं है जानते हैं, तो प्रोग्राम सुनिए, सब कुछ आज पता चलेगा। स्टे अलर्ट एंड स्टे ट्यून्ड। एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद समाचार पत्रों की सुर्खियां, वापस लौटेंगे गुड मॉर्निंग लखनऊ के अगले घंटे में, सुनते रहिए रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए जाने की खबर को हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबारों ने लिखा कि मंगलवार शाम उच्च अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगंज अग्निकांड प्रदेश के लिए बड़ा सबक है, इससे सीख लेते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में बेसमेंट में कोचिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने दिया जाए, भवन व जमीन का उपयोग उसी काम के लिए हो जिसके लिए अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने हर कोचिंग संस्थान का पंजीकरण एवं व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी एनओसी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। अमृत विचार ने लिखा कि लखनऊ अग्निकांड के बाद कल पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीमों ने कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदेश भर में करीब 70 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। बरेली में 2 और मथुरा में 1 होटल सील किया गया। अलीगंज अग्निकांड के लिए गठित एसआईटी द्वारा जांच शुरू किए जाने की खबर में अमर उजाला ने लिखा कि 2 सदस्यीय एसआईटी ने कल घटनास्थल का मुआयना किया, फिर केजीएमयू पहुंचकर घायलों से जानकारी ली। वहीं 19 अभियंता कटघरे में। शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कि एसआईटी उन अफसरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं। एलजीए ने भी ऐसे 19 पुराने इंजीनियरों की सूची एसआईटी को सौंपकर कार्रवाई की संस्तुति की है। वहीं पुलिस ने कल अलीगंज अग्निकांड के 4 आरोपितों को जेल भेज दिया है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसआईटी द्वारा कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपे जाने की खबर को दैनिक जागरण और अमर उजाला ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबारों ने लिखा कि 21 पन्ने की रिपोर्ट में एसआईटी ने जिम्मेदारियों पर सवाल उठाने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। अमर उजाला ने लिखा कि रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमिश्नर खोरी का खेल तक उजागर हुआ है। वहीं हिंदुस्तान ने बताया कि एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया के साथ ही निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं। CUET UG का परिणाम घोषित होने की खबर को दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबारों ने लिखा कि NTA ने इस बार रिकॉर्ड 16 दिनों में ही CUET का परिणाम घोषित कर चौंका दिया है। पिछले वर्ष ये परिणाम आने में 30 दिन लगे थे। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद हॉर्मुज पूरी तरह खुलने और 11 भारतीय पोतों को गुजरने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कल राष्ट्रपति से मुलाकात किए जाने, राष्ट्रपति द्वारा कल 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने और यूपी सरकार द्वारा आज बेंगलुरु में रोड शो किए जाने की खबर भी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ ये अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, 9:03 का समय हो गया है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ. अंजू शुक्ला और तरुश्री हैं आपके साथ, और आज ये एपिसोड गुड मॉर्निंग लखनऊ का कुछ अलग है.
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन हादसों की जिनके वजह से कई सारे परिवार के दीप बुझ गए और कई सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, ऐसे सपनों को खो दिया जो उन्होंने बहुत ही सहेज के रखे थे कुछ आगे करने के लिए, कुछ और हौसले बढ़ाने के लिए, उनके परिवार को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए.
0: बिल्कुल, जब बात सुरक्षा की होती है और ख़ास तौर पर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा की होती है, तो जो सुरक्षा के मानक हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो सिर्फ औपचारिकताएं नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर होने चाहिए. और ये सब केवल औपचारिकताएं नहीं बल्कि लोगों के जान बचाने के उपाय हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. हमारे पास बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ रहे लगातार. आपने अभी अभी अगर हमें ट्यून किया है तो आपको बता दें कि आज जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये कि ऐसी स्थिति में हम किसी भी संबंधित विभाग या किसी और को दोष देने के बजाय सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तय करें, हमेशा के लिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि एक सिविलियन अवेयरनेस के हिसाब से, एक सिविलियन होने के नाते हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं. अगर हमने ये तय कर लिया तो मुझे लगता है हादसों में कमी आएगी और शायद हमारे बच्चे और खासतौर पर हमारे युवा हमेशा सुरक्षित रहेंगे.
1: जी, और आपको मैं एक चीज बता दूं, आप सवाल पूछ सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: पूछ सकते हैं, आपको हक बनता है. आप इस शहर के नागरिक हैं, आप अपनी जो दुविधा है उसको दूर कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. तो इसके लिए मत घबराइए कि अगर ऐसा आपको गलत लग रहा है तो क्या आप आवाज उठाएं, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है,
0: बिल्कुल जरूरी है. और जब ऐसी बात आती है ना तरुश्री, तो अपने श्रोताओं से जरूर बताना चाहूंगी कि हम जगह जगह, बहुत सारी ऐसी शहर हैं जहां पर इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ऑफिस होते हैं जहां पर सहायता केंद्र होते हैं. इसके अलावा सब कुछ आपके मोबाइल में है, सब कुछ आपके हाथ में है. जन सुनवाई पोर्टल है, सीएम पोर्टल है, 1076 हेल्पलाइन नंबर है. इसके साथ साथ अपने शहर में अगर आप मोबाइल पर सर्च करेंगे कि कहां आप कंप्लेंट कर सकते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा. बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. आप IGRS के माध्यम से कंप्लेंट कीजिए, और उसके अलावा आपके पास सूचना का अधिकार तो है ही. आप आगे का उसको फॉलोअप कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई. कुल मिलाकर जागरूक रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो. आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार हमें मिल रही हैं, शामिल करेंगे सब कुछ, बताएंगे आपको इस गीत के बाद.

0: जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं कुछ कभी कभी. ये जो युवा हैं हमारे, और इनको अभी जैसे जिस हादसे की वजह से हमने उन्हें खो दिया, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपनी ही ज़िंदगी को कुछ मजाक बनाए बैठे हैं.
1: बिल्कुल, सांसें तो हैं बट वो ज़िंदा नहीं है. जब इस तरह की कोई हादसा होता है हमारे शहर में, हमारे आसपास, तो एक युवा ज़िंदगी चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर कोई युवा, किसी के परिवार का कोई बच्चा, कोई व्यक्ति नशे की लत में आ जाता है, तो मुझे लगता है वो पूरा परिवार ही बिखर जाता है.
0: बिल्कुल सही कहा. और ये जो नशीले पदार्थ या ये जो कह सकते हैं जो युवा इनको ले रहे हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती. कि अभी कुछ ने तो सीखा कि ऐसा करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन क्या वजह है जो इन सब चीज़ों को उन्हें या कहीं से उनको प्रेरित कर रही है कि इस तरह का सेवन या इस तरह के पदार्थों का सेवन करना चाहिए. तो ये जो दिशा है ना, वो उन्हें भ्रमित कर रही है.
1: बिल्कुल, और इसीलिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है, नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से. मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ हमारे देश में भी विशेष सप्ताह और पखवाड़ा मनाया जा रहा है. लोगों में और खासतौर पर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और वास्तव में पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है. और समय समय पर आम लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, और इसी

0: क्रम में कल लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में एक जागरूकता का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं श्री कालिका प्रसाद तिवारी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
1: धन्यवाद सबको, श्रोताओं को, आपको भी। 26 जून को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ द्रुपयोग का अवैध तस्करी निरोधक दिवस, इसको अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहना, जागरूक करना, युवाओं में नशे का लत से बचाना, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध समाज को संगठित करना, जागृत करना, नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रगति की को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह दिवस हमें समूह रूप से एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है तथा देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, रैलियां और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं।
2: जी सर, ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे युवाओं में ये जो नशे की प्रवृत्ति है, ये एक चिंता का विषय है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और अगर किसी परिवार में कोई ऐसा सदस्य नशे की गिरफ्त में आ रहा है तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए इसको रोकने के लिए?
1: निश्चित, आप, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है स्पेशली भारत में। निश्चित रूप से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति गंभीर सामाजिक चुनौती है। इसके कई कारण हैं, जैसे साथियों का ग्रुप का दबाव, दोस्ती में जिज्ञासा, तनाव, बेरोजगारी, गलत संगति, स्पेशल सोशल मीडिया एवं फिल्मों में माध्यम से नशे का आकर्षण, चित्रण तथा पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं हैं। और अक्सर युवा सिर्फ एक बार या मौज मस्ती के नाम पर नशे की शुरुआत करता है और वो फिर उसके लिए लत बन जाती है। इसलिए जागरूक एवं समाज का हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। और इसमें एक चीज हम बताना चाहेंगे कि इसका पता इस तरह से चलता है कि परिवार में जो जो हमारे मदर फादर हैं, जो माता पिता हैं, वो उनको आभास होगा क्योंकि आइसोलेशन में रहना बच्चे का, और वो जो थोड़ा सा कम बोलना और बाथरूम में जाने के बाद वो काफी देर के बाद निकलना, ये सब इसके लक्षण हैं। और इस सब चीजें अगर आती हैं, दिखती हैं, तो हमें उसको उसको तो वाच करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ड्रग से दूर रहे। और वो बाहर अगर बच्चा जाता है, किस काम से जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, जो उसके दोस्त हैं वो किस कैटेगरी के हैं, इन सब बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। और इस समय देश में ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी का जो झुकाव है वो बहुत इस तरफ बढ़ा हुआ है, उसके ये सब कारण है।
0: बिल्कुल सर, 26 जून को ये दिवस मनाया जा रहा है लेकिन कल यानी 25 जून को हमारे शहर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में जो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और आम लोग कैसे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी, थैंक यू। ये 26 जून के अवसर पर आयोजित विशेष जागरूक पखवाड़े के अंतर्गत कल प्रातः जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में एक व्यापक जन जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रनिंग है और रैली है और नुक्कड़ नाटक है और शपथ है। और इसके साथ साथ ये संदेश देना है हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, कि इसमें लोग इससे दूर रहें, नशे से बिल्कुल दूर रहें किसी भी हालत में भी, क्योंकि नशे में अगर बच्चा, कोई परिवार का एक भी सदस्य नशे में जुड़ जाता है तो वो पूरा जीवन उसका नष्ट हो जाता है, उसके साथ साथ उसका परिवार का भी सारा कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि आपका कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें आप एक बार में सब कुछ होता है, मगर अगर आपका कहीं नशे में आ गया तो पूरे परिवार को इसमें नशे में लाता है, डुबो देता है और समाज में उसका रिपुटेशन और तमाम सारी चीजें खराब हो जाती है। और इस रैली के कार्यक्रम में हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, और समाज से भी हमने अनुरोध किया है, कुछ गणमान्य व्यक्ति जैसे मेडिसिन जो जो ये दवाई के विक्रेतागण हैं।

0: बुलाया है, बैंक वालों को भी बुलाया है, कुछ ऐसे ऐसे लोगों को, और समाज से भी हम आपके माध्यम से आह्वान करेंगे कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसको सादर आमंत्रण है, और वो जनेश्वर मिस पार्क में सुबह 6 बजे 6 नंबर गेट पे आ सकता है और इसमें भाग ले सकता है, क्योंकि ये समाज का काम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है,
1: बिल्कुल
0: ये बड़ा
1: बिल्कुल
0: बड़ा कहेंगे कि
1: बिल्कुल
0: नेक काम है।
1: बिल्कुल, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं सर, चलते चलते हमारे श्रोताओं को और खास तौर पर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नशा नाश का कारण बनता है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं से?
0: हम ये कहना चाहे विशेष रूप से साथियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में सफलता, समाज और खुशहाली का कोई शॉर्टकट नहीं रास्ता है। नशा क्षणिक आनंद का भ्रम देता है, लेकिन अंततः व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और भविष्य को नुकसान करता है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अपने सपनों और परिवार और अपने भविष्य के लिए नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। और एक चीज और इसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार जो गृह मंत्रालय ने एक नंबर अलॉट किया है 1933, 1933, जिसपे कहीं भी किसी के भी आसपास में अगर जो ड्रग्स कहीं बेचा जा रहा है, यूज हो रहा है, तो उसकी खबर दे सकते हैं और जो गोपनीय भी रहेगा। और जो भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से एक संकल्प है कि 1947 तक भारत देश को नशा मुक्त बनाना है, उसमें हमें पूरे समाज को, हर एक कैटेगरी के बच्चों को, बूढ़ों को, युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हम इस सपने को पूरा कर सके।
1: बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू,
0: थैंक यू वेरी मच।
2: तो श्रोताओं, हमारे साथ थे श्री कालिका प्रसाद तिवारी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ से। और जैसा कि आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको अभी और हम उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक और फिर हम वापस आते हैं।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 9:22 का वक्त है, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं। आज आप, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, एक विशेष एपिसोड, खासतौर पर जो हादसे हमारे आसपास हो रहे हैं उन पर आधारित, सुरक्षा के उपायों पर, सुरक्षा पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ खास चीज़ें जो रेगुलर सेगमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं वो पहुंचाना ज़रूरी है, जैसे कि हमारी ट्रैफिक अपडेट, और उसके साथ रेडी हैं हमारे साथ विकास जी।
1: जी बिल्कुल, तो विकास सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। सर बताइए क्या आज ट्रैफिक का हाल होने वाला है हमारे शहर में?
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है। जैसे कि आज बुधवार है और बुधवार को बुध बाजार लगता है महानगर में, तो इस समय जो महानगर का एरिया रहता है, शाम के समय में हमारा जो कुकरेल वाला मार्ग है ये थोड़ा सा प्रभावित रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर शाम के समय की बात करें तो इस समय जो मुहर्रम माह चल रहा है और इस दौरान जो है आज 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा।
0: अच्छा।
2: तो ये शाही जुलूस दरिया वाली मस्जिद, जिन्नातों वाली मस्जिद से प्रारंभ होकर पक्का पुल होते हुए बड़ा इमामबाड़ा के सामने से रूमी गेट, नीबू पार्क हो करके ये कुनकुन जी गर्ल्स कॉलेज है, वहां से होते हुए ये पावर हाउस के सामने से ये मेडिकल क्रॉस चौराहा को क्रॉस करेगा और वहां से विक्टोरिया स्ट्रीट सब्जी मंडी के पास से होते हुए ये इमामबाड़ा पे ये गुफरान मा जगह है वहां पर जो है ये समाप्त होगा। तो इस दौरान ये जो रूट है ये हमारा पूरी तरीके से यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा और ये शाम के समय में रहेगा लगभग 7 बजे। तो मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस मार्ग पर जा रहे हैं तो चौक क्षेत्र में आप इमामबाड़े वाले मार्ग को जो है अवॉइड करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े
0: जी।
2: बाकी कोई यदि इमरजेंसी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9454551।
0: जी, इसके अतिरिक्त और कुछ कहना चाहेंगे मेरे श्रोताओं से?
2: बस यही सदैव की बात ही अनुरोध यही रहेगा कि आप यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो लखनऊ की।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी धन्यवाद।
0: तो हमारे साथ थे TSI विकास सिंह सर, और आई एम श्योर आप अगर लखनऊ में हैं तो ट्रैफिक अपडेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो हम रोज़ गुड मॉर्निंग लखनऊ में इनके माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह और भी बहुत कुछ है हमारे पास खास, आपके ईमेल्स भी हैं, बस अब इससे थोड़ी देर बाद उनका भी बारी आएगी, उनकी भी, तो सुनते रहिए FM रेनबो।

0: दोस्तों 9:29 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। दो दोस्त हैं आपके साथ, मैं तरुश्री, मेरे साथ है अंजू। और जैसे कि जो बात हो रही थी आज हादसों पर, तो बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और उनके मेल्स हम शामिल कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, आज का विषय जो इमरजेंसीज आती हैं, जो अग्नि का केस हुआ है हमारे लखनऊ में या आसपास आपके शहरों में भी अक्सर होते रहते हैं, गर्मियों में खासतौर पर ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं अचानक, और ऐसे में बहुत सारे दोषारोपण के सिलसिले शुरू होते हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही थी। लेकिन ऐसे हादसे हो ही ना, और ऐसे में एक नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हमारा आज का विषय है। कृष्ण कुमार जी का मेल आया है, इसके पहले कुछ मेल्स थे जैसे सुनील कुमार जी का भी था, दिलावर खान जी का, वो हम शामिल कर चुके थे। कृष्ण कुमार जी क्या लिखते हैं?
0: देखिए, कृष्ण कुमार जी लिखते हैं कि प्रातःकाल से अत्यंत रोचक प्रसारण हो रहा है, परंतु साथ में ये जो दुर्घटना है जिसने दिल दहला दिया, लेकिन हम लोग अत्यंत मजबूर हैं, हम लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा। सभी लोगों को अपने मकान के बेसमेंट में तथा छत पर एक पानी की टंकी अवश्य बनवाएं। आवश्यक पड़ने पर समझ में आता है कि ये चीज़ करनी चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, पर हम लोग स्वयं को सुधारना होगा, हमें दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनू जी भी लिख रहे हैं कि सच यह है कि अत्यधिक मुसीबत या भयावह संकट के समय मनुष्य की तार्किक क्षमता, जिसे हम ज्ञान या समझदारी कहते हैं, अक्सर काम करना बंद कर देती है। डर और खतरे के समय हमारे दिमाग का तार्किक हिस्सा सुस्त पड़ जाता है और भावनाओं, अस्तित्व से जुड़ा हिस्सा हावी हो जाता है। जिम्मेदारियां अगर समझी गई होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है मोनू जी, कि हमारी सोचने समझने की शक्ति किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अक्सर चली जाती है, हम बिल्कुल अवाक रह जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि क्या करें, पैनिक हो जाते हैं। और शायद इसीलिए मॉक ड्रिल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, रिहर्सल्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और अरुण कुमार जी का मेल आया है, ये हमें घुमोया हरदोई से मेल कर रहे हैं अरुण कुमार कुशवाहा जी, और लिखते हैं कि वास्तव में ये बहुत ही दुखद घटना हुई। हम सब परिवार उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से कि उन्हें शक्ति दे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों को उपयोग करने से पहले ऐसी संस्थानों का अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, सारे मानक पूरे हैं या नहीं। यदि मानक पूरे नहीं है तो इस बात का आगे मेरे ख्याल से उनका कुछ मेल अधूरा रह गया है।
1: अगर मैं पूरा कर देती हूँ, अगर मानक नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए, मुझे लगता है कि, और हमें खासतौर पर जो हमारे आसपास अगर ऐसी कोई बिल्डिंग है जो आवासीय क्षेत्र में है और वहाँ पर कमर्शियल गतिविधि चल रही है, तो उसकी भी कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि 1076 है, सीएम पोर्टल है, या नगर निगम है आपका, आपकी लोकल जो पुलिस चौकी है या पुलिस थाना है, 100 नंबर है, आप किसी भी 112 पर, आप कहीं पर भी कंप्लेंट करिए, लेकिन करिए, शुरुआत तो कीजिए। और खासतौर पर जब आवासीय सोसाइटीज़ होती हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ होती हैं, अगर वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि है तो जो सोसाइटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय नागरिकों को एकजुट होकर सबसे पहले विरोध करना चाहिए। अगर हम सिर्फ दोषारोपण करते रहेंगे और बाद में शासन प्रशासन सरकार को दोष देंगे, तो मुझे लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमने खुद क्या किया था। सुधांशु जी का भी मेल आया है, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इंटौजा बख्शी का तालाब से, और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए ये टॉपिक पर लिखते हैं कि अग्निकांड जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को दोष देने के बजाय हमें खुद को जागरूक रखना पड़ेगा। हम अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत घर और दफ्तर की बिजली से होती है। हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी के तारों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही सॉकेट पर एसी, फ्रिज जैसे भारी उपकरण एक साथ चलाकर ओवरलोडिंग करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही घर और कार्यस्थल पर अग्निशामक सिलेंडर रखना और उसे चलाना सीखना हमारी सीधी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग सीढ़ियों या आपातकालीन रास्तों पर कबाड़ रख देते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि रास्ते पूरी तरह से साफ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत

0: बाहर निकला जा सके। रसोई में भी गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को रात में या बाहर जाते समय बंद करने की आदत डालनी होगी। अगर हम सब मिलकर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अपने परिवार को इसके प्रति सचेत कर सकते हैं और लापरवाही से होने वाले बड़े हादसों को आसानी से टाला जा सकता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका विवरण किया है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है, अग्नि कांड एक तरफ है और जैसे कि हम लोग ने अक्सर ये बात भी करी थी अभी कि जो बेसमेंट में आजकल बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं, जितनी ऊपर नहीं बनी होती उतनी गहरी बनी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बेसमेंट में आधे से ज्यादा संख्या जो होती है ना, जैसे जरूरी गतिविधियां लाइक कई सारे अस्पताल हैं जो बेसमेंट में ज्यादा चलते हैं, स्पेशली ओपीडी जहां सबसे ज्यादा लोग आते जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बड़ी प्रतिष्ठित ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मैक्सिमम बेसमेंट में लोग ओपीडी चला रहे हैं और उसमें, जबकि जो ऊपर मंजिला है, जितनी भी ऊपर की मंजिल है वहां पर कम लोग हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो हैं, लेकिन नीचे बेसमेंट जहां पर सबसे ज्यादा लोग आ जा रहे हैं वो हम कैसे।
0: बिल्कुल तरुषि, बहुत सही बात आपने कही। और मैं अपना अनुभव अगर बताऊं तो अभी हाल ही में एक दोस्त को देखने में गई, एक बहुत बड़ा अस्पताल था, वहां पर ओटी के सामने एक मैप लगा हुआ था और ये मुझे लगता है मैंडेटरी है सबके लिए नियमानुसार कि जो फायर एग्जिट है उसका मैप, इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में आप कैसे अपने आप को बचाएं, वो इवैक्यूएशन का रास्ता पूरा मैप बना हुआ था और मैंने तो उसकी फोटो भी ले ली थी। तो वो जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसका ये हिस्सा है, बोर्ड्स लगे रहना, आपातकालीन निकास कहाँ पर है, फायर एग्जिट, ये जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ये भी एक नियम का हिस्सा है, नियमानुसार मैंडेटरी है, हर जगह होना चाहिए, खासतौर पर अस्पतालों, स्कूल कॉलेजेस में ऐसा जरूरी है। और उसी तरफ दूसरी जगह एक और अनुभव मेरा ये लखनऊ का ही गोमती नगर का एक प्रतिष्ठित अस्पताल, वहां पर जैसे आपने बताया बेसमेंट में थी मैं और मुझे मतलब नर्स से कहना पड़ा कि मेरा नंबर आएगा तो मुझे बुला लीजिएगा क्योंकि उस बेसमेंट में मेरा दम घुट रहा था, इतनी भीड़ थी वहां पर और 5 कमरों में ओपीडी चल रही थी। और फिर मुझे ये कहना पड़ा कि मेरा नंबर आएगा तो आप बुला लीजिएगा, मैं ऊपर जा रही हूं, और मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर बैठी। तो ये जो चीजें होती ना कि वहां पर मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था और ये अब से लगभग 1 महीने पहले की घटना है कि बार बार इसी तरफ ध्यान जा रहा था कि यहाँ पर तो कोई फायर एग्जिट भी नहीं है, सिर्फ एक सीढ़ियों का एक रास्ता है छोटा सा और इसके अलावा लिफ्ट जो इमरजेंसी में यूज नहीं करनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ये 50-60 लोगों की भीड़ कहाँ जाएगी।
1: बिल्कुल, और जो भी इस तरह के मानक हैं अगर हम उन्हें कायदे से अगर एक बार मान कर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, आजकल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए इंटीरियर डेकोरेटर
0: बहुत
1: इस तरह के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीवीसी मटेरियल,
0: बिल्कुल
1: फॉल सीलिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि अगर एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट भी हुई तो वो पीवीसी मटेरियल इतनी तेज़ी से आग पकड़ेगा कि उसको रोकना असंभव हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और जो प्लास्टिक पेंट्स यूज़ किया जा रहा है घरों में श्राइन के लिए, अच्छी चिकनी दीवारों के लिए, वो भी मुझे लगता है कि इस ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा दुश्मन ही बनेगा।
1: जी,
0: तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी और इसके अलावा हमारी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। यहाँ पर शिवेंद्र गुप्ता जी का मेल है, सभी को सुप्रभात, और लिखते हैं कि मैं एक लोक सेवक हूँ और मेरा जो लोक सेवा का क्षेत्र है उसमें ये 100% सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि जन सुविधा पूर्णतया सुरक्षित हो और मेरी तरफ से शून्य लापरवाही हो। शिवेंद्र लखनऊ से, और बहुत अच्छी बात है अगर आपकी तरह सबने अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली और जमीनी स्तर पर उतार ली तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसों की संख्या ना के बराबर हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल, अगला मेल जो है दुर्गा कृष्ण जी ने भेजा है और आपको बता दें इन्होंने स्पेशल एक मेल भेजा है, बड़ा ही सुंदर मेल है क्योंकि अंजू जी आज आपको 24 वर्ष पूरे हो गए हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और आज 24 जून है, आज 24 वर्ष पूरे हैं, तो उन्होंने आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं इस उपलक्ष्य में। बड़ी सुंदर सा चित्र बना के दिया है जिसमें कई सारी तस्वीरें मुझे दिख रही हैं शुरुआत से अब तक की, तो बहुत अच्छा आपने मेल भेजा है। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि आज के दौर में बहुत ये जो मुद्दा है वो उठाना बहुत ज़रूरी था, हफ्ते या महीनों में कहीं ना कहीं लिखते हैं कि ये जो मुद्दा है ये हमें अपने मतलब हमें अपने विचारों को रखने का मौका देता है। और बाकी इन्होंने शायद और भी सारी चीज़ें लिखी हैं मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से इसको हम लोग अगले मेल में शामिल कर लेंगे।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच दुर्गा कृष्ण जी, और इसी तरह हमें सभी श्रोताओं का प्यार मिलता है, आप लोगों के प्यार की ही ये ताकत है कि यहाँ पर 24 वर्षों से मैं लगातार आप सबसे जुड़ी हुई। एक बढ़िया सा गीत हम सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो आपके बाकी ईमेल्स इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सुनते रहिए FM Rainbow।

0: की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: 9:43 का वक्त और प्रोग्राम जारी है गुड मॉर्निंग लखनऊ, और साथ ही साथ बहुत सारे मेल्स और भी आ रहे हैं तो हम उन्हें समराइज करते हैं। बहुत लंबे चौड़े मेल्स भी कई लोगों ने लिख के भेजे हैं
1: लेकिन थोड़ा सा हमें समय को ध्यान में रखते हुए सभी मेल्स को शामिल करना है और बाद में इस मुद्दे को वाइंड अप भी करना है। तो अगला मेल किसका है?
0: अगला मेल रोशनी रावत जी का है। तो रोशनी रावत जी लिखती हैं कि मुद्दे पर ये कहना चाहती हैं कि प्रशासन के साथ साथ हमें भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और नीलू शर्मा भी हमें लिख रही हैं, सारे ख्वाब अधूरे रह गए, मासूम जलकर राख हो गए, अपनी अपनी राहों के मुसाफिर थे, आज सब इतिहास के पन्नों में खो गए। हमारी पूरी फैमिली की ओर से उन सभी मासूमों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, शत शत नमन आपने भेजा है। और कहती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ क्या लिखूँ। भगवान सभी बच्चों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। थैंक यू सो मच। और हम सब भी यही जानना चाहते हैं कि ये हिम्मत आएगी कहाँ से, क्योंकि सब कुछ तो चला गया है मुझे लगता है ना, लेकिन फिर भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उन्हें हिम्मत दें।
0: जी बिल्कुल। और अगला मेल शामिल करते हैं, विकास जी ने मेल भेजा है मुझे गांव सलीद तहसील सफीपुर ज़िला उन्नाव से, और लिखते हैं कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ और उन्होंने कुछ हिदायत दी है, लाइक जैसे अगर आप कमरे में फंस जाएं तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें गीला कपड़ा इस्तेमाल करें, सांस लेने में दिक्कत होने पर चेहरे पर गीला कपड़ा व तौलिया या रुमाल बांध लें, धुएँ को अंदर आने से रोकें, रोकने के लिए दरवाजे और खिड़की के नीचे तौलिया या चादर लगा दें। तो ये इन्होंने एक टिप दी है कि अगर आग में आप फंस गए हैं तो किस तरह से आप बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पिंकी बारी अमीराबाद लखनऊ से लिख रही हैं कि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने सही कहा, हम दूसरों को दोष देने के बजाय अगर खुद ही एक अच्छे नागरिक बन जाएं तो 50% ये दर्दनाक हादसे कम हो जाएंगे। पर क्या हम इतना खुद ध्यान देते हैं? सिर्फ कोचिंग हॉस्पिटल, मॉल्स, होटल्स में ही नहीं, हमें अपने घर में भी खुले तारों, लीकेज सिलेंडर और हीट वेव्स का बढ़ना, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हमें अलर्ट रहना होगा और देखना अनदेखा ना किया जाए। और मैं तो ये बोलूँगी कि हर एक एक महीने में हर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग की जाए, और अगर कोई न्यू कॉम्प्लेक्स बन रहा है बिना जांच के, बिना उनको परमिशन तक ना दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पेपर पर अलग और ज़मीनी स्तर पर अलग होती हैं। कई बार जो प्राधिकरण से नक्शा पास कराया जाता है आवासीय इमारतों का, बिल्डिंग्स का, घर का, वो अलग होता है और बनवाते समय वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और बाद में अप्रूवल के बाद वो जो जाँच का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, दोबारा वहां पर जाकर कोई सर्वे करता नहीं है। तो ये सारी चीजें, हालांकि इस समय बहुत सारी जांचें हो रही हैं, और ऐसे समय पे आपके आसपास अगर आप एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आपके आसपास भी अगर कोई किसी मकान में अवैध रूप से व्यवसाय चल रहा हो, निकास मार्ग बंद हो, अग्निशमन की कोई व्यवस्था ना हो, क्षमता से अधिक भीड़ जुटाई जा रही हो, तो चुप मत रहिए। पहले संबंधित संस्था को अवगत कराइए और फिर जरूरत हो तो
0: स्थानीय प्रशासन, नगर निगम या फिर विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग या फिर पुलिस को सूचना दीजिए, और अगर सुनवाई ना हो तो राज्य की ऑनलाइन या जन शिकायती प्रणाली, बहुत सारी प्रणालियां आपको पता चल जाएंगी, बहुत सारे इस तरह की हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहां पर आपकी सुनवाई होगी और आप हेल्पलाइन में जा सकते हैं। आप एक बार इंटरनेट पर डाल के देखिए, आपको तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इसी माध्यम से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और कई सारे पोर्टल में तो आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती है ताकि आप सुरक्षित रहें या किसी भी तरह का और भी आपको नुकसान ना हो।
1: बिल्कुल। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो और भी आपके जो ईमेल्स हैं उन पर हम ध्यान देंगे, रुख करेंगे उनका। सुनते रहिए FM Rainbow।

0: बात उड़ने की हो रही है तो हौसलों की उड़ान तो सबको भरनी ही है, सपनों की उड़ान भी बाकी कायम रखनी है. लेकिन जब मौसम की बात करें तो आज जो इस तरह का मौसम सुबह लखनऊ में था उसने भी हमें एक अलग तरह की उड़ान की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया था, थोड़ी सी राहत मिली.
1: हाँ.
0: तो चलिए मौसम का क्या हाल रहने वाला है हम जान लेते हैं. वेदर अपडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी. गुड मॉर्निंग सर.
2: जी गुड मॉर्निंग
0: सर. क्या मिजाज रहने वाला है मौसम जिस तरह से बदला है लखनऊ का सुबह से आज आज और आने वाले दिन के लिए हमारे श्रोताओं को बताएं जानकारी.
2: देखिए आज के बाद तरफ तो मौसम थोड़ा कुछ कमा रहेगा, बादल की आवाज आई रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा हो जाएगा तो जी. कहीं ना कहीं आज थोड़ी राहत है लेकिन बीच बीच में गर्मियों का एहसास भी रहेगा, लेकिन कल परसों भी थोड़ा गर्मी का एहसास रहेगा. लेकिन इस वीकेंड के एंड से मौसम काफी खुशनुमा बनने की संभावना है और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जैसा कि जो इतने दिनों की गर्मी था उससे राहत मिलने की संभावना है. कहीं ना कहीं अगले 3-4 दिनों के बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मानसून का आगमन की जो संभावना है बढ़ोतरी मिलेगी और कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से गर्मी थी उससे हमको राहत मिलेगी. तो कुल मिला के कहे तो अब यहाँ से इस वीकेंड से हमको एक बारिश भी मिलेगी और मौसम थोड़ा खुशनुमा भी रहेगा.
0: जी बहुत अच्छी खबर आपने बताई हमारे श्रोताओं के लिए, खास तौर पर गर्मी से राहत मिल जाएगी अगर मॉनसून का आगमन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर जानकारी देने के लिए.
2: ओके धन्यवाद.
0: तो हमारे साथ थे दानिश जी जो वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं और मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट आपको जरूर राहत दे रही होगी. फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं तो आपके ईमेल्स और आज का ये जो गंभीर मुद्दा हमने लिया है उसको हम वाइंड अप करेंगे.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
6: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
1: नौ बज के 52 मिनट का वक्त और बिना देर किए अब मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब समय बहुत कम है और मेल्स बहुत ज्यादा.
0: बिल्कुल. किसका मेल है आपके सामने?
1: मेरा मेल आया है, अंजू जी ने भेजा हुआ है मुझे मेल और उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मेल भेजा है लेकिन फिलहाल जिस बात पे उन्होंने जोर दिया वो ये कि मोहल्ले में कई बार देखा गया है बिजली चोरी होती है और इलेक्ट्रिक पोल्स पे कई तरह के तरीकों से कटिया का इस्तेमाल होता है जिससे बहुत पूरे चांसेस होते हैं कि आग लगने की संभावना रहती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है. स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, इनफैक्ट इन्होंने लिखा है कि कई जगह इन्होंने खुद देखा है कि बिजली बचाने

0: के लिए, मतलब पैसे बचाने के लिए बिजली चोरी की जा रही है और ये कई सारी घटनाओं को न्योता देती है। तो इसके लिए उन्होंने ये चीज बोली है कि हमें हमारे सामने ये कई सारी गतिविधियां हैं। लेकिन फिलहाल अंजू जी, एक प्रश्न आपसे मेरा ये है कि क्या आपने कभी इसकी शिकायत दर्ज की है? अगर नहीं की है तो अब आप अपनी आवाज उठाइए इसके खिलाफ, और जहां पर भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं तो आप एक जागरूक नागरिक बनिए और इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए।
1: बिल्कुल, ब्रजेश सिंह दीपू, इटावा कैसरगंज बहराइच से हमें लिखते हैं कि हर काम की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, घर बनवाइए तो आपातकालीन व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए। पता क्या पता कि हम किसी दिन इमरजेंसी में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलेंगे, और बिल्कुल अगर इमरजेंसी एग्जिट होता तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। इसका इसके बाद किसका मेल है?
0: राम कुमार रावत जी ने मेल भेजा है, काफी लंबा चौड़ा मेल है लेकिन इसको समराइज करके मैं ये बता रही हूँ कि इन्होंने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं लखनऊ ये के कोचिंग सेंटर्स में या लाइब्रेरीज में या फिर स्कूल ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं उन पे जो काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं उस पर इन्होंने अपना अपनी चिंता जताई है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज़ को ये देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए और टाइम टू टाइम इस क्षमा कीजिए इस तरह की इन्फोर्समेंट लागू करनी चाहिए ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है इस तरह के और गलत तरीके जो इस्तेमाल हो रहे हैं प्रशासन में वो उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, और शक्ति वाजपेयी जी ने भी हमें गुड मॉर्निंग भेजते हुए मैसेज किया फैजुल्लागंज से, आपने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि वीडियो ना बनाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अवेयरनेस दिखाता है और उसी को पागल बोल देते हैं जो अगर किसी तरह की स्टेप लेने की कोशिश करता है। तो खैर, जब हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं और किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कोई हमें रोके टोके किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच शक्ति, बहुत कम समय है हमारे पास, सबके मेल्स आए हैं लेकिन थोड़ा मुझे लगता है देर से आए। अच्छा, राममोहन गुप्ता जी ने भी जो मेल किया है कविता के स्वरूप में, दुर्घटनाएं होने के बाद देखते हैं व्यवस्थाएं सारी, जबकि बहुत जरूरी है पूर्व में निभाना जिम्मेदारी। आपकी पूरी कविता तो नहीं पढ़ सक पाऊंगी लेकिन बस इतना कहूंगी, इन्होंने जो लिखा है इंपॉर्टेंट बात कही है कि स्कूल कॉलेज में आवश्यक हो इनकी कक्षाएं, बहुत जरूरी है इनको पाठ्यक्रम का अंग बनाएं, और अगर हमने ये सीख लिया, ये अवेयरनेस बचपन से बच्चों को सिखा दी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बबीता राव जी ने भी मेल भेजा है साईगंज लखनऊ से, और उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तभी क्यों हम जागरूक होते हैं। बहुत सारे लोग जागरूक हैं, देखते ये हैं कि कहाँ पर कमी रह गई फिर भी लोग बोलते नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा, ये ज़्यादा गलत होगा कि हम एक दूसरे पर ब्लेम करें। अगर दूसरे के बच्चे कहीं जा रहे हैं पढ़ने तो आपके खुद के बच्चे भी तो कहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो ये प्रशासन को भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें एक बच्चे की जान के जान का सवाल है।
1: बिल्कुल, और सोनू परवाना जी ने भी लिखा है कि कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र रहे थे तो बात समझ में नहीं आया आखिर रास्ता क्यों, इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब अब तक जो हुआ उसको उसका नतीजा हम सब ने देखा, लेकिन अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, और शायद आज इसीलिए विशेष मुद्दा हमने चर्चा के लिए उठाया। और मुनेश कुमार राज जी का भी मेल है, इन्होंने भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने वास्तव में सबको झकझोर कर रख दिया, और इन्होंने भी ये कहा कि लोग देखा देखी करते हैं, सामने वाला जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ सब मुड़ जाते हैं, और इनका मानना है कि जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना स्थान तय करें और भली भांति जिस जगह पर हम जा रहे हैं उसको जांच पर रख लें।
0: जी, और आंचल सेठ जी ने भी मेल भेजा है और लिखती हैं कि यहाँ पर नज़दीक में ही पड़ोस में इनके यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ लेकिन वो जागरूक थे, तुरंत उन्होंने MCB गिरा दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अच्छे वायर्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते, या फिर जो मानक जो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके हैं या उनको वो क्वालिटी के क्यों नहीं हम लोग मायने रखते, सिर्फ चंद पैसे बचाने के चक्कर में हम अपनी जान से खिलवाड़ क्यों करते हैं।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब समय नहीं है कि वारिस जी, प्रवीण जी, घनश्याम जी, रौल अमित यादव, आप सबके ईमेल्स हम पढ़ें, और बहुत सारे और भी ईमेल्स में जो अच्छी इंपॉर्टेंट बातें थी वो छूट गई, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच जो कार्यक्रम है उसमें मैं ज़रूर सबको शामिल करूंगी। बस इतना कहूंगी चलते चलते कि आइए संकल्प लें, सिर्फ संवेदना नहीं सजगता भी, सिर्फ चर्चा नहीं कार्रवाई भी, और सिर्फ अफसोस नहीं बदलाव भी।
0: जी हाँ, यही उन सभी लोगों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने ऐसे हादसों में अपनी जान गंवाई।
1: FM रेनबो उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और आगे के लिए ऐसे हादसे कभी ना हो इसके लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी तय करने का आह्वान करता है। आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में इतना ही, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में अग्निकांड की घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी इमारत का इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे मंजूरी मिली है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या कोई अन्य व्यावसायिक कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोचिंग संस्थानों का सर्वे करने का निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिजली सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की जांच भी शामिल है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत राज्य सरकार आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम में अवसंरचना, आईटी और आईटी आधारित सेवाएं, वैश्विक क्षमता केंद्र और प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश पर आधारित 3 सत्र होंगे। इन सत्रों में संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस रोड शो का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी, निवेशक अनुकूल नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में उभरते अपार व्यावसायिक अवसरों को बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योगपतियों के सामने प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय सीयूईटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी पद पर 3,446 अभ्यर्थियों का चयन किया है। आयोग ने बीते वर्ष 13 जुलाई को इसकी लिखित परीक्षा कराई थी। कल आयोग ने इसका परिणाम घोषित किया। कृषि निदेशक रिक्त पदों के अनुरूप जनपदों में इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुभकामनाएं दी। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा ने की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत में कुल 15 पदक हो गए हैं इस प्रतियोगिता में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है सुगंध माटी की।

0: और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

राम राम प्रणाम श्रोता पंचन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर। 10:00 हो गया है मिनट 4 और आज है बुधवार और हम अंजू शुक्ला लेके आए गए हैं कार्यक्रम सुगंध माटी के एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया लोकगीत। और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अपन पूर्वांचल, सब जगह की खुशबू, मतलब माटी की खुशबू समेट के ये कार्यक्रम में आप सबके लिए अब से लेके 11 बजे तक आपके मनोरंजन के फुल इंतजाम। तो बस सुनत रहा है और ये पहला गाना कल्पना पटवारी की आवाज में, बहुत बढ़िया भोजपुरी लोकगीत।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अब भैया धुन से तो समझ ही गए हुए कि गाँव नहीं कौन चीज कौन सी है। हाँ, राजस्थानी के बहुत है बढ़िया ही मेहंदी गीत। भैया देखा शादी ब्याह के माहौल और मांगलिक कार्यक्रम के माहौल फिर शुरू हो गवा है। बहुत जनन के घरे में शादी पड़ी होए, ब्याह पड़ा होए, हल्दी मेहंदी संगीत कुल के तैयारी करे कहा है भैया। तो तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट का होते है बतावा, वो होते है कि डांस तरीके मटकब चटकब मजा आवत है भाई। ये गीत संगीत और नाच गाना ना हो तो जौन त्यौहार है, फंक्शन है, शादी ब्याह का माहौल है, रीति रिवाज रसम ये सब भाई अधूरा अधूरा लागत है, है ना। तो चला ये मेहंदी गीत न तैयारी करे हुआ तो ये पर डांस के प्रैक्टिस कर ले जा।

बस यही तरह कुतल मंगल सहनाई बाजत रहे, सुब सुब घड़ी सबके जीवन में, सबके घर आंगन में आवत रहे, बरसत रहे खुशियां अपार। ये तो शुभकामना हम सबके तरफ से आप सबके लिए हमेशा हमेशा रहा थे। केहू के जीवन में कौनो दुख के घड़ी अवे न करे, और अचानक आवे वाली तकलीफ तो बिल्कुल नहीं। बस भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, ये तो शुभकामना, ये हम सभी आशीर्वाद दे थे। और शुभकामना आप सबों की तरफ से हमों को मिलती है। भैया कहे से कि 24 साल हो ही गए, हाँ यही तो उन यही स्टूडियो में बैठी रहे 24 साल पहले। आज की तारीख रही 24 जून 2002, आई रहे बिल्कुल मासूम मासूम से आए, मतलब मासूम तो हम अब ही एकदम हसत खिलखिलात हुई तरह। लेकिन भैया वह वह टाइम के बात करी तो इतना नहीं बोलत उलत रहे, हाँ। लेकिन जब हेमा बैठे ई जौन हार्ट सीट यह है, तो हेमा तो बोलब जौन शुरू करे तो फिर चुप पे नहीं भाई, 24 साल से बोलती नहीं यही। अब ऐसे जौन है आप सबके प्यार मिलत है ना, तो हमारा हौसला बढ़ जाते। और देखा बहुत जने शुभकामना देता है, उन सबके धन्यवाद दिल से। और सुगंध माटी कार्यक्रम में चारों कैथी के सुगंध लेके आए ही अपने पूरे भारतवर्ष के, हाँ। इतना सुंदर मेहंदी गीत हमका तो बहुत पसंद है, हम तो कुल है पर नाच ले थे, हाँ। और इसे आपका जो ना नाचे प्रैक्टिस करे को तो इटी और हम सुनाए देते हैं। वैसे अगर गाड़ी वोड़ी चलावा था तो मतलब ई नहीं कि हाँ संभाल के आए, ठीक समझ गया ना, हाँ। और घरे में हैं हमारे जो भौजी हरे यहाँ है, आंटी जी हरे यहाँ है, बहनी हरे यहाँ है, तो वह सब है अपन काम करत करत देखा रसोइया में जो ना काम करत करत जब मन नाचे लागत थे ना मयूर ऐसे, तो कमोर अच्छे से होते, यही लिए हम बढ़िया बढ़िया गौने ही सुनावत ही तो मन मयूर कर नाचे दिया।

भैया नाचत नाचत थक गए हो गया तो तनी सांस ले लिया, पानी वानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, छाछ पी लिया। वैसे तो बहुत जने के तो अभी सवेर भय हो आए, चाह पियत हुई है चुस्की लई लई के देखा, लेकिन जेका जेका काम पे जाए कहा वो काम पे निकल चुका है, अब बहुत माने तो काम पे पहुंच भी गए हैं। हाँ, और देखा जब काम के बात होते तो एमा जो नहाए आप सबके ऊर्जा बढ़ावे काम हो करे थे रेडियो और एफएम रेनबो, और एफएम रेनबो पर भी जो ना बुधवार और शनि

सनिचर का, हाँ जाना था ना सनिचर यानी शनिवार सैटरडे, हाँ। और सवेरे 10 बजे ताई लई के 11 बजे ताई आप सुना थे कार्यक्रम सुगंध माटी की, ठीक। और सनिचर का तो हम बोली थे अवधि, देखा अवधि तो बोला तो ही कैसे कि ये हम कहावत है भैया राजस्थानी पंजाबी तो तनी तुनी कोशिश कर ली थे, लेकिन जो है जब अवधि के बात आवत है तो सनिचर के तो दिन हमारे सबके फिक्स हो गया है भैया कि अवधि गाँव नहीं सुनाई जाए, अवधि लोकगीत आप तक पहुँचावा जाए और अवधि में बात हो। लेकिन जब बुद्ध के बात आवत है भाई तो एमा जौना है अलग अलग प्रांत के सुगंध, अलग अलग प्रांत के माटी की खुशबू आप तक पहुँचावे का पूरा प्रयास किन जाते। और ई एकरे लिए कहे से कि हमारे सबके पास बहुते अलग अलग जगह से दूर दूर से श्रोता पंचे जुड़त हैं। और वैसे अगर बात की जाए अपने उत्तर प्रदेश के और ख़ास तौर पर लखनऊ के, तो भैया ही गंगा जमुनी तहजीब के शहर बाट है। और एहमा जौन है चाहे जौनी भाषा बोली के चाहे जौने प्रांत के मनई आए जाएं, हम सबे ओका बाँ फैलाए के ओका स्वागत करी थे और इस घुल मिल जाते कि जैसे जौना है का बताई, जैसे कि जौना है चाय में जब चीनी डाल देना घुल जाते या दूध में पानी डाल दे, हाँ वो ज़्यादा बढ़िया उदाहरण है, दूध हम पानी मिलाए देते दे ब्या तो पता न लागे कि कहाँ का पानी और कहाँ बाटे दूध। बस वही तरह लखनऊ में सब आए के घुल मिल जाते रच बस जाते, हाँ। और यही लिए ये कार्यक्रम सुगंध माटी के बुध वाले दिन आप सब सुना थे अलग अलग प्रांत के अलग अलग अंचल के जो भाषा बोली है वह मालूम गीत गौनई मजेदार मनोरंजन होत सबके आए। तो चला यही बात पे थी और आपका चल ही चलता ही पंजाब और पंजाबी में सुनाई थी गाँव नहीं, लेकिन ओकरे पहले बताए दी भैया बहुते जने ईमेल भेजत, हाँ हाँ। मोनू भैया, विकास भैया और देखा नीलू बहिनी, आशा बहिनी, राजकमल यादव भैया, पिंकी बहिनी, मुनेश कुमार भैया और देवशंकर भैया, सब जो है मेल वेल करे हैं, एक सबका हम पढ़बे। लेकिन ओकरे पहले आपका सुनाई थी एक थी पंजाबी बोली में बहुत सुंदर गीत, हाँ। यू में जो है बहुत खूब सुंदर के डांस हो सकत है, हाँ करा चाह तो कही ले बा, हाँ बिटियन से कही दिया करे नान नल लड़के जो एमर उमर उछलत कूदत, हाँ हाँ। अभी देखा एक जने बताए हैं कि वाह वाह मजा आवत है उनके नातिन में जो है नातिन या कि बिटिया आटे अभी पढ़ब घगरा पहन के नाचत यह है, हाँ। तो बस यह आनंद मैं माहौल बना रहा है, सुनत रहा FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: माई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे

0: pediatric neurology services, experienced doctors or personalized care.
1: Pine Pediatric Brain and Spine Surgery, PICU, EEG, MRI, Genetic Test, Physio और Speech Therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: ये बहुत अंग्रेजी में पिटर पिटर कही दे थी यही रिचा देखा तो कैसे अंग्रेजी में पिटर पिटर कही के गई है. देखा भैया वैसे वो जरूरी है हिंदी अंग्रेजी पंजाबी मतलब बहुत जरूरी है. देखा सब भाषा आवेक चाहिए और सब भाषा समझे जरूर चाहिए. ना बोल पावा लेकिन समझ के अपनी भाषा में जवाब दे दिया. हाँ देखा यही लिए अंग्रेजी हिंदी बहुत जरूरी है. अपन मातृभाषा तो बहुत जरूरी है. और वैसे जब कहा जाते संगीत के बारे में तो भैया संगीत कौनो बोली भाषा नहीं होता है. देखा आपका भले गौन ही ना समझ में आवत हो लेकिन मजा जरूर आवत हो है ना. हाँ मजा आवत है नहीं आवत है. देखा हमका बहुत जने बतावत हाँ कि कार्यक्रम के आनंद लेता. देखा चला ईमेल अगर पढ़ी तो भैया विकास भैया हमका गांव सलीद तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से सुनता है और कार्यक्रम के प्रशंसा लिख के भेजे हैं. बहुत धन्यवाद भैया. मोनू भैया का कहा था अंजू बहन जी को प्रणाम. राम राम 24 साल का साथ बहुत सराहनी. बहुत धन्यवाद भैया आपो सब साथ है. सुरुज जुड़ा है यही लिए बना और कहा थे कि हमरे नानी जी भी आपके प्रोग्राम सुन रही हैं और राम राम करत हैं. राम राम नानी जी. कहा थे कि पिछली बार आपके प्रोग्राम हमरे साथे नानी जी मिस करे रहीं तो नानी जी थोड़ा थोड़ा हमसे गुस्सा रहीं. अरे दैया नानी हो ए नानी गुस्सा उस्सा ना हुआ कर. हाँ देखा आपके लिए तो हम सब इतना बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम बनाई थे सुनाई थे. और मोनू जी जो उन्हें आपका सुनावा थे हैं मोनू बेटवा आपके हैं तो देखा यही तरह हंसत मुस्कियात कार्यक्रम का सुनत रहा कर और हमका सबका खूब ढेर का आशीष देवा कर. हाँ आशीर्वाद ओके बहुत जरूरत रहा थे. अच्छा आगे कहा थे कि लेकिन आज आपका सुन के प्रसन्न हैं और आज हमारे नानी करेला की सब्जी और बेसन की रोटी बनावत आपके प्रोग्राम सुने के बाद जरूर हाथ से चूल्हे पर बनी रोटी खावे. अरे वाह गजब ये कुल तो मजा भैया चूल्हा बनी हाथे के जो पोई रोटी होते ना ओके तो स्वाद है बिल्कुल अनोखा होते. चाहे जितना बड़ा तो स्टारर होटल में जाए के खाए लिया खाना वो मजा ना आए ना पौव्या. हाँ अच्छा देखा नीलू वहिनी कहा थी अंजू जिज्जी को मेरा राम राम. सभी श्रोता पंचन का राम राम. अंजू जिज्जी हम तो सनिचर के इंतजार करते रहे आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लाग आ जाओ. और कहा थी जिज्जी एक बात आपके मजे के बताती हूँ. हाँ वहिनी बतावा अब लिया ये तो लिख के भेजे है तो कहा कि लिखा ही. हाँ बताऊ बताओ हम ही अपनी जवानी. हाँ का बताई देखा का लिखे हाँ कि मेरी दोस्त पीहू पूर्णिमा मनु स्नेहा सोनी आरती दीपशिखा दीदी अतीक सिद्दीकी भैया धर्मेंद्र भैया अवनीश भैया सभी लोग अपने अपने ऑफिस में सुनत हैं आपको. अंजू जी ये सब कानपुर के. अच्छा आकाशवाणी कानपुर परिवार के हैं भैया. देखा सबका हमारा राम राम है और जितना जने सुनता है सबका राम राम प्रणाम. बस यही तरह जुड़ा रहा. देखा एफएम रेनबो लखनऊ होए चाहे आकाशवाणी कानपुर हो देखा सब एक परिवार के चचेरे मसोरे भाई बहन यही हम सब है. हाँ और देखा आशा पांडे बहनी राधे राधे भेजे हैं सुबह से प्रोग्राम सुनती हैं और हर गाना कनेक्ट हो रहा है. बस यही कनेक्शन तो चाहिए बहनी. देखा जब कनेक्शन जुड़ जाते हैं जब तार एमुर से उमुर जुड़ जाते बिजली वाला ना ही दिल के तार हाँ मन के तार जुड़ जाते ना तब है तो बढ़िया कार्यक्रम निकल के आवते हैं ना. हाँ बढ़िया मनोरंजन और दिन भी जिन जीवन भी सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाते फर्स्ट क्लास एकदम. एक ठी ईमेल आओ पढ़ दी पर देखा गौने इंतजार करती है और यह हाँ यह वाला ईमेल रहा राजकमल यादव भैया का ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से हमका सुनता है पर नाम हम बिल्कुल बढ़िया ही नहीं कही भैया. कहा थे मजा आएगा वह दीदी हमारी बेटी हिमांशी यादव घगरा पहन के डांस कर रही है मैम जी हो सके तो. देखा भैया तब की दाई जो आए रहे ना तो आप कहे रहे हाँ बलेश्वर यादव भैया के गांव नहीं के लिए तो देखा हम आपसे वादा करे रहे ना अगली बार उबे तो जरूर सुनो उबे तो हम पहले से एक ले के आए ही. हाँ और आपके साथ ही कहा था कि सुनता है रमजान हमारी वाइफ संगीता यादव सावन कुमार अनिकेत अंशिका अर्चना भाभी पकड़ियापुर से सुन रहे हैं. सबको नमस्ते भैया नमस्ते सबका नमस्ते.
4: गोरखापुर के हो गोरखापुर के
5: जिया जिया जिया
4: गोरखापुर के.

बात का बात का बात भैया मजा आवा कि नहीं आवा आवा होए जरूर कहे से कि ये रहे अजमगढ़ के बालेश्वर यादव भैया जाने माने सुप्रसिद्ध लोक गायक लोक कलाकार और इनके आवाज में ई गौने एक लोकगीत बहुत चिर परिचित बहुत प्रसिद्ध लोकगीत आप सब तक पहुंचा 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे प्रोग्राम सुगंध माटी की 10:40 का वक्त हो गया मैं हूँ आरजे अज्जू शुक्ला और भैया देखिए आप लोगों ने ईमेल का भेजा है इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा अवधि बोली की खड़ी बोली बोली आए देखा हमका तो जो ना कार्यक्रम में अवधि बोली पसंद है हमारे श्रोता पंचनों का बहुत पसंद है तो अवधि पढ़ी थे आए देखा ये जो ना है ये जो हार्ट मेल प्रोग्राम है ना ये तो हमका दिल का दर्द दे दे एक दिन हाँ हेमक ई मेल इहूँ प्रोग्राम में बतावा ले अब 10:00 हो गया 40 मिनट 2 बजे वाले कार्यक्रम का ई मेल फरमाइसी गीत लिख के भेज दें यहाँ छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता भैया देखा आप सबके बहुत बहुत नमस्कार 2 बजे ईमेल भेजा ये वाला ठीक। अच्छा ये जो हमारे पड़ोस पड़ोसन यहीं के पिंकी बहिनी अमीनाबाद में हाँ यहीं एक पड़ोसी यहीं मतलब तो जो ना हमका लिख के भेजे हैं कौनो ठीक कविता एक ठीक कविता बहुत सुंदर के कहा थी अंजू मैम का सुर मीठ बोली मनवा में खुशियन घोली 24 बरस से रेडियो पर सबके दिल में जगह बनौली आय हाय धन्यवाद बहिनी धन्यवाद। आगे लिखा थी भोर भयत आवाज सुनाई दिन भर मन मुस्काई दुखियन का ढांढस बंधावे खुशियन का गंगा बहाई मेहनत लगन और मुस्कान यही है उन यही आहे उनकर पहचान ऐसन आरजे बहुत कम मिले जिनसे बढ़त रहे सम्मान ईश्वर से ऐसन अरज हमारी खुश रहे अंजू मैम प्यारी 100 बरस तक चमकत रहे आवाज रहे सबकी दुलारी वाह बहिनी बहुत बहुत धन्यवाद कहा थी 24 बरस की बहुत बहुत बधाई अंजू मैम आपकी आवाज़ यूं ही लाखों दिलन में मिठास घोलत रहे बहुत बहुत प्यार बहुत स्नेह और बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद आपका इतनी सुंदर लाइन आप लिख के हमरे लिए भेज दिए हा कि काबताई जीव प्रसन्न होई गवा हमार। अब मुनेश कुमार भैया गांव भानपुर हरउआ जिला लखीमपुर खीरी से राम राम भेजा तहाँ कहा था कि कल लखनऊ के अच्छा जौन ई दर्दनायक घटना भय रही ओकरे बारे में लिखा यहाँ कि सतर्क रहो एक लापरवाही की कीमत कई जिंदगियां चुका देती हैं हादसा होते ही सबकी नींद टूटती है काश पहले आँख खुल जाती माँ की गोद सुनी कर गई एक छोटी सी चूक किताबें जल गई पर सपनों की राख आज भी उड़ रही है जो बच्चे कल देश का भविष्य थे आज वो बस एक खबर बनकर रह गए हैं। हाँ भैया दूसरों की गलती से सीख लो यारो वरना अपनी गलती की सजा बहुत भारी होगी सुरक्षा की दीवार छोटी सही पर गिरे तो पूरा घर ढह जाता है सतर्क रहो तो कल मिलोगे लापरवाही करोगे तो याद बन जाओगे और ऐसी घटना किसी के साथ दोबारा ना हो दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य मिले। बिल्कुल भैया पूरे आकाशवाणी एफएम रेनबो की टीम की ओर से भी यही प्रार्थना यही कामना और हम सबको सजग रहना होगा इसीलिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ हमने एक विशेष एपिसोड के अंतर्गत आज आप सबको सजग और जागरूक रखने के लिए ही प्रस्तुत किया था और वैसे इस मुद्दे पर हमेशा बात होनी चाहिए हम सबको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मुनेश कुमार भैया। अब आंचल बहनी कावली खती हैं जो दीदी अच्छा 24 साल बेमिसाल हम सबके साथ वैसे तो हम आपके साथ 7 साल से जुड़े हैं आंचल अंकित से रायबरेली से हमका ईमेल भेजा था वकील अहमद भैया ये हैं कटका हथूरी जिला सीतापुर से साहिबा शाजिया समास रिंकी पिंकी महक सबके नाम लिखे हैं गुलबशाह अमन पप्पू मामा हमारे जो सांड में रहते हैं सबके नाम लिख के भेजे हैं और कार्यक्रम के तारीफ करें हैं और भैया आम के बगिया में बैठा कच्चा आम खा था हाँ हमारे लिए अचार उचार बनवाया नहीं बनवाया बताया जरूर है। और एक जनी लिखे हैं श्रेया कुमारी हैं अच्छा श्रेया कुमारी रांची झारखंड से और आलमबाग में हमका सुनती हैं जोहार मैम हाँ आपो का राम जोहार कहती बहुत बहुत बधाई अपनी आपकी जर्नी डे के लिए आगे लिखती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और अलग अलग राज्यों का गीत बज रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे झारखंड के नागपुरी गीत बजा

देते तो मेरी माटी की यादें ताजा हो जाती है। ए बहिनी, अगली दाई जो अवे ना तो जरूर लेके अवे, झारखंडो वाला गीत है। और देखा अब जो कोशिश रहा था कि देखा एन वक्त पे नहीं, हम तो पूरी तैयारी पहले से प्लेलिस्ट बनाए के लेके आई थे। हाँ, और देखा मुनेश कुमार भैया हमका कुछ खाए पिए भेज दिए हैं, हाँ घर पर बनाए हैं, आकर खा जाइए। अरे दैया एक एक देख लेना तो जो उन्हें मतलब मुँह से आवाज़ नहीं खाली पानी निकले। और जानता ही काव आटे श्रोता मंचन काव भेजे हैं कौन चीज़ के फोटो बताई, ओका कहा थे पानी पूरी गोलगप्पा। हाँ अरे दैया एक बहुते जने और बहुत कुछ कहा थे लेकिन पानी पतासा, हाँ यो कहा जाते है। लेकिन देखा भैया ये सब जो उन्हें अपराध की श्रेणी में आवत है। हाँ जब प्रोग्राम करत रही तो ये सब कुल ना भेजा कर हमका सबका। हाँ तो चला भैया देखा एक गौने और सुनाई, हमरे लगे बहुत जने की ईमेल आवा है उका पढ़बे, लेकिन पहले ये बहुत मीठ के नीक के गौनई। और देखा जीजा सालिक रिश्ता बहुत प्यारा होत, बहुत स्नेह भरा होते हैं, वही पे है ये गौनई। हाँ हंसी मजाक तो चलत है भाई, हाँ बुरा नहीं मानिक चाहिए।

तो भैया जी जय साली के स्नेह का राम राम प्रणाम। भैया यही तरह स्नेह प्यार मोहब्बत बना रहा है, हंसी मजाक अपनी जगह चल रहा है, ये सब तो मनोरंजन के हिस्सा होते हैं। घर परिवार में हंसी मजाक तमाम तरह के यही तरह हंसी ठिठोली कही के आनंदमय माहौल बना रहा जाए, यही हमारे सबके शुभकामना है भैया। 10:00 हो गए हैं 50 मिनट और देखा बहुत सारे ई मेल आएगा। वहाँ सोनू परवाना भैया कहा था काव कहा थे कि माटी सुगंध प्रोग्राम सभी तक आपन खुशबू भेजता है, गाँव में दादी नानी चाची भौजी भैया दादा सबको बहुत नीक लगता है। हमारे दोस्त ब्योहारी भी मतलब अच्छा दोस्त तो ब्योहारी भी प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी जी, बाल गोविंद जी, रामचंद्र जी, भागचंद्र, प्रेमचंद्र, उमाशंकर जी, अंजू भाई ने एकदम जबरदस्त चला था प्रोग्राम सुगंध माटी की। आपके सनिचर के अपने साथी विजय भैया कल ही आए हो तो खुशी हो। अरे तनी अबे रुका, तुरंत विजय का फोन लगाई थे। हाँ कहाँ बाटे आए, चला आया सनिचर का, देखा कहा देखा आवत है नहीं आवत है, वो उनके ऊपर निर्भर कर रहे थे। भैया हम बुलाए जरूर ले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, राम राम कहे आए। और विनीत कुमार भैया यहाँ ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से माटिक सुगंध प्रस्तुत करने वाले अंजू शुक्ला जी को गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम भेजे हैं और कहा थे बोली बहुत मीठी सुरीली और प्रोग्राम अच्छा करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डिमांड भेजे है भैया देखा ये सब फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं ना, लेकिन आप सबके जौन रिक्वेस्ट आवत है, जौन डिमांड आवत है, उसका सबका ध्यान में रखी थे और कोशिश करबे कि अगली दाई जब तो जरूर आपका गाँव नहीं सुनोबे जौन आप लिखे हैं कलाकार के नाम। अच्छा अब इकरे बादे मेल करें हाँ रोशनी रावत बहनी, और काव कहा थी रोशनी रावत आए कहा थी कि राम राम प्यारी अंजू दीदी आप कैसी, 24 साल हो गए तो हम एक साल के रहें। अरे देखा भैया तो है उम्र सबका मालूम पड़ी गए, आए यह तरह नहीं लिखे चाहिए, देखा हम आऊँ अच्छा कम पढ़ी गए आए। चला कोनो बात नहीं, शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बत कही बहुत लुभावत यह है सुंदर प्रस्तुति, देखा चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुनती हैं सफीपुर उन्नाव के रहने वाली हैं, सब श्रोता पंचन के नाम लिख के भेजे हैं। और यही तरह जो उन्हें विजय ब्रजेश सिंह दीपू भैया भी हमका मेल करे हैं और इन्हों बधाई दे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा जी दवा लेने आए, अरे भैया पापा जी ध्यान रखा सब स्वस्थ रहा है यही हमारी कामना। अंगद यादव भैया आजमगढ़ से सुनता है शिवराम निजामाबाद आजमगढ़ से कहा था अपने माटी के गीत सुन के मजा आएगा वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नीलू शर्मा बहनी भी पूरी फैमिली की ओर से शुभकामना भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्हें कार्यक्रम की प्रशंसा लिखे हैं धन्यवाद सबका धन्यवाद। आसिफ भैया भी तेलंगाना से सुनता है, इन्हों सबके नाम लिख के भेजे हैं, सवेरे से नहीं सुन पाए अभी हमसे जुड़ा है, कोनो बात नहीं भैया सुनता रहा। अजय सिंह कुमार भैया भी राम राम लिखे हैं, गुड मॉर्निंग आपका और गौ नहीं बहुत अच्छी लागत यह है, अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। और 22 साल से हमसे जुड़ा है, हाँ भैया बस यही तरह जो है प्रेरणा देत रहा सबका और हमका जो शुभकामना भेजे हैं अकेले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मोनू भैया कहते प्रोग्राम तो मैं तो जलवा है बहन जी के 24 साल का अनुभव बोलता है, भैया अनुभव तो है ये है हेमा तो कौनों दुराए नहीं, अनुभव जब रहा थे ना तो वो सर चढ़ के बोले थे पता लगा थे हाँ। और यही ले कहा थे बड़े बुजुर्गन का आशीर्वाद उनके मार्गदर्शन बहुत जरूरी होते। चला इकट्ठी हरियाणवी सुनाई देता ही ओकरे बाद फिर कार्यक्रम भैया पूरा होने वाला है, 10:53।

अरे भैया, लेकिन हम कोनो घूंघट उंगट की ओट में नहीं छुपे जाते ही वहीं मिली थे आपसे कार्यक्रम संदेश, आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में यानी कि एफएम रेनबो पर। अब भैया चला चला देखा हाउस दीक्षित यानी अनिल कुमार दीक्षित भैया हमका ईमेल भेज दिया एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड से, कहा थे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम इज नाइस सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स सो ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हमारे जन्मदिन होने दिन नाइन है हमारे है वर्क एनिवर्सरी। अरे देखा यही कही थी जब आई रहे आप सबसे मुखाते बहरे ओका हो गया 24 साल हाँ, तो यही लिए हमका शुभकामना भेजे आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बस यही तरह प्रेम स्नेह प्यार मोहब्बत बनाए रहा जा और सुनत रहा 100.7 FM रेनबो, कहा से कि यही एक चैनल है जो आपके अपना बाटे आए, तो बस यही तरह अपन अपनापन बनाए रहा जा। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, सुगंध माटी की मैं आज बस इतना ही, राम राम प्रणाम।

नमस्कार, 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में SIT का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित SIT ने कल अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। जौनपुर जिले के जंघई स्टेशन जंक्शन से सुवंसा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके चलते 30 जून तक जंघई जंक्शन से ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। जंघई स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि सुवंसा के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन 30 जून तक प्रभावित रहेगा। यात्रियों को दिक्कतें न हों इसके लिए नई समय सारिणी और रूट तय किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों की मौजूदा स्थिति की जांच जरूर कर लें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में कल पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बधाई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों को 100.7 FM रेनबो पर। 11:05 का वक्त हो गया, ये प्रोग्राम है पूरी तरह से आपका, संदेश आपके गीत हमारे, बहुत सारी ऐसी बातें जो ज़रूरी होती हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, अक्सर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अक्सर हम अपनी व्यस्त ज़िंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं और उन्हें इग्नोर करना कई बार काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करें 0522 जो लखनऊ का STD कोड है, और फ़ोन नंबर्स हैं 2238-845 या फिर 2238-852। तो हमें फ़ोन कीजिए और ईमेल कीजिए अपने मैसेजेस के साथ। बिना देर किए एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
6: अस्सलाम
2: वालेकुम। सलाम, अपना नाम बताएं। अच्छा, शाजिया अंसारी है ना
6: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। शाजिया, आपका पिछली बार फोन कब लगा था?
6: बहुत दिन हो गए हैं।
2: सच्ची?
6: महीना भर हो गया है।
2: लमसम महीना भर? अच्छा।
6: हाँ, और शाम है वो भी लगता ही नहीं है। कहते हैं कि समा अंसारी, साहिबा अंसारी और शाजिया अंसारी तीनों बहने बहने, कास्ट सेम है तो क्या हुआ, थोड़ी ना कुछ होता है।
2: चलिए भैया, आप हम अच्छा हमको डांट रही है क्या शाजिया? आप अच्छा, चलिए, अच्छा मैसेज क्या देना चाहती है बताइए।
6: जब समाप्ति करती है तो हमारा कॉल काट देती है, जब हम करते हैं तो साहिबान सारे भी कॉल काट देती
2: है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहती है वो बताइए जल्दी से, हम लोग व्यक्तिगत बातें किसी और दिन करेंगे।
6: देना चाहते हैं कि हमारा नाम पोस्ट टाइम में भी लिखा करें, और नाम लिखते हैं तो हमारा नाम साजियान सारे लिखा करें। साजियान,
2: देखिए ये तो ये कोई मैसेज नहीं हुआ और मुझे लगता है कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, लेकिन जब नाम जो लिखे जाते हैं ना, हम बहुत सारा समय हमारा वेस्ट हो जाता है कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, और जो जिन श्रोताओं ने, देखिए शाजिया मेरी बात सुनिए, जिन श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे ईमेल्स भेजे होते हैं, बहुत काम की बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो शायद समाज को जागरूक करने में हेल्प कर सकती हैं, वो बातें सिर्फ आप लोगों के नाम की वजह से छूट जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी बात समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, आप लोग नाराज भले हो जाते हैं लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है तब जब हमें कई जगह पर ऐसे लोग मिलते हैं, हम लोग भी इसी समाज का हिस्सा है, ऐसे लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके आपका चैनल तो बस उन्हीं मुट्ठी भर श्रोताओं के लिए है जो रोज फोन करते हैं। और यही एक वजह है कि मैं बार बार अपने नियमित श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपकी बात हुई है, आज हुई है, तो कम से कम 15 दिन नहीं, अब तो 1 महीने का ब्रेक लीजिए, नए नए श्रोताओं को फ़ोन करने का मौका दीजिए, उन्हें जुड़ने का मौका दीजिए। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक हर प्रोग्राम में बात करते हो। और एक चीज़ और भी मैंने नोटिस की, कल जब शाम को मैं देव के साथ प्रोग्राम सुन रही थी, देव प्रेजेंट कर रहे थे हेलो FM, तो आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, तो हमारी एक बहुत ही प्यारी श्रोता ने झूठ भी बोला कि मेरा फ़ोन तो बहुत दिनों से नहीं लगा है। और अक्सर ऐसा होता है कि झूठ बोलते हैं हमारे RJs।

से कि हमारा फोन तो बहुत दिनों बाद लगा है, और जबकि सुबह बात हुई है और शाम को बोल रहे हैं कि नहीं, या फिर एक दिन पहले सुबह बात हुई है और शाम के प्रोग्राम में. देखिए, एक प्रोग्राम भले समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन चैनल तो वही है ना, और श्रोता भी वही है जो सुबह सुनते हैं शाम को भी सुनते हैं. तो फिलहाल एक गाना सुनवा देते हैं, हम वापस आते हैं, अपना मूड थोड़ा सा ठीक कर लूँ मैं, ठीक है? उसके बाद वापस आते हैं. उम्मीद करती हूँ हमारे नए श्रोताओं के फोन्स आएंगे आज, और हमारे नए लिसनर्स के लिए एक बार फिर से फ़ोन नंबर्स बताती हूँ, 0522 22 38 845 या फिर 0522 22 38 852. हमारे नियमित और पुराने श्रोता भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं, सम्माननीय हैं, और लेकिन हमें सबको मौका देना चाहिए.

0: बिल्कुल, प्यार के बिना तो ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्यार, एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जीने के लिए। और हर तकलीफ़ में भी अपनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। दुख दर्द बांटिए ज़रूर, खुशियों में भले ना पहुँच पाए, तकलीफ के समय पर एक दूसरे के साथ ज़रूर खड़े रहिए। 11:16 का वक्त हो गया है और अब हमारे साथ एक और श्रोता फ़ोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, आदाब।
0: हाँ, आदाब आपको भी। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम है मोहम्मद नजीम रैन।
0: नजीम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, रहने वाला तो वैसे बिहार दरभंगा का हूँ, पर बोल रहा हूँ दिल्ली से अभी।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा लगा हमारे नए श्रोता हमसे जुड़े हुए। आज पहली बार फोन लगाया क्या आपका?
1: जी, पहली बार किसी भी रेडियो में पहली बार फोन लगा।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो ऐतिहासिक तारीख हो गई आपके लिए तो आज, है ना। आज की डेट नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, वैसे आज की डेट मेरे लिए भी बहुत ऐतिहासिक है। खैर, क्या करते हैं रायन जी, नाजिम जी, और कहाँ, जब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम वगैरह रहते हैं?
1: जी, यहाँ पे
0: आप क्या करते हैं पहले, हमारे क्या करते हैं हमारे श्रोताओं को पहले बताइए, क्या करते हैं?
1: जी, मैं पर्स बनाता हूँ, जेंट्स पर्स।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो और जहाँ आप ये काम करते हैं उस कारखाने में या आसपास, फायर सेफ्टी वगैरह है अच्छे से?
1: हाँ, सब कुछ अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं, दो दो गेट है, बड़ा बड़ा खिड़की है, खुला रहता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, इसमें जो लिसनर्स कॉल करते हैं वो कोई एक अच्छा सा मैसेज देते हैं बाकी श्रोताओं को, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: जी, यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी रहें, अपना सही से मतलब ध्यान देख के रहें कि कहीं पे जैसे आग लगने वाली अगर बत्ती जलाए या कुछ जलाए तो इस पे ध्यान दे कि बंद करते समय उसे बुता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही
1: है। बहुत जगह सुने कि अगर बत्ती से आग लग जाती है,
0: छोटी छोटी सी लापरवाही से ये बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, बस इसी तरह हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े थे नजीम जी, और दिल्ली से हमें फ़ोन किया उन्होंने, अच्छा लगा कि एक नए श्रोता का कॉल आया। और भाई देखिए, पुराने श्रोता भी हमारे साथ लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़े से ब्रेक की हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि कभी कभी ब्रेक ले लिया करें कुछ दिनों का, ताकि हमारे नए लिसनर्स भी हमसे जुड़ सकें। अक्सर लोग मिलाना फ़ोन ज़रूरी समझते नहीं है, क्योंकि पता होता है उन्हें कि फ़ोन लाइन तो बिज़ी मिलेगी, फ़ोन लगेगा नहीं। तो और इधर इस प्रोग्राम में हम फ़ोन कॉल्स तो लेते ही लेते हैं, हम ईमेल्स भी शामिल करते हैं, तो रुख कर लेते हैं ईमेल्स का। सबसे पहले मैं कुछ मेल्स पढ़ना

चाहूंगी वो जो आज इस प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग लखनऊ में आए थे और उनका मेल हम शामिल नहीं कर पाए थे समय के अभाव की वजह से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज हमने अपने प्रोग्राम में उठाया. एक विशेष एपिसोड गुड मॉर्निंग लखनऊ का प्रसारित किया गया, मेरे साथ आरजे तरुश्री थी, और उस प्रोग्राम में जो लखनऊ में दुर्घटना हुई है, अग्निकांड हुआ है, वो और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनमें बहुत छोटी सी लापरवाही की वजह से, कई बार अनदेखी की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और बड़े जानमाल का नुकसान होता है. तो वो नुकसान, उस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं. हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी मासूमों के प्रति जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उनके परिजनों को हौसला दे सकते हैं, हम उनके साथ हम खड़े हैं, बस यही कह सकते हैं. ईश्वर उन्हें हिम्मत दे, और बस इतना कहेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएँ आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए हम और आप कितने जिम्मेदार हैं, एक अवेयर सिविलियन की तरह से, एक जागरूक नागरिक होने की हैसियत से. और बहुत सारे लोगों ने इस चर्चा का हिस्सा बने और अपने विचार हमें भेजे थे, उन्हें हमने शामिल किया था. कुछ ईमेल्स छूट गए थे, जैसे कि आंचल जी का मेल था. इन्होंने लिखा था कि अभी हाल में पड़ोस में जिनके यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन वो जागरूक थे, तुरंत MCB गिरा दी. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अच्छे वायर क्यों नहीं डलवाते हैं, और MCB कट अगर ऑटोमेटिक नहीं होती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो ये इसका मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. बिल्कुल सही कहा आपने आंचल जी. वारिस अली खान साहब ने भी लिखा था, रहमतों की सुबह सुकून से भरी दुआओं के साथ मुबारक हो, और जिंदगियों के साथ खिलवाड़ आखिर इसका जिम्मेदार कौन है. इस टॉपिक पर ये अपनी राय नहीं रखूंगा, ऐसा इन्होंने लिखा, क्योंकि आप इसे ऑन एयर नहीं करेंगे. अच्छा, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इस मंच पर कुछ पाबंदियों के साथ बंधे होते हैं. आगे आपने लिखा है, क्योंकि एक कहावत है कि एक हमाम में सब नंगे, पूरा सिस्टम ही करप्ट है. लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा हम सब भी तो हैं ना वारिस जी. जब हम बात करते हैं अपनी जिम्मेदारियों की, तो जो भी किसी भी चीज़ की हम बात करें, करप्शन की ही बात कर लें, तो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं. अगर उसका विरोध नहीं किया जाएगा तो फिर वो चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, और उसका हिस्सा बनना, उसे सपोर्ट करना भी गलत होता है. इन्होंने एक वाक्या लिखा है कि एक साहब 1 kW कनेक्शन लेकर AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV चला रहे थे. जब इंक्वायरी हुई तो उन पर जुर्माना किया गया. ज़रा सोचिए, वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती थी. थैंक यू सो मच वारिस जी. संजय नगर ऐशबाग से आपका ईमेल मिला था. प्रवीण जी का भी मेल आया. इन्होंने भी कहा कि आजकल जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका प्रमुख कारण आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में नियमों का पालन न होना, उसे नज़रअंदाज करना, जिससे हमें तो नुकसान हो ही रहा है बल्कि प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है. अवैध निर्माण का बहिष्कार करना चाहिए, और निर्माण को जिस कार्य के लिए स्वीकृति मिली है उसमें वही गतिविधि करना चाहिए. कहीं भी जाएं तो बस सबसे पहले वहां मौजूद मिलने वाली बेसिक सुविधाओं, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा के सभी इंतजाम को जानने का हमें पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है. NOCs जो हमारे डिपार्टमेंट्स से दी जाती हैं विभिन्न विभागों की तरफ से, वो ज़रूर चेक करनी चाहिए. और अगर आपको NOC नंबर पता है तो आप उसकी वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं साइट्स पर जाकर. और इसके साथ साथ घनश्याम जी का भी मेल, नारायण नगर, फैज़ाबाद रोड, लखनऊ से. इन्होंने भी नमस्कार भेजा, और लिखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े आलीशान भवन का निर्माण होता है, बेसमेंट में चारों ओर नीचे कोई सुविधाजनक रास्ते नहीं होते हैं, और इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए और ख़ुद को भी सावधान रखना चाहिए. रॉयल अमित यादव का भी मेल आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. 24 साल पूरे हुए जो मैम, आपका ये साथ मुझे और शक्तिशाली पावरफुल बना दिया इतने साल में. लिखते हैं आपके रंग और रूप के बारे में, आज हम लिख रहे हैं आपके उड़ते हुए ख्यालों के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया. और इन्होंने भी एक मार्ट की का जिक्र किया है कि जो फायर एग्जिट होते भी हैं मार्ट्स में या ऐसे कमर्शियल जगहों पर, वहाँ पर ट्रॉलीज रख दी जाती हैं या सामान रख दिया जाता है. जो इमरजेंसी एग्जिट होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है एक तरह से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आज के इस प्रोग्राम से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू लिखा है आपने जागरूक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. ये कुछ ईमेल्स थे जो आज सुबह के कार्यक्रम में आए थे और वो छूट गए थे, शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें हमने शामिल किया. और इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, उन्हें हम ज़रूर शामिल करेंगे. लेकिन उसके पहले एक बड़ा बढ़िया सा गीत आपका इंतज़ार कर रहा है, उसे सुनिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ में. और इस सॉन्ग को सुनने के बाद वापस आते हैं तो आपकी बातें जारी रहेंगी हमारे गीतों के साथ. प्रोग्राम संदेश आपके, गीत

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा,
2: जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: साढ़े 11 बज गए भाई, क्या कर रहे हैं आप जहाँ कहीं भी हैं? रेडियो के वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके, गीत हमारे। और हम जब बात करते हैं संदेशों की तो बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं और शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सबकी तरफ से मिल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। हम देख लेते हैं हमारे साथ फ़ोन पर कौन है। हेलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं।
5: मैं विकास सिंह, गांव सलीम तहसील तकीपुर जिला उन्नाव से।
4: क्या बात है विकास जी,
5: सबसे पहले आपको 24 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बस आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे। और विकास, आपका नाम पता तो हमें भी रट गया, ईमेल्स अक्सर आपके आते हैं, फोन कॉल्स बहुत कम आती है ना।
5: यस मैम, फोन है मैम, आपने जो मना किया ना, आपकी बात सुन मैम कायम रहता हूँ कि एक एक महीना गैप के अंदर, उसके बावजूद भी मैं एक डेढ़ महीने बाद ही फोन करता हूँ।
4: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आई होप सब इस बात को फॉलो करें और कोई बुरा ना माने, क्योंकि जब बात आती है, क्योंकि चीज़ें अक्सर ऐसे हम कह जाते हैं कि मुझे भी लगता है कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे श्रोता सब समझदार हैं, बहुत अच्छे से सब समझते होंगे कि हम जब अगर कुछ कहते हैं तो उसका उसकी वजह क्या है। क्या कहना चाहते हैं विकास आज?
5: मैम मैं आज एक कार्यक्रम के फीडबैक देना चाहता हूँ, आज बुधवार है।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताएं।
5: कार्यक्रम प्रमुख मैम को चरण स्पर्श है, और मैम कार्यक्रम मैम से ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ के सभी आरजे लगातार मेहनत करते हैं और कितना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और आपकी बात मैं जरूर मैम तक पहुँचाऊंगी।
5: मैम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, विजय श्रीवास्तव सर को कार्यक्रम सुबह नमाती में लाया जाए।
4: अच्छा चलिए, नोट कर लेते हैं हम। एक एक किसी और श्रोता ने भी ये बात कही थी, तो ये बात हम जरूर पहुंचाएंगे वहां तक। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये थे विकास उन्नाव से, और बहुत सारे लिसनर्स हमें ईमेल्स के माध्यम से अपनी अपनी बात भेज रहे हैं। आइए उनका रुख करते हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल आया और इन्होंने राम राम प्रणाम भेजा। अच्छा, ये मेल पिछले प्रोग्राम में आया था, थोड़ा सा देर हो गई आपको मेल भेजने में, है ना, इसलिए शामिल नहीं हो पाया था। 10:57 पर आपका मेल हमें मिला था। लिखते हैं कि आपके FM रेनबो में सेवा देते 24 वर्ष पूरे होने पर हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा धन्यवाद तेज बहादुर जी। और बोला है आपने बहुत कुछ हमारे लिए कहा है, थैंक यू सो मच। और सुगंध माटी की में बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनवा रही हैं, थैंक यू, अच्छा लगा आपको प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाँव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं ये, और गुरुग्राम हरियाणा में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। रामराज जी का भी मेल आया है, इन्होंने हमें मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण प्रजापति, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं। संदेश के तौर पर कहना चाहते हैं कि सबको सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी शुक्रिया। इसके अलावा मोनू जी का मेल, हम मानवता हमें दया करुणा सहानुभूति और सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान सिखाती है, भाईचारा समानता को बढ़ावा देती है, सिखाती है कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मानवता का सार दूसरों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना है, और यह हमें एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है, मानवीय मूल्यों को समझें, एकता बनाकर रखें। बहुत ही सुंदर सा मैसेज आपकी तरफ से मिला मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल, हैदराबाद तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश है कि बिजली की बचत करें, जब कोई कमरे में ना हो तो कमरे में बल्ब और पंखे बंद कर दें, अगर आप दुकान पर हैं तो दुकान बंद करने के टाइम पूरी लाइट बंद कर दें जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, और अपने घर या दुकान में अग्नि नियंत्रण यंत्र जरूर रखें। और आपने भी

भी श्रोताओं के नाम लिखकर भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी का भी मेल नमस्ते बोला है, जल बचेगा तो कल बचेगा। एक छोटे से मैसेज में बहुत बड़ी बात आपने लिखकर भेजी है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, थैंक यू सो मच गीता जी। सोनू जी का मेल, इन्होंने कहा एक दो चरणों में यदि उसे आशातीत सफलता नहीं मिलती तब भी वो संघर्ष करता रहता है और अंततः विजयश्री उसे प्राप्त हो ही जाती है, इसलिए सच ही कहा गया कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई होगी और शायद इसीलिए सफलता इस बार नहीं मिली, लेकिन अगली बार और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वकील अहमद जी, कैसे हैं आप? आपने आवाज़ की प्रशंसा की, बहुत शुक्रिया। गर्मी हो रही, किसान भाइयों खेतों में काम हो तो सुबह जाएं या शाम को पानी साथ ले जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से भी आया। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतुरी सिला सीतापुर से भी आपका भी मेल आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें मेल भेजे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखकर भेजी हैं, फ़ोन कॉल्स भी आप ट्राई कर रहे हैं लगातार, तो उन्हें भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लीजिए सुनवा देती हूँ आपको एक बढ़िया सा गाना, इसे एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी, रूप की रानी चोरों का राजा है ना ये गाना था, मतलब नहीं रूप दी रानी चोरों का राजा नहीं है, रूप दी रानी काली तेरी चोटी वाला गाना। और सबसे बड़ी बात ये कि जो है जब इस तरह के गाने जो

0: ओरिजिनल वाले हम लोगों ने सुन लिए होते ना, तो बड़े सारे लोगों को नए वर्जन जो रिक्रिएटेड वर्जन होते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता है मेरे जैसे लोगों को, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं हम भी. एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से सही है, लेकिन जो पुराने गाने जो ओरिजिनल बने थे ना, वो तो ओरिजिनल ओरिजिनल ही है यार, क्या ही कहा जाए. खैर, फिलहाल वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में. संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला आपके साथ. 11:00 हो लीजिए, हो गए एक ये 40 मिनट. लेकिन जो लोग हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप में सुन रहे हैं या लाइव रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उनका उन तक हमारी जो आवाज़ है, प्रसारण है, वो कुछ सेकंड्स लेट पहुंचता है. तो इसलिए जब आप अपनी घड़ी मिलाएं तो उसके अनुसार मिलाएं, ठीक है. हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:40 और 18 सेकेंड्स का वक्त हो रहा है. हमारे साथ फ़ोन पर कौन है, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: नमस्ते, मैं आराध्या बोल रही हूँ.
0: नमस्ते आराध्या, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल जबरदस्त हूँ. आराध्या क्या करती हैं आप? बड़ी छोटी सी प्यारी सी आवाज लग रही है. किस क्लास में हैं?
1: 6th class में.
0: क्लास 6 में, और कहाँ से बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं इटावा से कर रही हूँ.
0: अच्छा, इटावा में आप हमें लाइव रेडियो पे सुनती हैं या ऐप में?
1: मैम मेरे पास छोटा फोन है मेरी मम्मी का, तो मैं फिर सुनती हूँ.
0: अच्छा, साफ सुनाई पड़ता है वहाँ पर हमारा प्रसारण?
1: बिल्कुल मैम.
0: क्या बात है. और आप कितने दिनों से रेडियो सुन रही हैं पढ़ाई के साथ साथ?
1: मैं अभी आधा एक ही साल हुई है मुझे, 2025.
0: ओके, और फोन भी लगाती हैं हमारे प्रोग्राम्स में?
1: यस मैम, मेरे वैसे में तो कभी नहीं लगा, पर संदेश आपकी गीत हमारे में होली पे लगा था.
0: अच्छा, और आज दूसरी बार मिला फोन आपका?
1: यस मैम.
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आराध्या आपसे बात करते हुए. क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? एक बहुत ही अवेयर लिसनर है हमारी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा आपका, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है. और जब आप जब इस तरह से जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, क्लास 6-7 के बच्चे हैं, वो अवेयरनेस की बात करते हैं और मैसेज देते हैं बड़े लोगों को, तो और अच्छा लगता है. तो क्या मैसेज है आपका जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए?
1: मैम मेरा मैसेज ये है कि मैं कभी भी अगर कोई दावत वगैरह में जाते हैं तो लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं और खा नहीं पाते और फेंक देते हैं. तो मैम खाना तो वेस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, वो वाला अपनी दो रोटी की इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें ऐसा वेस्ट ही करना खाना चाहिए. अगर घर पे आप खाना बनाते हैं तो अगर आप अच्छा तो किसी गरीब को दान कर दीजिए, उसको उसकी दुआएं आपको लगेगी, अच्छा होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी और समझदारी वाली बातें आप करती हैं आराध्या. और इस इतनी सी उम्र में आपको ये समझ है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर आपकी बात सभी लोग मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वेडिंग सीजन फिर से आ रहा है और बहुत सारे लोगों के घरों में पार्टी होगी, तो जो लोग खाना वेस्ट करेंगे वो आराध्या की बात को उससे पहले ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना?
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच, फिर से कॉल कीजिएगा. बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर. तो ये थी आराध्या इटावा से हमारे साथ जुड़ी थी. और बहुत सारे लिसनर्स ईमेल के माध्यम से अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं. संजू देवी ने हमें लिखकर भेजा है, ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिटौरा जिला सीतापुर से, रेनबो की जान, अच्छा रेनबो की जन्नत आए है, खुश हो जाते हैं हम ये सब सुनकर. लेकिन ये मतलब आपका प्यार है और बहुत ज़्यादा मिल जाता है मुझे, मेरी खुशकिस्मती है. थैंक यू सो मच. और 24 साल पूरे होने पर इन्होंने भी हमें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. मुनेश कुमार जी का भी ईमेल आया है और आपने क्या लिखा है, आप लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, संदेश के तौर पर इन्होंने एक छोटी सी कविता लिखकर भेजी है. मस्त रहने वाला बचपन मोबाइल में व्यस्त है, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्सत हो गई फुर्सत, अब तो सबके पास काम बहुत है, नहीं ज़रूरत बूढ़ों की, अब हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है. बहुत बड़ा वाला तंज कसा है इसमें आपने. उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है, आदि हैं एसी के इतने कहते हैं, बाहर घाम बहुत है, घाम मतलब धूप, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ. लिखते हैं कि झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐठ एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान बहुत है. मुनेश कुमार राज जी, बहुत सारी बातें आप इसमें कह गए हैं जो बहुत गहरी हैं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बहुत शुक्रिया. कृष्णकांत जी का भी मेल है कैसरगंज बहराइच से, लिखते हैं कि FM रेनबो लखनऊ प्रसारण में सेवा में 24 वर्ष पूरे करने पर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा धन्यवाद कृष्णकांत जी. कैसरगंज बहराइच से आपका मेल मिला मुझे. उपरोक्त अच्छा ये 2003 से जुड़े हुए हैं और ये सफर निरंतर जारी है. और बीते वर्षों में इस चैनल से कई आरजेस जुड़े जिनमें आपकी उत्कृष्ट सेवा आज

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: 11:50 का वक्त हो गया है, 100.7 FM रेनबो ट्यून कर रखा है आपने, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और थोड़ी देर बाद हम कहेंगे चल रहा था। फिलहाल एक हमारे आज के इस प्रोग्राम की लास्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
5: हेलो मैम, प्यार भरा नमस्कार।
4: नमस्ते, कैसी हैं आप, और बहुत दिनों बाद आपका फोन लगा या अभी हाल ही में लगा था?
5: नहीं मैम, काफी अंतराल के बाद हमने कॉल लगाया है, और मैम आपको आज के दिन पहली बार ड्यूटी पर आई थी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
4: थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दीजिए हमारे लिसनर्स को।
5: मैम मैं रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
4: क्या बात है। अच्छा, दीवानों का शहर रायबरेली का नाम था या आपने रख दिया?
5: मैम हमने रखा,
4: क्योंकि यहाँ पर दीवानियाँ रहती हैं।
5: जी जी मैम बिल्कुल।
4: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या कहना चाहती हैं आज आप रिंकी?
5: मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लखनऊ में हादसा हुआ है उसको हम लोगों ने भी देख सुनकर मैम बहुत भावुक हुए हैं, तो उन माता पिताओं को और भाई बहनों को हमारी तरफ से बहुत सारी मतलब वो श्रद्धांजलि है, जो बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं।
4: जी जी। उसका
5: काफी ज्यादा हमें भी दुख है मैम, उनके माता पिता को रोते हुए देखा तो हमारी आंख में भी आंसू आ गए।
4: बिल्कुल, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी रिंकी, और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, और वास्तव में छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, और जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो सकती, मुझे तो यही नहीं समझ में आता।
5: बिल्कुल, बहुत ही अफसोस है उस बात को सुनकर देख करके। मैम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भी ऐसा हादसा किसी के साथ भी ना हो।
4: बिल्कुल, और इसके लिए हमको और आपको सबको सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। हम तो ये कहते हैं कि जब ऐसे छोटे छोटे जगहों पर मकड़ जाल की तरह बिजली के तार फैले हुए हैं, या बिल्डिंग्स खड़ी हैं, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल काम चल रहा है, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी जगहों का विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे स्थानों पर जाना ही नहीं चाहिए, और शिकायत तो करनी चाहिए, अपनी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए।
5: मैम बिल्कुल, कहीं भी अन्याय हो तो हमें आवाज जरूर।
4: बिल्कुल, तो इसीलिए आज का ये एक
5: बात ये कहना चाह रही हूँ, सोमवार को हमारे भाई की परीक्षा है, तो मैम आपको और आपकी पूरी टीम को इनवाइट कर रहे हैं। और
4: बहुत बहुत शुक्रिया न्योता देने के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को।
5: उन सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी इनवाइट है।
4: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच रिंकी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रिंकी हमारे साथ, और अब हम ईमेल्स का रुख कर लेते हैं और जल्दी से अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जरीना बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, स्टूडियो में आ चुकी हैं। अच्छा, अब हमारे सामने मेल है कौशिक वधावन जी का, राजकोट गुजरात से ये हमें मेल कर रहे हैं। कौशिक, अस्मिता, वडवारा परिवार है ये, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। मेल में मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करना है ज़रूरी। बिल्कुल सही बात आपने कही, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। मुनेश कुमार जी ने आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखकर भेजी थी। साथ ही साथ राममोहन गुप्ता जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि वर्किंग एनिवर्सरी पर बधाई स्वीकार करें 1000 राममोहन गुप्ता अमर की शुभेच्छाएं बार बार, वर्ष 24 से खनकती लुभाती आवाज प्यारी शतवर्षीय वह तक बनी रहे पहचान, दुआ हमारी FM रेनबो संग जीवन के हर पग पर छाएं, सपरिवार रहे समृद्ध स्वस्थ सुखी हैं अमर इच्छाएं। क्या बात है राममोहन गुप्ता अमर जी, लखीमपुर खीरी से आपने इतनी प्यारी शुभकामना लिखकर भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी फोटो खींच कर मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, बहुत शुक्रिया। कुलदीप गुप्ता जी, इन्होंने भी बधाई दी है हमारे 24 साल के सफर के लिए, साथ ही साथ 8 बजे से ही हमें सुन रहे हैं, मगर मेल भेजने का टाइम नहीं मिला। मैंने काफी समय से महसूस किया कि जिस दिन आपका कार्यक्रम होता है उस दिन मेरी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाती है, क्या बात है, और मुझे कार्यक्रम सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है कार्य की व्यस्तता की वजह से। गुड मॉर्निंग लखनऊ में बुद्धिजीवी श्रोता साथियों द्वारा मुद्दे पर बहुत ही ज़रूरी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी पिछली रात 9:30 बजे हमारी दुकान के थोड़ी दूर पर बिजली के पोल से ऑटोमेटिक वायर केबल जा रही थी, जल रही थी, जिसका एरिया लगभग 5 किलोमीटर

कवर कर रहा था, तो वहाँ पर जो जो भी छोटे दुकानदार हैं अक्सर अपनी दुकान लगा देते हैं, उनको भी सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपने पिछले प्रोग्राम माटी की सुगंध की भी तारीफ़ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत सारी छोटी छोटी सावधानियां अगर हम रखें ना तो बड़े हादसों को हम टाल सकते हैं। कुलदीप गुप्ता जी उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल मिला और बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे भैया रोज़ आपकी आमदनी इतनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें आप, ऐसे ही बढ़ती रहे। अरुण कुमार जी का मेल पढ़ते हैं, कमैया हरदोई से कुशवाहा जी। अरुण कुमार जी आपको नमस्कार, और आपने लिखा है कि अलग अलग किरदारों में प्रोग्राम प्रस्तुत करने में कितनी मेहनत करती हैं जी। हम लोगों का मनोरंजन के साथ साथ अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आज का संदेश आपके अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत है ज़रूरी, उतना ही हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। संदुजू देवी जी ने भी आपका मेल मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, आपने पिछले प्रोग्राम की तारीफ भी की है और संदेश के तौर पर इस मेल में ये कहना चाहती कि हमेशा नमक की तरह रखना चाहिए रिश्ते, आपको ज़्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके और आपके बिना रह भी ना सके। अगली बार मैम आप कब आओगे, शनिचर को आएंगे ना, शनिवार को, ठीक है, सैटरडे को। ब्रजेश सिंह दीपू जी का भी मेल पढ़ लेते हैं। जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं हमको पता है, शायद उनकी प्रॉब्लम उनका गुटखा पान मसाला होता है, ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं लगाते, लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बाकी डिसीजन उन भाइयों का है, जो आप सब ना समझदार हैं वरना समझाना बेकार है। थैंक यू सो मच, कैसरगंज बहराइच से आपका मेल आया, मैंने सारे के सारे मेल्स पढ़ लिए, सारे फ़ोन कॉल्स जितने भी आए वो शामिल कर लिए, और अब एक धमाकेदार गाने के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। जितनी भी शुभकामनाएं आपने हमारे लिए भेजी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए FM रेनबो के साथ, हमारे साथ, हम सभी RJs के साथ, और हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो। मैं मिलूंगी आपसे शनिवार सुबह 8:15 पर, अगले कुछ घंटे रहेंगी जरीना आपके साथ। अंजू की ओर से आज बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियात तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि देश में अब तक लगभग 83% कम वर्षा हुई और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। लगभग 315 जिलों में वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना है और इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही सीमित है। इनमें से अधिकांश जिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं। प्रदेश सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्लों की गायों पर आधारित डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देगी। पात्र गोपालकों को अधिकतम 11,80,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत इकाई लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा और महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में गिर, सहीवाल और थार पारकर जैसे उन्नत नस्लों की गायों पर आधारित डेयरी इकाई स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक गोपाल नंद बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के लामाटीनियर कॉलेज की शूटिंग टीम के कप्तान राजवीर सिंह कक्कड़ ने नई दिल्ली में आयोजित 39वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। राजवीर ने अंडर 18 यूथ वर्ग की 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में 400 में से 383 अंक हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गंगा दशहरा व ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व के अवसर पर कछला बॉर्डर व कछला गंगा घाट क्षेत्र का जिलाधिकारी बंदायु अवनीश राय और एसएसपी अंकित शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चित्रकूट जिले के 15वें वित्त आयोग के तहत 2,62,00,000 रुपए की लागत से 5 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 1 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण चिल्ला माफी, चुरह, केशरुवा, बरदरा, तीरमऊ और सरधुआ ग्राम पंचायतों में होगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में BPHU की स्थापना होगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

भाई मोनाली ठाकुर की इस प्यारी सी आवाज के साथ स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:08 का वक्त और ये जो वक्त है वो कहता है कि भाई प्रोग्राम शत्रुपा की शुरुआत हो जाती है। और आज जो होता है डे वो होता है स्पेशल डे हमारे जायका और बेकरी का, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी जो कहीं ना कहीं हमारे खान पान हमारे व्यंजन से जुड़ी होती। तो बस ऐसी ही बातों को लेकर के आपकी दोस्त जरीना हाजिर है एक बार फिर से। वैसे भाई मौसम ने बड़ा आज हम सभी के साथ गेम खेल दिया। सुबह से हम सभी लोग रिसीव कर रहे थे मैसेजेस कि भाई आज कुछ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और हम सभी को लग रहा था कुछ तो आज मौसम में बढ़िया होने वाला। लेकिन भाई 12 बजते दोपहर आते आते हम सभी के सपनों पर पानी फिर चुका है। सूरज देवता बढ़िया सा बिल्कुल चमचमा रहे हैं और रोज़ की तरह चमचमा रहे हैं, जहाँ थोड़ी सी डिसहार्टनिंग हम सभी को हो रही है कि भाई थोड़ा सा तो बारिश मतलब हल्की फुल्की हवा चल ही जाए। खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल हम सभी भी ऐसे ही कायम है। आई होप कुछ शाम तक बढ़िया सा मौसम कमाल दिखाए। और आज जिस तरह से हम बात करते हैं ना शत्रुपा में आज के सेगमेंट पर, तो मैंने सोचा कि जब हम भारत की बात करते हैं हमारी कंट्री की बात करते हैं हमारे देश की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ अपनी संस्कृति भाषा और परंपराओं के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी खासियत है वो है लाजवाब खान पान जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर शहर हर राज्य

हर गली का एक अपना स्वाद है जो अपने साथ इतिहास, संस्कृति और लोगों की भावनाओं को बिल्कुल समेटे हुए है। तो चलिए कुछ ऐसा ही बढ़िया बढ़िया मैं परोसने वाली हूँ आपकी प्लेट में भी, क्या है वो बात उसके लिए फिलहाल इंतजार करिए। अगला गाना जो है वो भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इस गाने को और उसके बाद बहुत सारी बातें करेगी आपकी दोस्त ज़रीना आज आप सभी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700।

0: 0001-4242 पर
1: 8700-001-4242।
2: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.

जी हाँ दोस्तों, फिल्म बर्फी का था ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर। इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को, अपने घर में अगर आपको लगता है कि आपको घड़ी मिलाने की जरूरत है तो बस मिला लीजिए, 12:18 का वक्त हो रहा है। और साथ ही ये देखिए सेकंड्स जो है 58, और ये देखिए बस 58 कहा ही था उसके बाद ये सेकंड्स पूरे हो चुके हैं, 12:19 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज है वेंसडे, तो आज हम बात करते हैं भाई कुछ खान पान की। कहते ना जायका सिर्फ खाने में नहीं होता जनाब, कभी कभी पूरा शहर अपनी पहचान थाली में परोस देता है। यस, यही है बिल्कुल हमारे देश की पहचान, जहाँ पर हज़ार चीज़ें उसको जब यूनिक बनाती हैं तो उनमें आता है एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो है उसका खान पान। देश के अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं या राज्य हैं, अलग अलग तरह से खानों से बिल्कुल भरे हुए हैं। जब कोई कहीं घूमने

आता है ना, तो घूमने के साथ साथ वहाँ के अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनमें क्या कुछ खास है, इसकी लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जाने क्या खाएं यहाँ पर और क्या खास है। जितना हमारा यूनिक देश है उतना ही यूनिक यहाँ का खाना भी है। वही कहते हैं ना, जुबान पर जो स्वाद ठहर जाए वही असली पहचान बनता है, और भारत का हर व्यंजन अपने प्रदेश का मेहमान नवाजी भरा पैगाम बनता है। यस, यही होता है। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो कौन भूल सकता है पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी। यस, सर्दियों का मौसम हो और बिल्कुल मक्खन से सजी हुई रोटी हो और साग हो तो ऑब्वियसली किसको नहीं भाता। सेम एज जब हम बात करते हैं पंजाब की खुशबू की थाली में जब वो उतर जाती है ना, तो सीरियसली हर किसी का मन डोल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता है स्पेशली ये सारी डिशेस को ट्राई करने इन प्रदेश में जाया करते हैं। वहाँ के जो पराठे हैं या परौंठे जिनको हम कहते हैं, वो शायद ही पूरे देश में उस तरह के मिले। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना अलग अलग प्रदेशों की, तो हमेशा बहुत सारी खुशबू, खाने की खुशबू ये प्रदेश अपने में समेटे हुए हैं। ऐसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो दाल बाटी चूरमा। यस, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देख करके कि किस तरह से संस्कृति जो है वो अपने आप को खाने में भी समेटे हुए है। हमारे देश में तो ऑब्वियसली जब हम देखें इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि हम उस देश में बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारी थाली में नज़र आती हैं। और जैसा कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि घी में डूबी बाटी, मसालेदार दाल और मीठा मीठा चूरमा, तीनों मिलाकर ऐसा स्वाद रचते हैं जिसे एक बार खाने वाला इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो बस ये है राजस्थान की खासियत। तो आज हम बात करेंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर और क्या क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ वो ये है कि भारत में खोती हुई पारंपरिक डिशेज, शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो आज से 20-25 साल पहले हम सभी के घरों में बना करते थे, अब शायद वो हमारी थालियों से मिस होते जा रहे हैं। तो उसकी भी बात करेंगे, बट फिलहाल अभी जो है वो अगला गाना है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंजॉय करते हैं इस गाने को और उसके बाद बहुत सारी बातें आप सभी के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना खेड़िए माना हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा कम खर्च में ज्यादा निर्माण RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
3: टूटना बिखरना और फिर से सवरना चंद लम्हात में एक उम्र बसर करना यूं तो तमाम रंग हैं इस रुपहली जिंदगी में पर मुझे हर वक्त है तेरे नूर से तरबतर रहना मकतबे इश्क में मसरूफ रहने की कवायद से दो चार रहने वाला दिल जब दर्दमंद नजर आने लगे गजलों के मायने जब खुद को अपने अपने से लगने लगे एक शायर के अशार जब दास्ताने हयात बया करने लगे तो जहन से निकले सुरीले सफरनामे की तस्दीक किया करता है आबशार सुनिए हर रात 9-10 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर
4: कितनी मुद्दत बाद मिले
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत की आवाज थी अभी अभी आप सभी के रेडियो सेट पे, और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को कि भाई प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और हम सभी बात कर रहे हैं भारत के यानी हमारे देश के अलग अलग जायकों की। भाई कहते हैं ना कि खुशबुएं जो हैं वो सिर्फ महकती नहीं है बल्कि याद बन जाती हैं, और जब हम बात करते हैं हमारे देश की बिरयानियों की तो ऑब्वियसली ये वो खुशबू है जो शायद ही किसी के जहन से कभी भी जाए। हैदराबाद की बिरयानी हो या लखनऊ की बिरयानी हो, ऑफकोर्स हमेशा से एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन दोनों में रहा है, और जो बिरयानी के शौकीन है शायद ही वो इन दोनों स्वाद को कभी भी भुला पाए या कभी भी इनसे दूर होना चाहें, है ना। वैसे ये तो हो गई बात बिरयानियों की। वैसे उधर जब हम रुक करते हैं ना पश्चिम की तरफ यानी पश्चिम भारत की रंगत का, तो राजस्थान की हम बात कर ही चुके हैं, दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, यस, और साथ ही में खांडवी, महाराष्ट्र का वड़ा पाव और पूरन पोली। पश्चिम भारत का हर व्यंजन अपने आप में एक पहचान है। यहाँ का खान सादगी और स्वाद का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, और सीरियसली जब इस जगह इस साइड यानी वेस्ट साइड हम जब भी जाते हैं तो इनकी जो खासियत है, इनका जो लुत्फ उठाना है, वो आई डोंट थिंक कोई भी कभी भी मिस करना चाहेगा। आपको पता है स्पेशली राजस्थान जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि हम लोग भैया पानी से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं। यस, जिस तरह से वहाँ के लोग घी का, देसी घी की हम बात करें, इस्तेमाल करते, कहा जाता है शायद ये उन्हीं की कैपेसिटी के उतना उस तरह से वो डाइजेस्ट कर

सकते, और वो खाने में जो खुशबू है उनके घी की, वो हमेशा ही उस खाने को महकाती रहती है। तो जब भी आप जाइए तो जरूर ट्राई करिएगा इन सारी डिशेस को, और बिल्कुल भी इनसे अछूता ना रहिएगा। अच्छा, इधर हमने अगर बात की तो ऑब्वियसली हम बंगाल की भी बात ज़रूर करना चाहेंगे। बंगाल का रसगुल्ला, यस रसगुल्ला, और ये शायद अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। जो मीठे के शौकीन लोग हैं या जिनको मीठा पसंद आता है, वो ऑब्वियसली इसको खाए बिना रह नहीं सकते। और आपको पता है, एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, यूजली बंगालीज हैं या जो बंगाल के लोग हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी सुबह होती है तो नाश्ते में कुछ भी खाने से पहले वहाँ के लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। जितनी यहाँ पर हमारे लखनऊ, हमारे यूपी में नाश्ते में पूरी सब्जी पराठे ये सब चलते, उतना ही वहाँ पर नाश्ते में मिठाइयाँ भी चलती हैं। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट ज़रूर जाइए, सॉरी बंगाल ज़रूर जाइए, और वहाँ पर आप ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिठाइयों का आप स्वाद ज़रूर चख सकेंगे। तो बस देखिए, इसी तरह सैर करते करते और मीठे मीठे व्यंजन को सूंघते, खुशबू उनकी लेते और महसूस करते हुए वक्त बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन डिशेस की भी बात करेंगे आज जो हमारी थालियों से कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। तो बस थोड़ा सा ज़रूर वक्त मैं चुराऊंगी, गाना आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रही हूँ, और उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी ही। तो चलिए इस गाने को इन्जॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, जितनी मीठी मिठाई होती है मुझे लगता है उतनी ही मीठी होती है इन फीमेल सिंगर्स की आवाज़ भी। जैसे कि मोनाली ठाकुर की आवाज़ थी अभी अभी आप सभी के रेडियो स्टेट पे, और इतना प्यारा सा गाना आप उन्हीं की आवाज़ में सुन रहे थे फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हईशा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बता देते हैं कि आज प्रोग्राम शत्रुपा में हम सभी बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से बढ़िया बढ़िया खाने हैं जो मशहूर हैं। और अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सोशल नेटवर्क के या सोशल साइट्स के हमारी ज़िंदगी में आने से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव तो हुई, लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई जो मतलब खान पान के सेंस में, वो ये है कि हम यहाँ अपने घर बैठे या अपनी जगह पर रहते हुए पूरी दुनिया पूरे देश के डिशेस के बारे में पता कर पाते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो बड़ी ईजली हम उन चीज़ों को देख करके पहचान लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं ना। मतलब आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो इतना हम सिर्फ सुनते ही थे, हमें नहीं पता था कि फला डिश कैसी दिखती है, कैसी होती है या उसका फीडबैक क्या होता है। लेकिन जब हम इस तरह से सोशल साइट्स या रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आती हैं। और सीरियसली नज़रों के सामने क्या आती हैं, नाक में वो खुशबू ज़रूर बिखेर देती हैं जो इन खानों में हम स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं ना। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम, यस ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया है। मतलब अगर आप यूपी में भी देखें तो बहुत ज़्यादा लोग साउथ इंडियन डिशेस भी खा रहे हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि साउथ इंडियन डिशेज़ जो हैं वो सिर्फ वही सर्व की जा रही हैं, या सिर्फ पंजाब की खुशबू, या सिर्फ जो इधर राजस्थान का खाना है वो सर्व किया जाता है। तो एक संस्कृति का कहते हैं ना मिंगल होना, मेल जोल जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हम जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ बढ़ चुका है, जो शायद बहुत ही अच्छी और बड़ी ही गर्व की बात भी है। और बिल्कुल ऐसे ही हम बिल्कुल हमारे देश में सबसे ऊपर का पोर्शन कैसे छोड़ सकते हैं, कश्मीर का रोगन जोश और गोवा की फिश करी, एमपी का पोहा जलेबी, छत्तीसगढ़ का चीला हो या झारखंड का धुसका, अगर आपने खाया हो तो सीरियसली आपको बेहद पसंद आएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का हर कोना अपनी थाली में एक नई कहानी परोसता है। यही विविधता भारत को स्वादों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा देश बना ले जाती है ना। यही हम बात अगर देखें तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कहीं मिठास दिल जीत लेती है और कहीं मसाले जो हैं वो यादगार बन जाते हैं। Yes, तो ये तो हो गई बात हमारे देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग खानों की। लेकिन एक जो बात हम हमेशा से आपसे करना चाहते हैं, जो हमारी पारंपरिक डिशेज़ हैं जो खोती जा रही हैं हमारी थाली से, उस पर हमें लगता हम सभी को विचार करना चाहिए। मतलब अगर हम इन पारंपरिक इन ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें जो शायद आप कुछ साल पहले तक अपने घर में भी देखते थे, बनते हुए देखते थे, आपकी दादी, आपकी नानी या बहुत पहले शायद आपकी मम्मी भी वो बनाया करती थी, लेकिन अब उन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं सिर्फ मिस करते हैं। शायद इसमें एक रीज़न ये भी है कि जो वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हम सभी पर हावी हो रहा है तो वेस्टर्न खाना भी उसी तरह से हावी हो जा रहा है, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो खोती चली जा रही हैं। तो उसके लिए कुछ राइम एंड रीज़न्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या डिशेस हैं जो होनी चाहिए पर नहीं है उसको हम बताएंगे आपको अगले कट में। फिलहाल ये अगला सा गाना जो है प्यारा सा, और ये है श्रेया घोषाल की आवाज में, इसको भेजते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर, और एंजॉय करिए इस गाने को। और

आप भी जरा सोच लीजिए, माइंड में सोचते चलिए कि कौन कौन सी ऐसी डिशेस हैं, ऐसे कौन से खाने हैं जो कभी हमारे घर की, हमारी रसोई की जान हुआ करते थे और शान हुआ करते थे, आज वो शायद नहीं है, हम सिर्फ उन्हें मिस कर रहे हैं। मेरे माइंड में तो बहुत सारे हैं, आप भी सोचते रहिए। फिलहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं उन पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
3: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर सदाबहार गीत
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, और धड़कन लखनऊ की पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जहां हम बात करते हैं आज के दिन यानी बुधवार को यानी वेंसडे को जायका या बेकरी की। और आज हम हमारे देश की अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के डिशेस को खूबी बहुत प्यार से चख कर आ चुके हैं। और अब हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी डिशेस हैं या कौन से ऐसे खाने हैं जो आज के समय में हम सभी की थाली से गायब हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जो स्वाद कभी रसोई की शान थे, आज बस किस्सों और यादों की पहचान है। और ऐसे बहुत सारे खाने हैं। अच्छा, मैंने कहा था आप भी सोचिए और आपके जहन में क्या क्या आता है। खैर, ये शायद आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो फटाफट से मेल करके बता भी देते हैं, क्योंकि हमारी मेल्स जो हैं वो यहाँ लगातार खुले रहते हैं। तो उसमें नीलम सिंह ने अभी बस तुरंत ही टेक्स्ट किया है कि बाजरे का राब इनकी दादी हमेशा बनाया करती थी और वो अब घरों में नहीं बनता है। यूपी सिद्धार्थनगर से इन्होंने मेल लिखा है। तो नीलम सिंह जी, आपने वैसे मेल दिया, ये प्रोग्राम मेल का था नहीं, बट स्टिल ये बहुत अच्छी चीज है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई और आपने अपने माइंड एक्सरसाइज करके मुझे वो चीज बता ही दी कि क्या आपके घर से गायब हुआ है। यस, ऐसा ही था भाई। यूपी की अगर हम बात करें तो एक समय था जहाँ पर लगभग हर घर में बाजरे का राब बना करता था। और ये मैंने, खैर सही बताऊँ तो खाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। मेरे फादर इस चीज़ का हमेशा से जिक्र करते थे कि पहले घरों में बनता था। उनकी माँ मतलब मेरी दादी जी हमेशा इस चीज़ को बनाया करती थी, इस डिश को, जो अब के समय में शायद सोचना भी बेहद मुश्किल हो चुका है ना। अच्छा, अगर देखें तो अभी थोड़े टाइम पहले ही विंटर्स में मटर का सीज़न गया है और शायद ही बहुत कम ऐसे घर हों जिनमें निमोना बना हो। और निमोना एक ऐसी डिश थी जो मटर का सीज़न जब एंड होने लगता था तो घरों में ज़रूर बना करती थी। अब बहुत कम ऐसे घर बचे हैं जहां पर ये डिश अभी भी बन रही हो। वहीं कभी कभी गांवों और घरों में बहुत प्यार से बनाई जाती थी ना रागी की रोटी, जौ या सत्तू, कोदो या कुटकी, इन सब मोटे अनाजों की खिचड़ी, है ना। अब वो भी शायद विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को ईजी लगता है भाई दाल चावल मिक्स किया और खिचड़ी बना दी, तो अब इन्हीं पर लोग ज़्यादा स्विच हो चुके हैं ना। मोए के लड्डू हुआ करते थे, फरा खैर पहले तो थोड़ा सा बैकडेटेड हुआ जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से फिर से क्रेज़ आ गया फरा का, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी ऑल्सो कि एटलीस्ट जिस तरह से मार्केट में कुछ कुछ जगहों पर अब फरा देखने को मिल गया है, तो दिल बिल्कुल हरा भरा रहता है कि एटलीस्ट ये डिश जो है वो फिर से वापस आ चुकी है ना। और सेम एज अगर हम बात करें ठुसका, ये भी कहीं ना कहीं अब हम सभी के घर से, हम सभी के किचन से विलुप्त हो चुका है। और आज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, मतलब अभी भी हम बात कर सकते हैं या जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए तो शायद ये सब भूली बिसरी बातें हो जाएंगी। वैसे बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है, शायद आपने सुना हो कि एक घर में हम सभी के खासकर लखनऊ में बना करते थे उल्टे पुल्टे बेसन के, वो भी बिल्कुल विलुप्त से हो चुके हैं। और आज से 10-15 साल पहले ये बहुत ही कॉमन सी डिशेस हुआ करती थी, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी डिशेस है जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती थी और कहीं से नुकसान भी नहीं हमारे शरीर को पहुंचाती थी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपरा से जुड़ी थी, तो हम सभी को हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुई थी। तो अगर कभी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में क्या बनाएं, क्या आज बनना चाहिए, तो कोशिश करिए उन डिशेस पे वापस जाने की जो आपको लगता है पहले, बहुत पहले हम खाते थे, बनाते थे, और अब वो हम नहीं बनाते। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा सीरियसली ये चीज़ करने में, और शायद घर के लोग भी

बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो हमारे खाने हैं ना, वो सिर्फ स्वाद से नहीं जुड़े होते, वो हमारे इमोशंस होते हैं। और बहुत सारे आप भी शायद इस चीज़ को फील करते होंगे, आपके घर में बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील करते होंगे या बात भी करते होंगे, फला टाइम पे मेरी माँ या मेरी दादी वो खाना बनाया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था और अब नहीं बनता। तो कभी हम सभी को मिलकर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, जब लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई ऐसी डिश ज़रूर महीने में एक बार एटलीस्ट ट्राई करें जो आपको लगता है कि अब आपकी रसोई से, अब आपके घर से या अब आपकी यादों से गायब हो रही है ना। तो चलिए, मैं पूरी उम्मीद में हूं कि आप इस चीज को जरूर ट्राई करेंगे। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे घरों की कोई भी ऐसी डिश जो हमेशा से चली आ रही है, वो बिल्कुल भी जाया ना हो, बिल्कुल भी गायब ना हो, बिल्कुल भी विलुप्त ना हो, इसके लिए जरूर कोशिश करिए। और इसी बात के साथ अब प्रोग्राम शत्रुपा से आपकी दोस्त जरीना को दीजिए इजाजत। अगला प्रोग्राम लेकर के जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर छोड़े जा रहे हैं, फ्रॉम द फिल्म चलते चलते। तो एंजॉय करिए इस गाने को और जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, दोपहर के 1:00 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में आतंकवाद रोधी और सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियों और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व आज अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा है। इस मौके पर हजारों भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तड़के से ही गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गए थे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और मां गंगा को पुष्प व दीप अर्पित किया। इस दौरान कई बच्चों का मुंडन संस्कार भी सम्पन्न कराया गया। ब्रजघाट और तिगरी गंगा तीर्थ स्थल पर मेले का आयोजन भी किया गया है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशजदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
1: हमें कुछ वादी साक्ष मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदाम का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर्स, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकती टीम ने कल लखनऊ में जायवकू का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का अहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। UPTET 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अजला के 955 मराकज़ पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा।

0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। बस हम वही हैं, आप भी वही हैं। प्रोग्राम जो है वो बदल चुका है, वो है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, और होठों पे तेरी बात को लेकर के आपकी दोस्त जरीना फिर से हाजिर है। भाई इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल से काम होता है। हम देते हैं आपको एक टॉपिक जिसमें हमारे दिमाग में तो कुछ कुछ चल ही रहा होता है, और जब हम आपको टॉपिक देते हैं तो आपका दिमाग हमारे दिमाग से भी और भी ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके जहन में आते हैं वो हम चाहते हैं कि आप हमें भेजें। किस पर? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। LUCKNOW वाला लखनऊ है, LKO मत टाइप करिएगा। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com, इस पर भेजेंगे आप अपने विचार हमारे टॉपिक पर, और हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे आपसे भी और हमारे बाकी सभी लिसनर से भी। भाई और ये जो म्यूजिक का तड़का है वो तो ऑब्वियसली हमेशा ही लगता रहता है, तड़के पे तड़का, तड़के पे तड़का, बस इसी तरह हमारा ये जो खिचड़ी है वो पका करती है। तो आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। होता क्या है ना, हम सभी अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तब मानते हैं जब हमें लगता है ना कि भैया बस अब अच्छे से ज़िंदगी सेटल होगी, बढ़िया जॉब लग गई है, अच्छा खासा पैसा वैसा आने लगा, घर वर बनवा लिया है, बस अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सेटल्ड है। और लोगों को लगता है वही इंसान सक्सेसफुल हैं जो ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं। लेकिन क्या यही इनफ है, या इतने से ही आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी सज रही है और संवर रही है? इसमें एक फैक्टर जो ऐड होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो होता है हम सभी का कैरेक्टर, यानी हमारा चरित्र। अब यहाँ पर जहाँ इंसान आजकल की भागदौड़ में फंसा हुआ है, पैसा कमा ले, ये कर ले, वो हासिल कर ले, गाड़ी खरीद ले, घर बनवा ले, ये सारी चीज़ों में जो इंसान है वो अपना कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण जो है वो भूलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो चरित्र निर्माण है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए कितना ज़रूरी है? दोस्तों एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि हर एक इंसान पैसा कमा सकता है, अपने भविष्य को सुधार सकता है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकता है, लेकिन ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को सुधारती है। वो आपके कहते ना खानदान, जो घर परिवार तो अलग बात हो जाती है, एक होता ना खानदान का निर्माण करना, वो करती हैं, वो पुश्तों का निर्माण करती हैं जहाँ पर लोग आपकी बातें करते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि फला फला इंसान का जो दादा थे या फला इंसान के जो पिताजी थे वो इस तरह के हुआ करते थे। तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि कैरेक्टर का यानी चरित्र का निर्माण करना कितना जरूरी है, वो चाहे आने वाली जनरेशन के लिए हो, या परिवार को सुधारने के लिए हो, या परिवार को बहुत खूबसूरती के साथ चलाने के लिए हो। तो बस अपना मैसेज हमें टाइप करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। और फिलहाल कुमार सानू की आवाज में ये बढ़िया सा ट्रैक आ गया आप सभी की रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ दोस्तों, धड़कन लखनऊ की पर प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई जिंदगी में चरित्र या कैरेक्टर का निर्माण करना कितना ज़रूरी हो जाता है। मेल्स यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ कुछ मेल्स यहाँ पर शामिल करना मैं शुरू कर देती हूँ। किसका किसका आया है भाई। सुल्तान रजा साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है ये मेल? कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से है, और इन्होंने देखिए टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा है, और ये हमसे कहते हैं कि 8 से 12 बजे वाला प्रोग्राम भी लेकर आइए कभी। ओके, चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 8 से 12 वाला भी प्रोग्राम लेकर आऊँ। अच्छा, रामराज जी क्या लिखते हैं, श्री गणेशाय नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष धी, नीरज मधु और बजरंगी काका, रामचरण प्रजापति। तो इन्होंने लिखा सबसे पहले हमारी तरफ से बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने लिखा है कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में टॉपिक नहीं बताया और गाना सुना दिया। अच्छा ठीक है, तो मैंने गाने के बाद बता दिया। अब आप आराम से अगर अभी भी टाइप करते हो ना, अगर आप टाइप करने में 10 मिनट भी लेंगे ना, उसके बावजूद हम आराम से आपका जो मेल है वो पढ़ पाएंगे, तो बिल्कुल परेशान ना होइए। और दूसरी चीज़, हमारे पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप हाथ से टाइप ना करिए, आप बोल कर टाइप करिए और फटाफट से हमें भेज दीजिए। ओके, सुधाकर जाधव जी क्या लिखते हैं, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात, जरीना मैडम, इस प्रोग्राम के अच्छा टॉपिक ये भी चाहते हैं कि हम इनको पहले ही बता देते, क्योंकि हमारे को ट्रॉफी के बारे में लिखने में अच्छा टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते थे, आपने हर बार ट्रॉफी लिख दिया है। और आज के टॉपिक पे ये लिखना चाहता हूँ कि चरित्र अच्छा हुआ तो दुनिया में उस इंसान की इज्जत की जाती है, इंसान के चरित्र अच्छा हुआ तो

हुगो, उनकी दो बातें अच्छी सुनते हैं, मतलब उनकी बातें जो हैं वो ध्यान से सुनते हैं, शायद ये कहना चाह रहे होंगे। और जिसका चरित्र अच्छा होता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। यस, बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिसका चरित्र ऊपर वाला अच्छा दे देता है वो शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे सक्सेसफुल और सबसे बढ़िया इंसान होता है। क्योंकि एक बार इंसान ना आपका पैसा भूल सकता है, आपकी शोहरत को भूल सकता है, आपने जो नाम कमाया उसको भूल सकता है, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका नाम ताउम्र चलता है। लोग आपको हमेशा आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से याद रखते हैं और भाई मिसालें देने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है वो मेल आया है किसका भाई, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रही हूँ। और इन्होंने लिखा है, मैं रामायण का पाठ जब कहीं भी होता है तो मैं जाता हूँ। और इन्होंने लिखा है, गाने के साथ साथ ढोलक भी बजाता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे अपना प्यार देते हैं और इससे मुझे लगता है कि लोग आगे भी मुझे याद करेंगे। और मेरे रेडियो दोस्त हैं कुलदीप जी उधौली, ये कहाँ से क्या है आगे आपने लिखा नहीं, आकाश जी मरारपुर से, अच्छा रिंकी पिंकी और गुलबशा जी सभी लिसनर इनके दोस्त हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये जब रामायण का पाठ होता है तो वहाँ पर गाते हैं और बजाते भी हैं तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं ना। अच्छा एक चीज़ सच सच बताइएगा ना, ये चीज़ ज़रूर होती होगी पिंकू जी कि जो आपको उससे लोगों का प्यार पैसों के रूप में, आर्थिक रूप में मिलता हो, उससे कहीं ज़्यादा जो प्यार वहाँ पर लोग लुटाते होंगे आप पर, उसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा ना, सच सच होगा, बताइएगा। मतलब अभी हैं हम आपके साथ तो हाँ या ना में टेक ज़रूर करिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं। और जब आपका करेक्टर, आपका चरित्र अच्छा होता है तो इस तरह की मूवमेंट्स, इस तरह की खुशी का ख़जाना आप सबको आसानी से मिल सकता है। मोनो सेठ जी क्या लिखते हैं भाई, जरीना जी नमस्ते, कैसी हैं आप, उम्मीद है अच्छी होंगी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। टॉपिक दोहराने की कृपा करें तो टॉपिक हमारा ये है कि ज़िंदगी में चरित्र यानी करेक्टर का निर्माण क्यों और कितना ज़रूरी है। इस पर मोनू जी आप भी अपनी राय भेजिए। नेक्स्ट है सतीश अनेजा जी लिखते हैं, सलाम जरीना बहन जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखते हैं, हमारी ज़िंदगी सार्थक तब होती है जब हम अपना किरदार साफ सुथरा निखार कर रखते हैं। हमारा चरित्र ही हमारी पहचान बनता है। ज़िंदगी का एक मजबूत वाला उसूल बना लो कि ईमानदारी कायम करते हुए सबसे मोहब्बत से पेश आएंगे। जब हम इस सोच पर चलेंगे सुकून तो मिलेगा ही, समाज में आपकी पहचान बनेगी, आपका चेहरा सामने या जहन में भी आ जाए तो दूसरे के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, तब यकीनन आप बादशाह हैं। बहुत प्यारी बात सतीश जी, और हमेशा ही आप बहुत ही अच्छी, बहुत गहरी बात लिखते हैं और बहुत ही साफ साफ, बहुत प्यारा आप लिख कर देते हैं। सीरियसली जिस तरह से आप फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हाईलाइट भी कर देते हैं, हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और बहुत ही गहरी गहरी बातें भी आप लिखते हैं। हम ज़िंदगी के बादशाह सीरियसली तब हैं जब हमें जहनी सुकून हो, और ये तब होगा जब हम हमारे काम के साथ, हमारे आर्थिक शोहरत के साथ साथ जब हम सामाजिक शोहरत भी हासिल करते हैं ना। सतीश अनेजा जी ने फिर से ही मेल लिखा, अच्छा उसमें ये लिखना भूल गए थे कि कहाँ से इन्होंने मेल भेजा है, तो चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा जी, और ये दोनों साथ में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, हम गाना बजाने वाले थे और उसके बाद एक और मेल आ गया, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आपके लिए गाना पेश करती हूँ। मोहम्मद आसिफ जी लिखते हैं, कहाँ से, हैदराबाद तेलंगाना से ये हमें सुन रहे हैं, और लिखते हैं, जरीना अप्पी, सच्ची सफलता का आधार केवल धन या पद प्राप्त कर लेना नहीं होता है, चरित्र ही आपकी सफलता को स्थायी और सार्थक बनाता है। सही निर्णय लेने की क्षमता, एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति हमेशा आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है और ये मुश्किल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को डिगने नहीं देता। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, बबीता राव व रोशनी, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है। आई थिंक मोहम्मद आरिसिफ जी ने ये मेल लिखा है और ये सबके नाम लिख दिए हैं। तो खैर, बात आपने बहुत सही लिखी है कि मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति ना आसान की जगह हमेशा सही रास्ता को चुनता है, और यही रास्ते जो हैं उसको वो दुनिया में, समाज में अलग बनाते हैं, है ना। तो चलिए, अभी और भी मेल्स आ चुके हैं यहाँ पर। सुधाकर जाधव जी का भी मेल आया हुआ है, उसको हम बाद में लेते हैं। फिलहाल जो अगला गाना है वो आप सभी के रेडियो सेट पर भेजेंगे। और आप भी अगर कुछ हमें लिख कर देना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैसा, नाम, शोहरत, इन सब के साथ साथ कैरेक्टर का निर्माण यानी चरित्र का निर्माण कितना ज़रूरी हो जाता है, लिखकर भेजिए हमें अपने ओपिनियन fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इस गाने।

रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
2: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
4: वो भूली दास्ताने
3: से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप।
4: जी हाँ, आई एम सो श्योर कि आप भी सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में मैंने टॉपिक दिया ना कि चरित्र यानी कैरेक्टर का निर्माण क्यों और कितना जरूरी है, उस पर लगातार आपके बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। तो बस इतने सारे मेल्स हैं तो फटाफट से मेल्स शामिल करना शुरू कर देते हैं। रामेश्वर जी ने लिखा है, होटो पे तेरी बात कार्यक्रम बहुत प्रस्तुत करता, मतलब मुझे सादर प्रणाम इन्होंने लिखा है और हमारी तारीफ लिख दी है। मुंगिसारपुर कानपुर देहात से ये मेल आया है, लेकिन टॉपिक पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो रामेश्वर जी, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि आप प्रॉपर कुछ हमें हमारे टॉपिक पर लिख कर दें। अच्छा, सुधाकर जाधव जी ने फिर से मेल लिखा है, लिखते हैं मेरा मेल शामिल किया आपने, शब्द गलत हुआ, ट्रैफिक वो भी बोल दिया, लेकिन इन्होंने कहाँ से मेल किया ये मैंने नहीं बताया। तो भैया मैं बता देती हूँ, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये मेल आया था और बहुत सारे लोगों के इन्होंने नाम लिख दिए हैं। अब ये नाम मैं क्या करूँ, देखिए अगले प्रोग्राम में ले लेंगे। होता क्या है ना, आप लोग हॉटमेल का कंटेंट भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप यही सेम चीज़ आपके हॉटमेल में भी नज़र आती है। तो इतने सारे लोगों के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त मुश्किल से 20 से 22 23 मिनट होगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर भी हम हॉटमेल वाले कंटेंट लेंगे तो थोड़ा सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो देखिए, मैंने बता दिया आपने कहाँ से भेजा है मेल और इसके आगे अभी और कुछ भी नहीं। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, होटो पे तेरी बात अच्छा लगता है, चरित्र का होना बेहद ज़रूरी है, हम सबका नाम उससे अच्छा होता है। और इसके आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से, इस समय हम आम के बाग में साहिबा अंसारी शाजिया अंसारी के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए, लेकिन कुछ बहुत अभी मुझे असरदार कंटेंट नहीं मिल रहा है आपके मेल्स में, मतलब जो हम पढ़ना चाह रहे थे, जो हम चाह रहे थे आप सोच रहे हैं और जो आपको लगता है वो आप लिखे, तो शायद वो अभी मुझे बहुत अच्छा वाला नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बट अभी तो देखिए आगे बढ़ते हैं। विनीत कुमार जी क्या लिखते हैं, विनीत कुमार लिखते हैं ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया व नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून और शुभ दोपहरिया आपको भी। और अच्छा, जो गाना भी हमने बजाया इनको अच्छा लगा, इन्होंने लिखा है आपने जो विषय लिखा है उस पर मेरा कहना है कि पैसा रुपया तो सभी के पास होता है, लेकिन पैसा सभी जगह नहीं काम करता है। कुछ अच्छे जो दोस्त हैं या उनसे अच्छा व्यवहार जो है, अच्छी अच्छी बातें उनकी और अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ जो रवैया होता है, अच्छी सीख जो होती है, और फिर से इन्होंने रिपीट किया, अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं। हाँ, ये मैटर तो करती हैं, देखिए ये तो सब चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जब हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ये शायद आजकल ना ज़िंदगी से गायब होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हर पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छी पढ़ाई वो कर लें, अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छी जगह करियर सेटल कर लें, लेकिन शायद इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आजकल लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैरेक्टर का निर्माण कितना ज़रूरी है ना। एक छोटे सा, मतलब बहुत छोटा सा आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने कभी किसी से सुना हो या आपने कभी किसी के लिए एक छोटे से प्यारे से मीठे से बोल कुछ बोल दिए हो, वो इंसान के जहन में हमेशा ताउम्र जिंदा रहता है ना, वो हमेशा गूंजा करता है। तो जब ये इतनी छोटी सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती तो कैरेक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखते हैं नेक्स्ट किसका मेल आया। रोशनी रावत का लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत झकास, एकदम लल्लन टॉप लग रहा है इनको। ओके, मेरा नाम रोशनी रावत है, गांव बहमना तहसील सफीपुर उन्नाव से इन्होंने मेल लिखा है और लिख दिया है टॉपिक। टॉपिक पर क्या है, उन्होंने ग्रीन कलर से लिखा है,

चरित्र जीवन का वो अंग है जो मरने के बाद भी नहीं भूलते लोग। अच्छा करो या बुरा, सब कुछ चरित्र से जुड़ा होता है। आज मेरी पहचान मेरा चरित्र ही है, पैसा तो आना जाना है, साथ में आपकी यादें ही रहती हैं। बहुत प्यारी बात लिखी है रोशनी आपने, और ये लाइन जो आपने बीच में लिखी है, अच्छा करो या बुरा, सब कुछ चरित्र से जुड़ा होता है। यस, हम सिर्फ पॉजिटिव वे में क्या, नेगेटिव में भी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी लोगों को याद रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि लोगों के जहन में अच्छी यादें छोड़िए, अच्छी चीज़ें, और जो आप अच्छा करते हैं वो अगर आप लोगों के जहन में छोड़ पाते हैं तो शायद ये ज़िंदगी का बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत प्यारा मेल है रोशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से मेल के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बात के लिए। अंजू ने क्या लिखा है, लिखते हैं, मैम हेलो जरीना मैम, मैं अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहती हूँ फॉर पर्सनल रीजंस, ओके। और इन्होंने टॉपिक पर लिखा है कि मेरा मानना है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट माँ बाप ही बनाते हैं, एंड संगत सही हो तो आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बनता जाता है, एंड कैरेक्टर है तो मन में शांति रहती है, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो आपको गाली दे देते हैं बट आपके स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर की वजह से वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। बहुत सही बात आपने लिखी है। और आगे ये लिखती है, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माँ बाप ही बचपन से बच्चे का बनाते हैं और अच्छी एडुकेशन एंड मोरालिटी की सीख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और बहुत प्यारा मेल है अंजू जी, आपने कहाँ से मेल लिखा है ये आप मुझे बता दीजिएगा, खाली मेल लिख करके वो मैं पढ़ूंगी नहीं, बट बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि पेरेंट्स का, परिवार का और घर में जो सदस्य हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के भी चरित्र के निर्माण में, है ना। हम जो सीखते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते जाते हैं। आप देखें ना, एक बच्चा बिल्कुल उसी तरह बोल रहा होता है घर में जैसा उसके घर वाले बोल रहे होते हैं। वही शब्दों का इस्तेमाल बहुत बार उन्हीं सेंटेंसेस को भी वो इस्तेमाल कर लेता है जो घर में परिवार में बोले जाते हैं, तो चरित्र पर भी बिल्कुल वैसा ही असर होता है। मोनू सेठ जी, आहिल खान जी, आपके भी मैसेजेस यहाँ पर हैं, यहाँ पर मेल्स आपके आए हुए हैं, तो ये मेल्स मैं शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले जो अगला गाना है वो भेज देते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है ना, तो अब गाने की बारी आ ही जाती है और इसके बाद हम और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और अगर आप भी कुछ हमें बताना चाहते हैं, चरित्र कैरेक्टर का निर्माण क्यों और कितना हमारी जिंदगी में जरूरी है, तो इस पर हमें मेल करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊंचा उठना बड़ी बात नहीं होता, लेकिन ऊंचाई पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी मुमकिन है जब जिंदगी में आप अच्छे इंसान बने रहते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं और अपने कैरेक्टर को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। 1:48 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात। और बस कुछ ही मिनट्स में मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी में कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण क्यों और कितना ज़रूरी है। बहुत सारे मेल्स और भी आए हुए हैं और मैंने सही टाइम पे मेल्स को पढ़ना शुरू कर दूंगी। मतलब होता क्या है ना कि जब लास्ट टाइम बचता है और मेल्स पढ़े तो बहुत सारे लोगों के मेल्स रह जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं आराम से वक्त लूँगी, आपके मेल्स पढ़ूंगी और उसके बाद आपके लिए गाना बजाऊँगी। ओके, तो नेक्स्ट जो मेल है भैया मोनू सेठ जी का, लिखते हैं पद और चरित्र के बीच गहरा संबंध है। पद इंसान को केवल अधिकार, जिम्मेदारी और पहचान देता है, लेकिन उस पद की सार्थकता, सम्मान और सफलता उसके चरित्र पर निर्भर करती है। एक अच्छा चरित्र किसी भी ऊंचे पद का असली आभूषण होता है। इतिहास गवाह है कि कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी अपने बुरे चरित्र के कारण इतिहास में निंदनीय बन गए, जैसे रावण। लेकिन दूसरी ओर कबीर जी और गांधी जी जैसे महान लोग बिना किसी औपचारिक राजकीय पद के अपने चरित्र की वजह से दुनिया में पूजनीय है। बहुत बहुत बहुत प्यारी बात लिखी है भैया मोनू सेठ जी आपने, और बिल्कुल सही बात लिखी है। यही होता है ज़िंदगी में भी, मतलब इंसान बहुत ऊंचाई पर जाकर भी गिर सकता है क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। और वहीं बहुत सिंपल सिंपल ज़िंदगी जीकर भी इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा यादगार बन सकता है। और यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, साथ ही मुझे याद आ रही मदर टेरेसा भी, कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थी, बहुत सिंपल से काम किया। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विभूतियाँ हैं जिन्होंने ऐसे ही अपने आप को आज भी यादगार बनाया और भविष्य में भी हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। तो मोनू सेठ जी, बहुत प्यारी बात, बहुत सटीक और बहुत सही बात आपने लिख कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और यहाँ पर और किसी का मेल आया हुआ है, किसका किसका है भाई, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी, अच्छा पिंकू सोनी जी का ये मेल है। और लिखते हैं, जरीना बहन जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा इन्होंने लिखा है मैं गर्ल नहीं बॉय हूँ, मैं समझ गई हूँ इस बात को। एक्चुअली पिंकू सोनी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन

इट हुआ था पहले, बट अभी मैं बात इस मतलब इस बात को समझ चुकी हूँ और आप बोए हैं। और टिकैत नगर बाराबंकी से ये हैं और इन्होंने लिख दिया है कि जब ये रामायण करते हैं तो वहाँ पर ये फ्री सेवा देते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते। बहुत प्यारी बात, और अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, क्योंकि हमने ये शायद अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि जो भी हमें आर्थिक मदद या आर्थिक हमें जो भी सुविधाएं मिलती उससे बेहतर हमको लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, जब हमें हमारे कामों से कोई जानता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेल लिखने के लिए। अहमद नवाब ने क्या लिखा है आइए देखते हैं। हेलो अप्पी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि इंसान का व्यवहार ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी के बाद भी कायम रहता है, दोनों जगह काम आता है, और उसके ना होने में लोग उसके व्यवहार से उसको ज़्यादा याद करते हैं, ना कि दौलत से। दौलत यहीं दुनिया में रह जाती, व्यवहार साथ जाते हैं। मैं अपने दादाजी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ। न जाने कितने कितने स्टूडेंट्स दादाजी से पढ़कर एक अच्छी पोस्ट पर हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि आज भी इनके दादाजी को उनके व्यवहार की वजह से उनके स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं और जब बोलते हैं कि अतहर सर इज़ जीनियस, तो मुझे बहुत प्राउड होता है मैं उनकी पोती हूँ, मैं भी उनके जैसा बनने की कोशिश करती हूँ। एवन नवाब संडीला से। तो एमन जी बहुत प्यारी बात आपने लिखी, और आपके दादाजी आपकी इंस्पिरेशन है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतिहास में या बड़े सक्सेसफुल लोगों में अपने आप अपने जो आइडल हैं उनको ढूंढते हैं, और आपने अपने घर में ढूंढा हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है सोनू परवाना जी का मेल, लिखते हैं टॉपिक बहुत गंभीर है लेकिन कुछ श्रोता सिर्फ नाम गिनवाने में लगे हैं, कृपा टॉपिक से ही जुड़े रहिए, मेल शामिल करें। इन्होंने लिखा है चरित्र एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, धन दौलत सब वापस आ सकता है, इसलिए चरित्र को सुंदर बनाए रखें और चरित्र आपका अपना आप ही बनता जाएगा। बहुत प्यारी बात लिखी सोनू जी, और यस हाँ ये चीज़ है, मतलब देखिए आप सभी हमारे लिसनर्स हैं और सभी को लगभग सभी लोग जानते हैं, तो अगर हम कहना ये भूल जाएं कि आपने कहाँ से मेल किया, तो वो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इशू है। और देखिए अंजू जी ने बिल्कुल ऐसे ही मुझे मेल करके बता दिया है कि वो कहाँ से हमें मेल लिख रही हैं, और फिर से इन्होंने कहा है कि प्लीज़ लोकेशन मत बताइएगा। और अंजू जी मैं जानना चाहती थी, आपने बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। देखिए कहाँ से मेल कर रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हाँ छूट गया तो ठीक है, आपने मेल फिर से कर दिया और मैंने बता दिया, बट आप सभी हम सभी के लिए बहुत नोन इंसान हैं, बहुत रोज़ ही आप हमसे जुड़ते हैं और रोज़ ही हम आपके मेल्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बहुतों का तो हमारे जहन में हमेशा से ही रहता है कि ये मेल फला जगह से ही आया होगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक सही बात बताऊँ तो मुझे कभी कभार लगता है ना, एंकर से ज़्यादा जो आप हमारे श्रोता हैं ना, या जो आप हमें मेल्स करते हैं, आप लोग ज़्यादा फेमस हैं, ट्रस्ट मी, ये है। नेक्स्ट है प्रवीण जी, चरित्र के निर्माण से अपनी आत्मा शुद्ध होती है, हम सभी के दिलों में जगह बना लेते हैं लोग, बस इतना ही इन्होंने लिखा है, और कहाँ से मिलाया ये इन्होंने भी नहीं लिखा है। नरेंद्र जी क्या लिखते हैं, नमस्कार जरीना बहन, आज का टॉपिक बेहद खूबसूरत है, मेरा तो मानना है कि अपने आप में चरित्र एकदम शुद्ध और सच्चा रखना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो हमारे से। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज सुथार जी ने ये मेल लिखा है। और आज का लास्ट मेल किसने लिखा है कि भाई आहिल खान जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जरीना पी उर्फी खान, अच्छा ये आहिल खान के नाम से आईडी, उर्फी खान फ्रॉम बुलंदशहर, और इन्होंने लिखा है लो भाई कि टॉपिक नहीं सुन पाए, तो टॉपिक पर इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। अच्छा कुछ और भी मेल्स आ गए हैं, देखिए वक्त इजाज़त नहीं दे रहा लेकिन जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। जय जी लिखते हैं, जिसका जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं, शुद्धता होती है विचारों में, आदमी होते हैं और पवित्रता होती है। इन्होंने लिखा है कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं, इंसान अपने चरित्र से ही पहचान बनाता है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल। बहुत प्यारा मेल जय जी, और बहुत अच्छी बहुत गहरी बात आपने लिखी है। और इसके अलावा नेक्स्ट है अंशु गुप्ता जी, मैम जी नमस्ते, नारायण गुप्ता परिजात धाम टिकैत नगर से हूँ, वेरी नाइस सॉन्ग्स, बस इतना ही लिखा है इन्होंने, टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने प्यारे प्यारे विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। तो बस आज के प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का आखिरी मेल, अब आप सभी आखिरी मेल तो हो चुका है, आखिरी गाना भेज देती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर, और ये गाना ये है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात सीरियसली, देखिए सबने बहुत सारी बातें कह दी हैं लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, सब कुछ होगा हमारी ज़िंदगी में, अगर चरित्र नहीं होगा तो ये मान के चलिए आप आगे की जनरेशन को कुछ नहीं देकर जा पाएंगे, क्योंकि देखिए हर किसी को हर कुछ बनाना होता है, बच्चे पैसा कमा लेंगे सब कर लेंगे लेकिन चरित्र वो आपसे ही लेकर आगे जाएंगे, तो मेक श्योर आपका कैरेक्टर चरित्र ज़िंदगी में सबसे ऊपर हो। तो चलिए अब मुझे दीजिए

नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम समाचार। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधन परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों

के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ही ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, ऐसे में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, विद्युत आपूर्ति, फसली ऋण और वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पूर्व तैयारी रखने के निर्देश दिए। संत कबीर नगर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए आज कमिश्नर व डीआईजी बस्ती ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को सफल सुव्यवस्थित बनाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस दौरान यातायात सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, आमजन को इस दौरान कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया है। गंगा दशहरा के अवसर पर आज प्रदेश में गंगा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर हजार भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से शुरू हुआ गंगा स्नान समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। गंगा स्नान के समय पीएसी के तैराक जवान नाव से घूम घूम कर जायजा लेते रहे। मेले में भारी संख्या में महिला पुलिस बल भी तैनात रहा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
5: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
4: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
5: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
6: धड़कन लखनऊ की
5: 100.7 FM रेनबो।
7: जी हाँ दोस्तों, 2:05 का वक्त और एक बार फिर से आपकी दोस्त जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। इस बार प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम यानी हॉट मेल। भाई हॉट मेल में क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। FM आकाशवाणी लखनऊ पर आप अपना मेल भेजेंगे हमें, आपको जो भी गाना सुनना है वो लिखकर भेज दीजिए, आप अपना नाम भेजिए और कहाँ से आप मेल लिख रहे हैं ये भी हमें ज़रूर भेज दीजिए। और यहाँ पर बस आई एम रेडी टू प्ले योर सॉन्ग्स, वैसे सिर्फ ये कहने की बातें हैं। और मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि बहुत सारे मेल्स हमारे कहने से पहले ही आ चुके होते हैं, तो आज जो सबसे पहला हमें मेल आया है वो आया है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि जब 2 बजे है, ठीक 2 बजे से ही हम मेल्स यहाँ पर शामिल करेंगे, 2 बजे से पहले जो आपने मेल भेज दिए प्री में वो नहीं ले रहे हैं। मतलब दोबारा अगर आ जाएंगे तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाला नहीं। ठीक 2 बजे जो पहला मेल आया था वो आया था हमें बसंत कुमार जी का, ये हमें इन्होंने सीतापुर से मेल लिख कर दिया है। और जो पिछला हमारा टॉपिक था उस पर भी कुछ बातें इन्होंने लिख दी हैं।

बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी मेल लिखने के लिए, और जिस गाने को ये सुनने की फरमाइश कर रहे हैं वो है ये वाला। तो बस ये गाना आप सभी की रेडियो सेट पर पहुंच गया है, और उसके बाद और भी बहुत सारे हम मेल्स शामिल करेंगे, तो फटाफट से अपने मेल्स भेजिए। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ, फिल्म करता हुए क्या ये गाना था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। और इसी के साथ प्रोग्राम हॉट मेल, बहुत सारे आपके मेल्स यहाँ पर, और जल्दी से मेल्स जो हैं वो शामिल करना शुरू कर देती हूँ। उत्तम कुमार लिखते हैं कहाँ से, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, फिल्म प्रेम रोग ये गलियां ये चौबारा ये सुनना चाहते हैं, पाकुड़ झारखंड से ये मेल है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। देखिए नाम सबके मैंने ले लिए हैं। गाना लेट्स सी अगला किसका बजेगा, क्योंकि 6-7 मेल शामिल करूंगी, उनमें से किसी का एक गाना यहां पर प्ले होगा। जय जी क्या लिखते हैं, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म दिलवाले का सॉन्ग टुकर टुकर ये सुनना चाहते हैं। सैफ अंसारी लिखते हैं, हाय जरीना मैम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मा अंसारी। ओके, ये सैफ अंसारी के नाम से मेल आईडी है, नाम जो अंदर है वो है उस्मा अंसारी, और श्रीनगर लखीमपुर से मेल कर रही हूँ। आप कैसी हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी प्यारी है, थैंक यू सो मच, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी फूफी साजिदा अंसारी गोला गोकरनाथ से सुन रही हैं। अच्छा, मेरी अम्मी एफएम रेनबो को बचपन, अच्छा इसकी फ़ैन है, एफएम रेनबो की बचपन से ही फ़ैन है, और कभी वो फ़ोन कॉल या मैसेज ना कर पाई हैं, आज उनको सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, कसूर मूवी का ये गाना सुनना चाहते हैं, और लिखती हैं लव यू मैम जी, लव यू टू। ओके, देखिए मैं बिल्कुल ये बात अभी ऐसे नहीं कह पाऊँगी ना कि कौन सा गाना प्ले होगा, क्योंकि ये इतने सारे अभी मेल शामिल करूँगी और उनमें से कोई ना कोई गाना ज़रूर प्ले होगा, तो ये गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ देखते हैं आगे आगे पीछे कहीं ना कहीं इस गाने को हम ज़रूर प्ले कर देंगे। वरना आप अपनी मम्मी को एक बात बोल सकती हैं कि जो गाना अगला बजने वाला है ना, वो बोलिएगा कि ये आप ही के लिए बजाया है ना। नेक्स्ट है सोनू परवाना जी, लिखते हैं प्रसारक जी नमस्ते, एक फिल्म लावारिश से काहे पैसे पे ये गाना सुनना चाहते हैं, और उसके साथ और भी बहुत सारी लिस्ट इन्होंने दे दी है। खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से ये मेल आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जी क्या लिखते हैं, अच्छा जय जी का हम मेल पहले भी शामिल कर चुके हैं, प्लीज़ जय जी बार बार नहीं, रीसेंट रीसेंट आप करते रहते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मेल्स होंगे वो छूट जाएंगे। मैंने आपका मेल शामिल कर लिया है, और देखिए गाना किसका बजता है, और जितने मेल शामिल हो रहे हैं बस आप समझिए कि जो अगला गाना बजेगा वो आप सभी के लिए है ना। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से हॉट मेल प्रस्तुत करने वाली बहन जी को शुभ दोपहरिया, नमस्कार, मैं आपकी बोली, आपका अंदाज सुपरहिट लगता है मैम, इतनी मीठी बोली आपकी अच्छी लगती है, और ओके इन्होंने बहुत सारी तारीफें लिख दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। और लिखते हैं गाना परदेश मेघा रे मेघा मत परदेश जा रहे, ये गाना सुनना चाहते हैं। अच्छा मेघा रे मेघा से मुझे याद है, बाहर मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताइए आपके एरिया में कैसा है, क्योंकि लगातार वार्निंग आ रही है कि अगले कुछ घंटों में जमकर बारिश होने वाली है गरज चमक के साथ, तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सुबह भी अर्ली मॉर्निंग भी ऐसे प्रेडिक्शन आए थे, लेकिन कुछ ऐसा बारिश वारिश हुई नहीं, तो आप भी मुझे खबर देते रहिए कि आपके एरिया में कैसा माहौल, मतलब वहाँ का मौसम कैसा चल रहा है। और जय जी ने देखिए फिर से मेल कर दिया है, तो अभी फ़िलहाल ये मेल शामिल नहीं होगा। मल्होत्रा टीडी, यस, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, और गानों की फरमाइश इन्होंने भी की है। साथ ही में हम शामिल कर लेते हैं सुनील खेरा, मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, राजीव जैन, गोटना जैन, और गाने की फरमाइश इन्होंने लिखी हंगामा हो गया। ओके, शाहनूर अंसारी क्या लिखते हैं, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, और लिखते हैं धन्यवाद, ग्रामा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन।

शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, और लास्ट में इन्होंने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया। और गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी क्या लिखते हैं, कृपया इन फिल्मों में से कोई भी एक सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। और प्रेम रोग, पत्थर के फूल, ये सब लिखा। अच्छा, प्रेम रोग का भी आप सुनना चाहते हो? प्रेम रोग का किसी और ने भी अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक रिक्वेस्ट किया था, तो बस एक काम करते हैं, ये गाना जो है वो आप सभी के रेडियो सेट पर भेजते हैं, तो इस गाने को एंजॉय करिए और इसके बाद देखते हैं अगला नंबर किसका आने वाला है। तो फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर, बहुत ही प्यारा सा गाना है और जितनी बार आप इस गाने को सुनेंगे ना आपको पसंद आएगा। लता मंगेशकर की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है इस गाने में, तो मिलकर एंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: when you want to speak in English fluently, na, you guys think that this is right? Newspapers ko aur interesting videos dekho.
1: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
2: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
1: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
2: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं,
3: धड़कन लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ दोस्तों, और इस पर प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपके प्यारे प्यारे से मेल्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए मेल शामिल करते हैं, लेट्स सी किसका गाना बजने वाला है। तो अगला जो मेल है वो है अजीत भावसार जी का, प्रिया आरजे होस्ट नमस्कार लिखते हैं, फिल्म कर्ज का ये गाना सुनना चाहते हैं गायक किशोर कुमार की आवाज़ में। और वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, ये दोनों ने मिलकर ये मेल

रखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। और लेट्स सी अजीत जी, आपका जो गाना है वो अभी प्ले होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं किसका गाना प्ले होगा। और जो भी गाना होगा आई एम श्योर बहुत ही प्यारा होगा, क्योंकि आप सभी लोग इतने प्यारे प्यारे गाने रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑब्वियसली कोई भी आपका पसंद का गाना बजा दो, सब अच्छे ही होते हैं। तो आपका देखिए मेल शामिल हो चुका है। और सतीश अनीजा जी क्या लिखते हैं देखते हैं। पुरखलूस सलाम जरीना बहन जी, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं और आकाशवाणी के लिए बेशुमार मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गाना सुनना चाहते हैं, जिंदगी प्यार का गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ में। देखिए आपने भी किशोर कुमार की आवाज़ रिक्वेस्ट की, इससे पहले भी रिक्वेस्ट हुई थी। और चंडीगढ़ सिटी से ये मेल आया है, सतीश अनीजा जी, बिमला अनीजा जी ने लिख कर दिया है, धन्यवाद लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। तो देखते हैं गाना आपका प्ले अभी होता है कि नहीं। हरजिंदर शिंदा जी क्या लिखते हैं आइए देख लेते हैं। रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी सदाबहार गीत में मेल इनका शामिल कर लें, इन्होंने लिखा है। और देखिए मेल तो शामिल हो गया है, गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। और इन्होंने लास्ट में लिखा है, खुश रहो खुशियाँ बांटो, बहुत ही प्यारा सा मेल। नेक्स्ट है मेल राजकुमार दूरी जी का मेल है, गांव फरांसी हिसार से राजकुमार दोड़ी, प्रमोद कुमार दोड़ी, पुष्पेंद्र कुमार, कोई भी गीत इन्होंने लिखा है कि हम प्ले कर दें। तो चलिए अगला गाना समझिए, बस आप ही के लिए है। नेक्स्ट है कार्यक्रम पेशकर्ता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। किसने लिख कर दिया है ये लिखा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लारगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके नेक्स्ट है सिद्धार्थ गोंडाने जी का मेल, कार्यक्रम प्रसारक महोदय को इन्होंने प्यार भरा नमस्कार लिखा है। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरा मण शेंदे, ये सारे नाम थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से ये मेल आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है तनुजा देवांगन जी का मेल, सप्रेम नमस्कार लिखते हैं, पता है पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। और किसी भी गीत में इन्होंने लिखा है कि मेल शामिल कर ले। इसी के साथ देख लेते हैं, अनिल वर्मा जी ने लिखा है प्यार भरा नमस्कार, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, ये सब ने मिलकर मेल लिखा है। उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं, चाह है तुमको। ओके नेक्स्ट है जय जी का भी मेल, इसको भी शामिल कर लेते हैं। बहुत देर से जय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होली नगर चौथ होली चौक उत्तर नगर से है और ये टुकुर टुकुर गाना सुनना चाहते हैं। ये मेल पहले भी शामिल हो चुका है। तो चलिए देखिए, इतने सारे मेल्स मैंने पढ़ ही लिए हैं और आप ही की रिक्वेस्ट में किसी ने ये गाना रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए ये गाना आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर। यस, जिंदगी प्यार का गीत है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं ना। एक वक्त हुआ करता था ये गाना जो अभी आपने सुना है वो बड़ा ही ट्रेंडिंग सॉन्ग था, फिल्म भी बहुत ट्रेंडिंग थी, और अभी भी आप जितनी बार भी इन गानों को, इन फिल्मों को देखते हैं ना, उतनी बार आपको पसंद आती हैं और आप कहीं ना कहीं दिल से इन फिल्मों को देखते हैं ना। और आपको बता देते हैं, आप में से ही किसी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, जितने मेल्स मैंने पहले पढ़े थे उनमें से ही ये गाना रिक्वेस्टेड था। अब आगे के मेल्स मैं फटाफट से शामिल कर लेती हूँ, तो देखते हैं अगला मेल किसका है। भैया मेरी क्यों कहाँ गायब हो गए। ओके, तो ये मिल गया, मैंने लास्ट मेल पढ़ा था सतीश जी का, तो अब नेक्स्ट जो मेल आया हुआ है वो है नितेश देवांगन जी का। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है और लिखते हैं किसी भी गीत में इनका मेल शामिल कर लिया जाए। तो देखिए, मेल तो आपका शामिल हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से मेल के लिए। नेक्स्ट है अकरम हुसैन प्रिंस जी, सलाम नमस्ते लिखते हैं, प्लीज़ अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से ये मेल आया है। अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलीर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, तो देखिए सबके नाम भी ले लिए मैंने। कमलकांत गुप्ता जी क्या लिखते हैं, किसी भी गीत में मेल शामिल कर लीजिए। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। ओके, नेक्स्ट मेल शामिल कर रहे थे, कमलकांत गुप्ता जी का फिर से भी आ चुका है, अकरम हुसैन प्रिंस जी का भी फिर से आया, सतीश अनेजा जी ने भी फिर से मेल लिखा है। नो, ये नहीं शामिल होगा। अब जो शामिल होगा वो है सुधांशु जी का मेल। राधे राधे, सुधांशु जी ने मेल लिखा है, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना सुनवा दीजिए। और गाना कौन सा है? ओके ओके ओके ओके ओके, बहुत प्यारा सा गाना है, चलिए मैं देखती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि अगला जो गाना है वो आपका बज जाए। अकरम हुसैन प्रिंस जी ने फिर से मेल लिखा है, नो नो नो, बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। और ये 67 मोहाली से भी फिर से आ गया है मेल, नो फिर से नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट जो है वो है दिग्दर्शन गौर जी का मेल, मेरठ कैंट से आया है। कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, सबके नाम थे। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, कृपया इन फिल्मों में से कोई एक गाना इनको सुनवा दे। बहुत सारी इन्होंने लिस्ट दे दी है और बहुत ही प्यारी प्यारी सी फिल्मों की लिस्ट है। वीर ज़ारा आपने लिखा है, वीर ज़ारा का भी मैंने थोड़ी देर पहले बजाया था गाना, जानम देख लो। ओके, और क्या है, ठीक है मैं देखती हूँ इनमें से कोई गाना ज़रूर अभी प्ले कर दूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी फिल्में आपने चुन कर हमें दी हैं। ओके, नेक्स्ट है रामेश्वर जी का मेल, लिखते हैं हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन जरीना को सप्रेम नमस्कार, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम हॉटमेल प्रतिदिन सुनता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है, अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद, आज हमें फिल्म सच्चा झूठा का गीत सुना दें। और ठीक है, ग्राम व पोस्ट मुंगेसारपुर कानपुर देहात से ये मेल है, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार। और लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जरीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें मेल किया। ओके, कुछ

फिर से रिपीट हो रहे हैं तो चलिए मैं इनको स्किप मारती हूँ, नेक्स्ट लेती हूँ। किसका है ये मेल? नमस्कार जरीना जी, आपका अभिनंदन। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, आपकी प्रस्तुति लाजवाब इन्होंने लिखा है और गाना बहुत ही प्यारा सा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। बहुत ही सच में ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाना कौन सा है, लेट्स सी, अभी अगर ये बच जाएगा ना तो बस ओके। नेक्स्ट है किसका मेल? बिट्टू गगनेजा जी। और बिट्टू गगनेजा जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार जी, फिल्म जीने की राह से ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा, इन सब ने मिलकर ये मेल लिखा है। और जो गाना अभी अभी मैंने आपको बोला ना था कि बहुत ही प्यारा सा गाना है ये, है ना, वो गाना था फिल्म साजन का। एंड मैं आपको बता दूं, ये फिल्म साजन का ही गाना जो है वो अगला आपके रेडियो सेट पर आने वाला है। लेकिन कुछ मेल्स अभी मैं और भी शामिल करूँगी। सुधांशु एस लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु। अच्छा, ये मेल मैंने शामिल कर लिया है तो दोबारा नहीं लेते हैं। सतीश अनेजा जी का भी फिर से आ गया है और किसका मेल नहीं शामिल हुआ। आलोक कुमार खरे जी लिखते हैं, अनिल कुमार खरे, संजय खरे, अरुण खरे, मंसूर नागर, शहाबाद पिहानी हरदोई से। और गीत की फरमाइश है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ओहो हो, साजन फिल्म का इन्होंने भी गाना रिक्वेस्ट कर लिया। अच्छा, साजन ही फिल्म का किसी ने रिक्वेस्ट किया था, देखा है पहली बार भी। अब ये दोनों गानों में लड़ाई हो चुकी है, चलिए देखते हैं साजन फिल्म का कौन सा गाना अभी बचेगा। और डेडिकेट इन्होंने किया है सभी सुनने वालों को। ओके, नेक्स्ट है किसका मेल? डियर एंकर, आपको आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि 3-4 लिसनर्स एक दूसरे का और उनके, हाँ ये आपने पिछली बार भी मुझे लिखकर दिया था, कैथल हरियाणा से ये मेल आ रहा है और इस पर मैंने आगे बात भी आपकी पहुंचाई थी कि इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि कौन ऐसा कर रहा है कि नाम बिगाड़ कर लिख करके मेल किए जा रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम भी उसमें मेंशन कर दिया है, तो इस पर ज़रूर देखिए कार्रवाई होगी। अभी मैंने सैटरडे को ही ये बात की थी और आज वेंसडे, आई होप कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया गया होगा। नेक्स्ट भी मेल शामिल कर लेती हूँ फिलहाल के लिए। सुधाकर यादव जी लिखते हैं, प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, प्रणाली सानवी और कल्पना और समस्त राजे यादव देशमुख वायाल परिवार, और फिल्म प्यासा सावन का ये गाना सुनना चाहते हैं। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, इतने सारे मैंने मेल्स पढ़ लिए हैं और उनमें से जैसे कि मैंने कहा था कोई एक गाना ही बजेगा, तो ये वाला जो गाना है उसको भेजती हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। और ये देखिए, देखा है पहली बार जो है ना वो जीत गया है, तो बहुत ही प्यारा गाना है। आइए मिलकर इंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और आप भी अगर कोई अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो हमें मेल लिखिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ दोस्तों, यूथ वेव के लिए शाम 4 बजे तक का इंतजार करिए। फिलहाल आपको बता दें कि प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपके प्यारे प्यारे से हॉट हॉट से मेल हमारे पास हैं। वकील अहमद जी क्या लिखते हैं ये देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, हॉट मेल अच्छा लगता है इनको, गाने के बोल इन्होंने लिख दिया है और ये गाना सुनना चाहते हैं। अहमद मंसूरी कटका हथूरी, जिला सीतापुर से रिंकी पिंकी और सभी का। ओके, थैंक यू।

जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक की आवाज आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा है क्योंकि कुछ नाम हैं जो रह गए हैं, तो फटाफट से वो नाम ले लेती हूँ क्योंकि जो स्टूडियो की क्लॉक है वो इशारा कर रही है कि आगे शायद हम और जो गाने हैं आपके वो नहीं बजा पाएंगे। तो किसने किसने हमें मेल्स लिखे हैं जिनके शामिल नहीं हो पाए हैं, गगनदीप थांडी जी आपका भी मेल शामिल नहीं हुआ था, उसके अलावा दारा सिंह जी का भी मेल हम शामिल नहीं कर पाए थे, आई एम सो सॉरी। अब्दुल गफ्फार खान जी का भी मेल आई थिंक मैंने शामिल नहीं किया था। उदय भानपाल जी, आई एम सो सॉरी, आपका भी मेल शामिल नहीं हुआ था। और उसके अलावा और कोई है, और कोई है, और कोई है, लेट्स सी। मसरूर हसन जी, बहुत प्यार से उन्होंने आदाब लिख कर दिया है, आदाब आपको भी, हम मेल शामिल नहीं कर पाए। अजमत अली जी का भी हम नहीं शामिल कर पाए थे। दिलीप कुमार जी, आई एम सो सॉरी। और इसके अलावा सोम दत्त जी, ज़िला पटियाला से इन्होंने मेल लिखा है। और इसके अलावा नरेश जी का भी हमने मेल शामिल नहीं किया। सो जितनों के मेल आज शामिल नहीं हो पाए, अनिल मोहन जी, इन्होंने लिखा था एनी सॉन्ग, मतलब कोई भी सॉन्ग हम प्ले कर दें, तो मेल नहीं शामिल हो पाया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। अगली बार पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के मेल शामिल हो जाएं, और कुछ के गाने हमेशा से ही बजते हैं तो वो गाने ज़रूर बचें। तो चलिए, ये जो गाना बज रहा था बस यही बनता है हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक। इसी के साथ अब ज़रीना को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम हॉट मेल से। अगला प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर के आपकी प्यारी सी दुनिया में जल्दी से वापस आती हूँ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने एक क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि ये परियोजना आर के आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी। इसके बीच में शिवाजी स्टेडियम पर स्टेशन भी शामिल होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियों तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों, शोध एवं नवाचारों का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश के होटलों और कोचिंग सेंटर में निरीक्षण जारी है। इस क्रम में आज गौतम बुद्ध नगर सिटी में मजिस्ट्रेट मुख्य अग्निशमन

उपवन अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक और पुलिस विभाग की टीम द्वारा 20 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण अभिलेख और फायर फाइटिंग उपकरणों की जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि 6 कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था सही नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं 2 कोचिंग सेंटर में आवश्यक पंजीकरण और भवन के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए, जिसके कारण इन्हें सील कर दिया गया है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व आज अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर हजारों भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और मां गंगा को पुष्प व दीप अर्पित किया। स्नान में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गंगा के गहरे क्षेत्र में खतरे के निशान लगाकर बैरिकेडिंग की गई और पुलिसकर्मी व पीएसी की टीम ने नावों में बैठकर श्रद्धालुओं पर कड़ी निगरानी की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर देते हैं 100.7 FM रेनबो पर, जो कि है धड़कन लखनऊ की। भाई 3:04 का वक्त, और ये जो वक्त है वो चीख चीख कर कहता है कि भाई प्रोग्राम सतरंगी दुनिया की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे जहन में होती हैं। और आज हम एक ऐसे चीज़ पर बात करने वाले हैं जो ऑब्वियसली हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मतलब होता क्या है ना, हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत सारे सपने ख्वाब बुन रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमें करनी पड़ जाती है, लेकिन ऐसे में क्या हम कॉन्शियस हैं, क्या हम सतर्क हैं इन चीज़ों को करते हुए, क्या हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पर आज हम बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगले जो मतलब 3 से लेकर 3:30 तक ये प्रोग्राम चलेगा, और उसके बाद आधे घंटे का हमारा स्पॉन्सर्ड भी है, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ आधे ही घंटा बचता है बातचीत करने के लिए। तो कुछ ऐसी ही बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। बट फिलहाल शुरुआत कर देते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गाने के साथ। तो आइए इंजॉय करते हैं इस गाने को, और सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

जी हाँ, जिंदगी से सवाल पूछना बहुत आसान होता, जैसे कि इस गाने में कहा गया ना, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। खैर, जिंदगी कुछ नहीं बताती, इन सवालों के जवाब हम सभी को खुद ही ढूंढने पड़ते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कैसे ढूंढें। वैसे एक चीज कहते हैं ना कि सावधानी में ही सुरक्षा होती है और भविष्य की मुस्कान इसी सुरक्षा में शामिल होती है और इसी सुरक्षा में होती है। अब इस मुस्कान को हम कैसे बचाएंगे? सावधानी से, ऑब्वियसली कॉन्शियस होकर के, या अपने आप को सतर्क करके। भाई हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो हमारे सामने हो जाती, देखते देखते इतने बड़े हादसे हमारे आसपास हो जाते हैं और बहुत सारी बातें उसके बाद निकल कर आती हैं, शासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, इस वजह से ऐसा हुआ या उस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर उस इंसान की भी बनती है जो जिस जगह पर मौजूद है, एटलीस्ट हम कॉन्शियस होकर उन चीज़ों को देखें, हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं है, है ना। और उससे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पर माता पिता की। जब माता पिता अपने बच्चों का भविष्य डिसाइड करते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बहुत हद तक उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जहाँ भी आप अपने बच्चों को भेजिए, कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को जांच परख लें कि माहौल सुरक्षित हो, जिस जगह बच्चे जा रहे हैं वो जगह सुरक्षित हो। और इसलिए जब आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग या किसी भी जगह बच्चों को अगर भेज रहे हैं तो उस जगह की व्यवस्था को ज़रूर परख लीजिए, ताकि कोई भी हादसा हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो जहां पर भविष्य में शायद हम सभी को पछताना पड़ जाए। और जो हम बात कह रहे हैं उस पर बात सुबह आज हो चुकी है जीएमएल में, लेकिन हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि हर बार हम चीज़ों में अगर कमियां निकालते रहें या हम अपनी गलतियों को भी दूसरों पर थोपते रहते तो शायद चीज़ें थोड़ा सा सही साउंड नहीं करती। तो बेटर यही होता है कि जो इंसान जिस जगह पर है, जो माता पिता अपने बच्चों को कहीं पर भी भेज रहे, वो भी ध्यान दें। और प्रशासन ऑब्वियसली लगा रहता है, बहुत सारी निगरानी रहती है, लेकिन हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझ पाना, क्या कुछ होने वाला है इस चीज़ को समझ पाना,

शायद किसी के भी हाथ में नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जितना हो सके हम सभी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, खासकर पेरेंट्स अगर बच्चे छोटे हैं उनको कहीं भी भेज रहे हैं तो उस जगह की सुरक्षा को ज़रूर सुनिश्चित करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद भविष्य में होने वाली बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारे हादसों को टाला जा सकता है ना, क्योंकि ज़िंदगी भाई एक ही बार हम सभी को मिलती है और उसको सजाना, संवारना और संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए ऐसा ही कुछ ये गाना भी है जो हम सभी को सिखाता है कि ज़िंदगी को प्यार करिए और उसके बीच आने वाली हर वो चीज़ जो आपको लगता है ज़िंदगी में परेशानियां बन जाएंगी उसको हमेशा नकारते चलिए, उसको हमेशा अवॉइड करते चलिए, ताकि एक खूबसूरत, बेहतरीन और प्रश्नों से भरी हुई ज़िंदगी हमारी ना हो, है ना।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढल

0: होती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है,
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

वहीं किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि परवाज देनी हो तो पैरों का ख्याल भी रखिए, सिर्फ उड़ान ही नहीं आसमान का ख्याल भी रखिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं या हमारे आसपास के बच्चे कुछ भी करने बाहर निकलते हैं, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, वो सिर्फ पढ़ने नहीं या अपना करियर बनाने ही बाहर नहीं निकलते, बल्कि अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपने विश्वास को भी ज़िंदा रखते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो यहाँ पर आई वुड अगेन से कि जिम्मेदारी सबकी बन जाती है, मतलब एकदम संकल्प लेने वाली बात होती है कि जब बच्चों के भविष्य की बात होगी तो उनकी सुरक्षा को कभी भी नज़रअंदाज ना करिए। शासन प्रशासन अपना काम हमेशा करता रहता है, अगर थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की चूक होती है तो वहाँ पर जो मौजूद हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाने भेज रहे हैं, जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने आसपास का ज़रूर ख्याल रखें कि क्या वो जगह, क्या वो सिचुएशन सेफ है या नहीं है, तभी सुरक्षित और सुनहरा भविष्य होगा। क्योंकि बच्चे जो हैं या कोई भी युवा, वो सिर्फ अपने परिवार का भविष्य नहीं होता है, देश का भी भविष्य होता है। तो भाई इसी बात के साथ अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, और इसी उम्मीद के साथ भी कि हमेशा कॉन्शियस रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, अपने लिए तो रहिए ही, साथ ही जो आपके घर के बच्चे हैं, आपके अपने हैं, उनके लिए भी हमेशा कॉन्शियस रहिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ, और आज के इस प्रोग्राम का यानी सतरंगी दुनिया का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और इस गाने के बाद आएगा आपके रेडियो सेट पर हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और उसके बाद बस शुरुआत हो जाएगी अगले प्रोग्राम्स की 4 बजे से। तो बस आप कहीं मत जाइएगा, अपनी सीट बेल्ट रेडियो के साथ बांधकर बिल्कुल रखिएगा।

0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: चलिया चलिया चलिया रूह चुराने मैं हूँ ऐसी चलिया।
2: करियर पर है ध्यान,
3: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
3: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
3: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
3: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
2: ओनली ऑन यूथ वेव।
3: यूथ की बात यूथ के साथ
2: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर
3: धड़कन लखनऊ की।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय

कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है, तो आइए जानते हैं।

कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्ब सर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्ब सर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात? जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा कर

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी

0: सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
4: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार

0: शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
3: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
3: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
4: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
3: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस

0: स्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश के होटलों और कोचिंग सेंटर में निरीक्षण जारी है। इसी क्रम में बरेली अमरोहा में आज निरीक्षण किया गया। वहीं गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्नि मिशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षण और पुलिस विभाग की टीम द्वारा 20 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण अभिलेख और फायर फाइटिंग उपकरणों की जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि 2 कोचिंग सेंटर आवश्यक पंजीकरण और भवन के अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पा गए, जिसके कारण इन्हें सील कर दिया गया है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। संत कबीर नगर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए आज कमिश्नर व डीआईजी बस्ती ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को सफल सुव्यवस्थित बनाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस दौरान यातायात सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाएं। आजमन को इस दौरान कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा प्रदेश की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित एवं आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित एडिट ए हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 5 स्मारकों कुसुमवन, सरोवर मथुरा, रासखान की समाधि मथुरा, पोतराकुंड मथुरा, लक्ष्मी मंदिर झांसी और हुलासखेड़ा पुरास्थल लखनऊ के लिए स्मारक मित्रों का चयन किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अगले चरण में 26 अन्य संरक्षित स्मारकों के लिए स्मारक मित्रों को चयन के लिए कार्यवाही की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तरातल के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 जून वेंसडे, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 100.7 MHz पर। जी हाँ, 100.7 FM पे आज आप बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ, और टाइम हो रहा है 4:04, शुरू हो गया है आपका फेवरेट प्रोग्राम यूथ वेव। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपसे साझा करूंगी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे हर दिन हम लोग कोई ना कोई सेगमेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, हर दिन कोई ना कोई टॉपिक जो निर्धारित होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपकी इन्फॉर्मेशन को, मतलब आपको जानने के लिए। ऐसा इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम है यूथ वे, और उसके साथ साथ हम आपको सुनाते हैं कुछ बेहतरीन से सॉन्ग्स। तो तैयार हो जाइए इन्फोटेनमेंट के इस खूबसूरत सफर के लिए। शुरू करते हैं एक एनर्जेटिक ट्रैक के साथ फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुनते हैं 100.7 FM रेनबोज घंटे श्वेता के साथ।

हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम ऑन योर फेवरेट चैनल 107 FM मेगाहर्ट्ज़। सो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक जो है अर्थ साइंसेस पर। आप जानते ही होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तरह तरह के कुछ टॉपिक्स पे हम आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन और कुछ रोचक जानकारियाँ साझा करते हैं यूथ वेव प्रोग्राम में। तो आज का टॉपिक है अर्थ साइंसेस, तो क्यों ना मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताऊं और साथ ही साथ आपको अवेयर करूं कि भाई ये होता क्या है। कुछ लोग तो जानते होंगे आई एम श्योर, बट देर आर मैनी मोर हु डोंट नो। ओके, सो मैं हूँ ना आपकी दोस्त, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। और

और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. और आप बने रहिए, सुनते रहिए ये प्रोग्राम. तैयारी कर लीजिए, थोड़ा चाय वाय लेके बैठ जाइए, क्योंकि भाई प्रोग्राम ही इतना अच्छा है और आपके साथ मैं हूँ ना. ओके, तो चलिए फ्रॉम द मूवी मैं हूँ ना सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना ऑन योर रेडियो सेट्स ओनली फॉर यू ऑल.

0: नहीं तो आजकल तो भाई बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं। जैसा कि अभी आपने दो गाने सुने, मैंने खास बजाए थे थीम हवा पे। देखिए, अब क्योंकि बात ही हो रही है अर्थ साइंसेज में, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, और थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। बट मैं आपको और कुछ जानकारी इससे ज़्यादा देने वाली हूँ जो बेहद ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर आपने बचपन से ये तो क्यूरियोसिटी रखी होगी और साथ में पढ़ा भी होगा कि भाई जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो कितनी पुरानी है, क्या स्टोरी है। इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू नो अबाउट योर प्लैनेट, राइट? और आपने ये भी कभी ना कभी सोचा या पढ़ा होगा कि ये माउंटेन्स बनते कैसे हैं, और भला अर्थक्वेक्स आते हैं तो क्यों आते हैं, और फिलहाल ये जो क्लाइमेटिक चेंज चल रहा है इसका असर क्या है, और ये सब क्यों है, और इन सब में टेक्नोलॉजी कैसे हमारी अर्थ को समझने में मदद करती है और साथ ही साथ कैसे हेल्प कर सकती है, जो आजकल जिस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे अर्थ साइंसेज, राइट? और अर्थ साइंसेज, मैं आपको बस एक ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम बात करते रहेंगे। तो अर्थ साइंसेज मतलब क्या होता है? तो भाई ये जुड़ी है उन चीज़ों के रिसर्च से या उनसे जहाँ पे हम बात करते हैं जियोलॉजी, मीटरोलॉजी, ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स पे, राइट? तो इन सब टॉपिक्स पे हम एक एक कर बात करेंगे। और आपने सुना ही होगा, और आप डेली जैसे कि आप वेदर रिपोर्ट्स सुनते हैं, आप न्यूज़ में सुनते हैं, आप पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में अखबारों में, तो बात होती रहेगी। फिलहाल एक अपडेट की, अभी 4:25 से आप सुनेंगे रोज़गार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद यूथ वेव का सिलसिला जारी रहेगा। और आप बनी रहिए हमारे साथ, अपनी दोस्त के साथ श्वेता, क्योंकि आज वो आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाली है जो आपके फिंगर टिप्स पर रहेगी, एंड आप भी बोलोगे आई एम सो स्मार्ट। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड and keep listening to 100.7 FM Dhadkan Lucknow ki.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow Dhadkan Lucknow ki.
2: Purani haveliyon ki deewarein सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल, ये लखनऊ है जनाब।
3: सीनियर फ्लाइट इंजीनियर इंस्पेक्टर रिक्तियां 2 हैं, सीनियर फ्लाइट गनर इंस्पेक्टर रिक्तियां 4, जूनियर फ्लाइट इंजीनियर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 2, जूनियर फ्लाइट गनर सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 8, सहायक एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 8 और सहायक रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्तियां 3, सीटी मेंटेनेंस रिक्ति है 1। कुल 28 रिक्तियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र, पात्रता शर्तों, भर्ती के तरीके और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय की वेबसाइट www.bsf.gov.in। असम विश्वविद्यालय सिलचर, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा मुख्यालय में प्रोफेसर क वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषयों, विभागों, नियम, शर्तों, आयु, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर www.aus.ac.in। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारियां मिलेंगी curec.samarth.ac.in। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं, और ये सभी जानकारियां विस्तार से यदि आप देखना चाहें तो 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सहायक प्रबंधक टेलीकॉम के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्यता प्राप्ति के बाद उम्मीदवार को 5 वर्ष का अनुभव अवश्य हासिल होना चाहिए।

0: चाहिए पात्रता मानदंड आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर अनुभाग में रिक्ति सूचना संख्या 23/2026 को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग मेघालय प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जिन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं उनके नाम हैं एनेस्थीसियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री कार्डियोलॉजी CTVS जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑन्कोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी नेफ्रोलॉजी न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी पीडियाट्रिक्स पैथोलॉजी पेन पैलिएटिव फार्माकोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड सेंटर तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं इस ईमेल पर arstii@neigrihms.gov.in। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट edu.easebuzz.in। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 0364 इसके बाद डायल कीजिए 253-8020 या 253-2915। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो यू टू वेव। आज आप बने हैं श्वेता के साथ और टाइम हो रहा है 4:30। और जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैं आपसे बता रही थी कि अर्थ साइंसेस का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कुछ लोगों ने तो पढ़े होंगे ज़रूर, और बाकी तो हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा बताऊंगी एक कुछ आसान शब्दों में कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम जितने ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं अर्थ साइंसेज में, उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं जियोलॉजी, जिसमें हमें पता चलता है रॉक्स और माउंटेन्स के बारे में, वो कैसे बनी हैं। मीटियोरोलॉजी, जो आप वेदर या क्लाइमेट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या उन पे जो रिसर्च होती हैं, वो ये सब्जेक्ट इंक्लूड करता है। और साथ ही साथ ओशनोग्राफी, तो भाई समुंदरों के तो

में भाई बहुत, मतलब ये खजाना ही है, जितना डुबोगे उतना ही आपको। इनफैक्ट कहते हैं कि अभी तो हम सिर्फ 0.5% ही जानते हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि समुंदर की गहराइयों में क्या क्या छुपा है, यू नो। और इन्वायरमेंटल साइंस, यस ऑफ कोर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सभी लोग बात कर रहे हैं, इतनी अवेयरनेस तो सबको होगी, अखबारों में आते रहते हैं आर्टिकल्स, तो इसमें हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी तरीके हैं जो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे एक बैलेंस बनाएं और कैसे हम अपने प्लैनेट अर्थ को एक सस्टेनेबल लिविंग में ढालें, तो ये सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम अर्थ साइंसेस में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट जहाँ हम रहते हैं, वो तकरीबन 4.5, आई मीन टू से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये कैसे पता चला? ऑफकोर्स ये पता चलता है एक रिसर्च से जिसे हम कार्बन डेट

ये सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम अर्थ साइंसेस में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. और साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट जहाँ हम रहते हैं, वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है. ये कैसे पता चला? ऑफकोर्स ये पता चलता है एक रिसर्च से, जिसे हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं. ये साइंटिस्ट पता लगाते हैं, इस पर रिसर्च चल रही है. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे हम और जानकारियाँ देंगे, बातें करेंगे. पर उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी सपने. एंड आई एम श्योर ये गाना सुन के ना आपका तो मूड सेट हो जाएगा. ओके, स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM. दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर यू ओनली ऑन 100.7 FM.

जी हाँ दोस्तों, तो आज यूथ वेव में बात हो रही है अर्थ साइंसेस पे, और अभी हमने कुछ देर में बात की कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पता कैसे चलता है कि भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं अपने प्लैनेट अर्थ पे, उस पर ट्रैक कौन रखता है और कैसे रखता है? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की है, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे आपको पता है कि हमारे कंट्री का खुद स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं, वो पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान तो बना ही रहा है, और साथ साथ ये जो रिसर्च

करते हैं, ये हमें इनकी फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि भाई कैसे क्लाइमेटिक चेंज हो रही है ओवर द ईयर्स. कैसे पता चलता है? अब ये कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपको पता है सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के सराउंड घूमती हैं वो हमें टाइम टू टाइम बताती हैं अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, या अगर कहीं पर कुछ साइक्लोनिक या डिजास्टर आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट करना होता है उसकी भी जानकारियां हमें इनके थ्रू मिलती हैं. साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में मॉनिटरिंग होती है वो भी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू से पता चलता है, और साथ साथ जीपीएस नेविगेशन. देखिए आप लोग मोबाइल्स में आजकल जीपीएस सभी यूज़ करते हैं वाइल ड्राइविंग वाइल ट्रैवलिंग, राइट? तो आपको ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मेन सोर्स है थ्रू सैटेलाइट्स, राइट? तो इसके पीछे कितने साइंटिस्ट लोगों का कितनी कंट्रीज का मिलके रिसर्च है और साथ में उनका योगदान है जो अपनी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू हमें ये सारी जानकारियाँ बताता है और हमारी लाइफ को काफ़ी इजी बनाता है. साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि अपनी रिसर्च एजेंसी स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में बहुत बड़े बड़े से इनोवेशंस किए हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े मिशंस लॉन्च किए हैं, और ये सब जानकारियां हमें मिलती रहती हैं अखबारों के थ्रू, हम पढ़ते रहते हैं, जैसे कि चंद्रयान आदित्य मिशन. तो भला ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ये सारे मिशंस, जैसे कि हमें पता चल सके कि आफ्टर ऑल हमारे प्लैनेट अर्थ में क्या हो रहा है एंड हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, राइट? तो फिलहाल ये सब बातें होती रहेंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कैसी टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आने वाले फ्यूचर में योगदान है या क्या उसका रोल होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी बात होगी. पर उससे पहले सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत सा गाना. सुनते रहिए 100.7 FM श्वेता के साथ.

हाँ जी दोस्तों, तो बात हो रही थी अर्थ साइंसेस पे और मैं आपको बताने वाली थी कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वो हमें कैसे फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगी और इसका रोल क्या है। जैसे फिलहाल अगर हम प्रेजेंट रोल की बात करें तो हमें एआई जो है वेदर प्रेडिक्शंस बहुत ही बखूबी देता है और साथ ही साथ जो भी डिजास्टर्स या कोई भी साइक्लोनिक और मे बी अर्थक्वेक रिलेटेड कोई भी हलचल अगर हो रही है तो उसके अलर्ट्स आपके फ़ोन पे आने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है। पहले तो न्यूज़ में आता था और यू नो हम लोगों को थ्रू सम मीडिया पता चलता था, अब डायरेक्टली हमारे फ़ोन्स में, हमारे पर्सनल सेल फोन्स में इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड हम अलर्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से एआई ने सैटेलाइट डेटा पे एक टैप करके हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक प्रो बना दिया है, एक जेनरेशन जो धीरे धीरे एडवांस हो रही है। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना, एक साइंस फिक्शन मूवी तो कभी आपने सोचा है वैसे ही लगने लगे हैं चीज़ें जो रियलिटी में, वही साइंस फिक्शन मूवीज़ जैसे बन चुके हैं। और शायद आप में से ही कोई फ्यूचर साइंटिस्ट, इंजीनियर या कोई इनोवेटर हो जो कल की दुनिया को और भी बेहतरीन बना दे। तो आज का मैं एक चैलेंज देती हूँ कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आइडिया आपने कभी सोची हो या आपके जहन में आती हो कि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकें या कैसे हम उसको और बेहतर बना सकें, तो ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा और हमें बताइएगा कुछ अपनी आइडियाज़, कुछ अपनी इनोवेशन, और हम शेयर करेंगे सबसे। तो दोस्तों देखिए, ये प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम आ गया है और हमारी गपशप तो चलती रहेगी क्योंकि अभी फ़िलहाल नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मैं आपके साथ बनी रहूँगी। पर फिलहाल यूथ वेव में जो आज हमने बात की अर्थ साइंसेस पे, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो मुझे लगता है कि शायद इससे आपको काफ़ी मदद होगी, आपको जानने को मिला होगा ऐसे टॉपिक्स जो हम सुनते तो हैं मगर शायद बहुत कुछ जानते नहीं हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, याद रखिए कि द अर्थ इज़ वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन और इसकी जिम्मेदारी भी हम सभी की है। ओके, तो मैं हूँ श्वेता और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव। फिलहाल मैं

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात भी की। लखनऊ के अलीगंज स्थित जिस इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई, लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया है। विभाग ने बिल्डिंग की दीवार पर आज नोटिस चस्पा कर 15 दिन में मालिक से जवाब मांगा है। उचित जवाब न मिलने पर इमारत को गिरा दिया जाएगा। इस संबंध में LDAVC प्रथमेश कुमार ने बताया कि 2016 में ही बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ था, बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था। रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का ताजिकिस्तान के भारत में राजदूत लुकमोन ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। राजदूत ने इन पांडुलिपियों को अधिक लोगों, छात्रों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भविष्य में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी घोषणा की। रजा लाइब्रेरी के निर्देशक पुष्कर ने बताया कि यहां मौजूद कई पांडुलिपियां सीधे ताजिकिस्तान के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में मानसून आने में देरी हो रही है, इसकी वजह से ही मिला जुला मौसम बना हुआ है और प्रदेश की कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं कहीं भीषण गर्मी और लू चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर मानसून आ सकता है, इसके बाद मानसूनी

गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। इटावा में आज रक्षा मंत्रालय के निदेशक अभिषेक चौहान अनुवेशी ने अपनी उड़ चल अपने देश नामक पुस्तक का विमोचन किया। श्री चौहान ने बताया कि यह पुस्तक युवाओं के लिए नैतिक अपील है, इसकी साथ ही साथ पर्यावरण और समाज के प्रति दायित्व को महसूस करें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम FM टॉप 10। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका, जिसे आप सुन रहे हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज पर। अगले कुछ घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। जी हाँ, आज शाम 8 बजे तक श्वेता हाजिर है ओनली ऑन FM रेनबो। फिलहाल तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में स्पॉटलाइट उन ट्रैक्स पर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड रीमिक्स रील्स पर धूम मचा रहे हैं। तो चलिए भाई, इंतजार किस बात का, काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फ्रेश और पावरफुल ट्रैक के साथ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है इस वक्त ये सॉन्ग बहुत ही वायरल हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं ये सॉन्ग। उससे पहले आप भाई अपनी चाय वाय रेडी कर लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि बेहतरीन गाने आज प्ले होने वाले हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड 200.7 FM, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जी हाँ, ये बेहतरीन सा सॉन्ग अभी जो आपने सुना है, जान से गुजरते हैं। दिस वॉज फ्रॉम द मूवी धुरंधर 2, और इतनी खूबसूरत आवाज़ भाई है खान साहब और शाश्वत सचदेवा की। जी फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर, जो हमारे काउंटडाउन नंबर 9 पर है, पर उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बना हुआ है। आप क्या सोच सकते हैं वो गाने कौन से हैं और मैं किस गाने की बात कर रही हूँ? देखिए, जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तब इसकी बीट्स और जो ये स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, इसने यूथ को दीवाना बना दिया था। क्योंकि भाई आवाज़ किसकी थी इसमें? आवाज़ थी बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल जी की। जी हाँ, इन आवाज़ों से सजा ये अगला गाना आज भी उतना ही एनर्जेटिक लगता है और उतना ही हिट है जितना उस वक्त था। सो FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 9 आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों, बॉलीवुड में रिमिक्स कल्चर आज भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनका चार्म ना कभी कम नहीं होता। जैसे कि ये सॉन्ग अभी आपने सुना, तम्मा तम्मा, उन्हीं सॉन्ग्स में से है। तो फिलहाल इस पार्टी मूड को ऑन ही रखते हैं और वक्त आ गया है नेक्स्ट ट्रैक बजाने का। तो सॉन्ग नंबर 8 पे है, काउंटडाउन 8 पे है, ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर मूवी का ये एनर्जेटिक ट्रैक, जो कि आई एम श्योर जिम प्लेलिस्ट एंड पार्टीज दोनों में खूब पॉपुलर है। बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने भी इस ट्रैक को यूथ का फेवरेट बनाया हुआ है। तो एफएम टॉप 10 पर ये सॉन्ग ऑन नंबर 8, ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज हमारे FM टॉप 10 के काउंटडाउन्स में। और अभी तक तो मैंने बजाए हैं कुछ धमाकेदार मजेदार सॉन्ग्स, और इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो कॉलेज फेस्ट फेवल पार्टीज में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट ये उस जगह पे तो परफेक्ट फिट है, क्योंकि ये गाना है फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स, एंड यस ऑफ कोर्स लेट्स नाचो। गाना गाया है बादशाह और बेनी दयाल इनके वोकल्स में। ये सॉन्ग लेट्स नाचो फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स आज भी हमारी आपकी पार्टी प्लेलिस्ट का परमानेंट मेंबर है। तो चलिए सुनते हैं FM टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 7।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
3: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
3: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
4: धड़कन लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपने FM टॉप 10 शो में उन सुपर हिट्स की ओर जो 90s के दौर में ब्लॉकबस्टर्स थे। और इन सॉन्ग्स का मैं बता दूं आपको, इन जादू इतना था कि आज भी इन्हीं गानों का रिमिक्स वर्जन में इन्हें लॉन्च किया जा रहा है। आपने सुना ही होगा आजकल इतने न्यू वेब सीरीज आ रही हैं, न्यू मूवीज आ रही हैं, उनमें ये ट्रैक्स या ये साउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड ट्रैक्स कहीं ना कहीं रिमिक्स करके लॉन्च हो रहे हैं, बिकॉज ये थे ही इतने दमदार ज़बरदस्त। तो जी हाँ, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब प्ले होंगे पावरफुल एवरग्रीन फेवरेट्स। जो अगला सॉन्ग आने वाला है ऑन सॉन्ग नंबर 6, ये है अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज़ में FM टॉप 10। So song number 6 aapke radio sets par enjoy and keep listening to 100.7 FM Shweta ke saath।

फ्रॉम द मूवी फिजा. याद है आपको ये मूवी? तो ये खूबसूरत सा गाना महबूब मेरे फ्रॉम द मूवी फिजा आपके लिए, आपके रेडियो सेट्स पर. स्टे ट्यून्ड.

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना कोई जाए तो ले आए फ्रॉम द मूवी घायल। इतना खूबसूरत सा ट्रैक और अगला गाना भी आपके रेडियो सेट्स पर कुछ ही देर पर जो है।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक बेहतरीन सा गाना फ्रॉम द मूवी फिजा और ये आवाज थी सुनिधि चौहान जी की। जी हाँ, अगले कुछ गाने और भी बेहतरीन होने वाले हैं और आपको आपकी वेंसडे की शाम को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। जो नेक्स्ट ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करूंगी वो है फ्रॉम द मूवी यादें। जी हाँ, ये मूवी थी ऋतिक रोशन की और गाना है जब दिल मिले। आई एम श्योर आपको इस मूवी का बैकड्रॉप भी याद आ गया होगा सुन के, क्योंकि है ही ये मूवी बड़ी खूबसूरत सी थी, आई और दिलों में छा गई थी बड़ी प्यारी सी। सो स्टे ट्यून्ड और लुफ्त लीजिए FM टॉप 10 में। हमारा अगला सॉन्ग कुछ ही देर में आपके लिए ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की। स्टे ट्यून्ड विद श्वेता।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले। जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

बढ़ते हैं अपने सॉन्ग नंबर कौन से सॉन्ग पे. जी हाँ, हमारा सेकेंड लास्ट सॉन्ग, जिसे हम कहेंगे सॉन्ग नंबर टू, क्योंकि इसके बाद आएगा हमारा टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 1. तो फिलहाल तो म्यूजिक लवर्स के लिए ये नेक्स्ट ट्रैक एक इमोशनल जेम से कम नहीं है. ये गाना जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये फिल्म बॉम्बे की म्यूजिक है और अब लिसनर्स के दिलों में खास जगह ये रखता है सॉन्ग और बनाने आ रहा है रेमो फर्नांडिस की अनकन्वेंशनल वॉइस में. ये ट्रैक बन गया है हमारे एफएम टॉप 10 पर सॉन्ग नंबर 2, ओनली ऑन 100.7 एफएम. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.

ハンマー、ハンマー、ハンマー、ハンマー、ハンマー。ジーハー、イエトラック、ハンサビガフェイブリット。चाहे ये पुराना वाला सॉन्ग हो या रिसेंटली एक मूवी में रिमिक्स वर्जन वाला। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है नंबर वन सॉन्ग की, जिसने रिसेंटली ज़बरदस्त कमबैक किया है। जी हाँ, ये गाना इज नन अदर देन द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गुप्त का। यस, गुप्त का सुपरहिट ट्रैक दुनिया हसीनों का मेला, ये आपने रिसेंटली सुना होगा और बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। लगभग 3 दशकों बाद फिर से ट्रेंड कर रहा है और इस सॉन्ग को एक नया अवतार में रिसेंटली जो फीचर किया गया है उसके बाद ये ऑनलाइन वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल सॉन्ग ने तो कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं जो कि लाखों के पार हो चुके हैं व्यूज़। और एक पूरी न्यू जनरेशन को कहें तो इस सॉन्ग, मतलब एक न्यू जनरेशन ने सॉन्ग को डिस्कवर किया है। तो ये गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, हमारे टॉप 10 का नंबर 1 गाना गाया है उदित नारायण जी ने। जी हाँ, तो अब इंतज़ार किस बात का, इस टाइमलेस गाने को और भी पॉपुलर बनाते हैं और अपने टॉप 10 के नंबर 1 पे लाते हैं। सो आपके लिए ये सॉन्ग, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हर ज़माने में कुछ आवाज़ें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जो मास हिट्स बन गए। जी हाँ, और आपके लिए ये गाना सिर्फ और सिर्फ FM टॉप 10 काउंटडाउन में, ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं श्वेता अब इजाजत चाहती हूँ, कुछ ही देर में फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकार निवेशकों को बेहतर आधारभूत ढांचा, सुशासन और सुरक्षित कारोबारी माहौल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बनेगा। लखनऊ में हालिया अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भवन निर्माण से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन 2016 में मालिक ने व्यावसायिक निर्माण शुरू कर दिया। इस पर एलडीए ने नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किए। हालांकि बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया, जिसकी उचित जांच नहीं की गई। मामले की आंतरिक जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना के बाद जालौन जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 संयुक्त जांच टीमों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित कोचिंग संस्थाओं की जांच की और मानकों की अनदेखी करने वाले दर्जन भर से अधिक कोचिंग सेंटर सील किए गए। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि जहां बचाव के पर्याप्त संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली, वहां के संस्थानों को सील किया गया है। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ओबीसी समाज के इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राओं को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई 2026 तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थाओं के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 अगस्त 2026 से प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम के 7 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेलकम बैक, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त होता है शाम का जब आप इंजॉय करते हैं हमारा आपका शो, आपका प्रोग्राम शामी आवत। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी। इस घंटे एक बार फिर से आपके साथ स्वागत करती हूं आप सबका आपके प्रोग्राम शामी आवत में, जहां लखनऊ की दिलचस्प बातें होंगी। और यहाँ पे तो लखनऊ का दिल धड़कता है जी। हाँ जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की, और उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड 200.7 FM विद श्वेता।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: तो दोस्तों अभी इतना खूबसूरत सा ट्रैक बज रहा था और उनमें हवाएं और मौसम की बात सुन के तो भाई मुझे भी अब इंतज़ार है कि कब वो आएंगे बादल, और बादलों की दस्तक कब शुरू होगी और कब ये गर्मी से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, कब हवा में नमी, आसमां में बादल और लखनऊ वालों का कब मानसून सजेगा। क्योंकि हमें भी भाई इंतज़ार होता है ज़बरदस्त बारिश का, जब हमारे लखनऊ बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, स्पेशली कैंट, हज़रतगंज और वो भीगी सड़कें, चाहे मरीन ड्राइव की हवा हो या गोमती रिवर फ्रंट में मौसम का लुत्फ़ उठाना हो, अपने अपने घरों में चाय पीनी हो पकौड़ों के साथ और फैमिली गपशप हो। लेकिन क्या करें, अभी तो फिलहाल गर्मी तो वही है, मौसम का अगर मिजाज देखें, अपडेट देखें तो वही 40-42 डिग्री सेल्सियस इसी यही चल रहा है फिलहाल तो, और देखते हैं हीट वेव की कंडीशंस तो भी लगातार जारी ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहा तो जा रहा है नेक्स्ट वीक तक मॉनसून की दस्तक होगी, भाई हमें तो इंतज़ार है एंड आई एम श्योर आपको भी बेहद इंतज़ार होगा। तो ठीक है, आप बस ये ध्यान रखिए कि जब भी घर से बाहर निकलें पानी साथ रखिए, और दिन में ज़रूरी ना हो तो धूप को अवॉइड करें, बच कर निकलिए। और भाई इस वक्त बच्चों और सीनियर सिटीजन्स का तो खास ध्यान रखिए, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं और घर में इंसान रहते रहते थोड़ा बोर होने लगता है, तो ऑफकोर्स शाम को निकलते हैं, सुबह खेलिए कूदिए निकलिए घूमिए, बट दोपहर में थोड़ा अवॉइड करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। फिलहाल हम भी आपका ख्याल रखते हैं और बढ़ते हैं अगले प्यारे से गाने की ओर, 100.7 FM MHz श्वेता के साथ।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तो दोस्तों इस वक्त 6:24 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शामी आवाज। और फिलहाल मैं आपको ट्रैफिक अपडेट दे देती हूँ। तो इस वक्त क्योंकि ऑफिस आवर्स चल रहे हैं और इस वक्त जाहिर सी बात है कि बहुत ही रश हो जाता है और सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं ऑफिस से, स्पेशली हज़रतगंज, सिकंदरबाग चौराहा, पॉलीटेक्निक, शहीद पथ और गोमती नगर एक्सटेंशन के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी 7:30 तक काफ़ी बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो एक्सपेंशन जो है हमारा चल रहा है और इसके चलते काफ़ी रूट्स पर काम चल रहे हैं और अभी भी ये कन्वीनियंट ऑप्शन है। थोड़ा स्लो मूवमेंट हो सकता है मगर कोई बात नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है अब रूट के ट्रैफिक को अवॉइड करना और ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सो घर से निकलने से पहले आप या ऑफिस से निकलते वक्त आप ज़रा ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं उसको ज़रा चेक कर लीजिए, वो प्लान कर लीजिए कि किधर से निकलना इस वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जिस इलाके में हैं और ख़ासकर जो भी मैंने नाम बोले इन इलाकों में हैं तब तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक। और डेली कम्यूटर्स हैं तो मेट्रो आपके लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। फिलहाल देखिए ट्रैफिक चलता रहता है, सब चलता है, बट दूरियाँ आपको मिटानी होती हैं जब निकलना होता है किसी से मिलने या घर की ओर, तो दूरियां किस बात की। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं सॉन्ग ये दूरियां।

तो दोस्तों अभी जो आपने सॉन्ग सुना ये दूरियां है ना, कितना खूबसूरत सा ट्रैक। इसकी जो बैकड्रॉप में जो रेलवेज का ट्रेन का जो जिक्र है, जब ये सॉन्ग प्ले होता है हमारी इमेजिनेशन में वो पूरा प्ले होने लगता है। एंड आई एम श्योर आपको भी याद होगा इसकी वीडियो में कैसे कितनी खूबसूरती से हमारे इंडियन रेलवेज और जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स के कुछ कुछ बाइट्स दिए गए हैं, लाइक कैलकटा एंड ऑल। सो इतना खूबसूरत सा इन्होंने इसको इंक्लूड करके एज अ एलिमेंट जो यू नो सिनेमेटोग्राफी की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक पुराने दौर का एक जैसे सिलसिला उन्होंने जो दिखाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं आपको रेलवेज अपडेट भी दे दूं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियां मना के वापस आ रहे हैं। तो फिलहाल लखनऊ जंक्शन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक ब्लॉक वर्क के चलते कुछ ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म टर्मिनल के रूट बदलने के समय समय पर बदल रहे हैं, और इसके चलते आपको

ये करना है कि इंक्वायरी आपकी जो भी जिस भी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं आप जरूर चेक कर लीजिए, या फिर NTES जो ऐप है उस पर अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक करके ही निकलिए, तो ये बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी। और साथ ही साथ एक और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जिबिशन के बारे में, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अभी टाइम है और ये एग्जिबिशन जो चल रही है बहुत ही खूबसूरत सी हमारी लखनऊ की तहजीब और यू नो यहाँ की कला को एकदम बरकरार रखते हुए वो एक एग्जिबिट कर रहे हैं, तो शहर में चल रहा है इस वक्त 18th इंटरनेशनल मुहर्रम आर्ट एग्जिबिशन। और ये जो एग्जिबिशन है ये कला प्रेमियों के लिए खास अट्रैक्शन बना हुआ है। तो मैं ये बता दूँ ये 5 दिन से चल रहा है और अभी मेरे ख्याल से ये फ्राइडे तक चलेगा, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है वन वॉइस ट्रस्ट और एट द स्टेट ललित कला एकेडमी, हमारे जो ललित कला एकेडमी है लखनऊ केसरबाग में वहाँ पर। तो आप ज़रूर शाम को वक्त निकालिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ विज़िट करिए, बिकॉज़ देखने के लिए बहुत ही

रहा है और अभी मेरे ख्याल से ये फ्राइडे तक चलेगा और ये ऑर्गेनाइज किया गया है वन वॉइस ट्रस्ट और एट द स्टेट ललित कला एकेडमी, हमारे जो ललित कला एकेडमी है लखनऊ केसरबाग में वहाँ पे। तो आप ज़रूर शाम को वक्त निकालिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ विज़िट करिए, बिकॉज़ देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया चीज़ें हैं, स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं फोटोग्राफी में या फिर पेंटिंग्स में और साथ ही साथ कैलीग्राफी, यू नो। तो क्योंकि मेन बात यह है कि यहाँ पे कई देशों से लोग, कई देशों से आर्टिस्ट आए हुए हैं। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 68 कैलीग्राफी यहाँ पे एग्जिबिट की गई हैं, अराउंड 70 फोटोग्राफ्स एग्जिबिट किए गए हैं, पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा 30-32 पेंटिंग्स को एग्जिबिशन में लगाया गया है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड जो क्यूरियस हैं, जो देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जाइए, देखिए इस एग्जिबिशन को और एनालाइज करिए, क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ अपने कंट्री, अपने सिटी, अपने स्टेट को ही नहीं, ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर, और आर्ट इज़ बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो मुझे पता है हमारे शहर में बहुत से कला प्रेमी हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसे एग्जिबिशंस में जाना, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, बिल्कुल जाइए इससे पहले कि ये एग्जिबिशन ओवर हो जाए। और उससे पहले हम भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर, और भाई ये गाना मैं इसलिए प्ले कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ ये शाम, ये वक्त आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और थोड़ा सा रूहानी हो जाएं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ये सुनिए और थोड़ा सा रिलैक्स होके 100.7 FM पर स्टे ट्यून्ड रहिए। ओके, स्टे ट्यून्ड।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों इस वक्त 6:50 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शामी अवध श्वेता के साथ। तो दोस्तों हमारा शहर, आपका शहर और मेरा शहर लखनऊ, इसकी पहचान सिर्फ नवाबी अंदाज नहीं बल्कि बदलती हुई अर्बन आइडेंटिटी भी है। आपको लगता होगा, आप ज़रूर इस बात से इत्तफाक रखेंगे, क्योंकि जहाँ हमारे शहर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कई स्तर पर कई तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, चाहे वो कैफ़े कल्चर हो या फिर आप इवेंट्स हों, स्पोर्ट्स इवेंट्स हों, फूड फेस्टिवल्स हों, वीकेंड कम्युनिटी इवेंट्स हों, इतनी ढेर सारी चीज़ें तो हमारे शहर में होती रहती हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को लेकर भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे शहर में आ रहे हैं उन पर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ना शहर की तस्वीर और भी बेहतर होगी और ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे यू नो प्रोग्राम्स हमारे शहर को और बेहतर बनाएगा। स्पेशली एक यू नो बुनियादी कनेक्टिविटी के स्तर पर, क्योंकि मेट्रो में भी जैसा मैंने बताया काफ़ी बड़े तौर पर काम चल रहे हैं न्यू कॉरिडोर्स को लेकर। और इसी के साथ साथ, क्योंकि देखिए हमारा शहर बड़ा ही यूनिक शहर है और यहाँ पे एक हमारी एक जो हमारा कल्चर, हमारे रूट्स, चाहे वो फूड कल्चर की बात हो या एक टेक्सटाइल कल्चर की बात हो, फिर यूथ भी आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव है कि पोइट्री कल्चर की बात हो, हर तरीके से लखनऊ इज़ सो रिच। तो जाहिर सी बात है कि हमारा शहर अब फिल्म मेकिंग और वेब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और ये जितनी भी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंसी एरिया, चाहे वो केसर बाग वाला एरिया हो, गोमती रिवर फ्रंट में लगातार आप देख रहे होंगे कि शूटिंग चल रही है, फिल्म मेकर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं ये जगहें। तो सिटी का जो कल्चरल बैकड्रॉप है, इसकी वजह से यहाँ कई स्तर पर शूटिंग्स और इस तरीके की एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड बढ़ता नज़र आ रहा है। क्यों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? आपको नहीं लगता हमारा शहर लखनऊ, आप देखते होंगे किसी ना किसी सीरियल के बैकग्राउंड में या किसी मूवी के बैकग्राउंड में जब वो दिखता है तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, राइट? तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपनी सिटी को बहुत ही अच्छे से रखना, क्लीन रखना, ध्यान रखना और थोड़ा सा सिविक सेंस ज़रूर अच्छे से फॉलो करना। तो भाई ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा तो यहाँ पे ड्यूटी है कि आपकी शाम को और बेहतर बनाऊँ। मेरी ड्यूटी पे मैं अमल रहूँगी और आपके लिए और खूबसूरत से ट्रैक्स ला रही हूँ सिर्फ 100.7 FM मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप सुनकर रिलैक्स करिए, मजे कीजिए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM विद श्वेता।

दोस्तों, इसी के साथ आज के शामी अवध का सफ़र यहीं तक। याद रखिए, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, उन लोगों से बनते हैं जो उसकी कहानी को रोज़ जीते हैं। लखनऊ की तहजीब, उसकी मुस्कुराहट और उसका अंदाज़ हमेशा यूं ही कायम रहे। मैं हूं श्वेता, आपसे इजाज़त चाहती हूं। खुश रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। कुछ ही देर में हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में सोमवार को आग लगने की घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण में बीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसी स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाई जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक बलदेव पूर्ण प्रकाश ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देश के लाखों रेहड़ी पटरी और पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडे ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। संत कबीर नगर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए कमिश्नर व डीआईजी बस्ती ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने दौरे को सफल सुव्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बलिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत स्वावलंबन कैंप एवं सहकर्मी सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कैलों जोडा ने रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में महत्वपूर्ण है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में नाबार्ड लखनऊ में FPO स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। सुनते रहिए 100.7 FM।

तो दोस्तों 7:03 का ये वक्त है और आप बने हैं श्वेता के साथ, तो प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम। भाई ये प्रोग्राम है जहाँ आप भी चाह रहे होंगे कि हमारा भी फोन लग जाए आज, जी हाँ, और हमारी भी फरमाइश पूरी हो जाए। तो भाई बिल्कुल होगी, अगर आपका फोन लगेगा तब ना। भाई नंबर तो आपके पास है, आपको बस डायल करना है, फोन घुमाना है। तो देखिए नंबर मिलाइए, हम बैठे हैं आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए, और ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी होगी। आपकी रिक्वेस्ट हम आपके चाहने वालों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो 7:04 का ये वक्त, मैं हूँ श्वेता एक बार फिर से आपके साथ, आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए, आपका फ़ोन अटेंड करने के लिए। तो भाई देर किस बात की, शुरू हो जाइए, लग जाइए, उठाइए फ़ोन और लगा दीजिए हमारा नंबर।

0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: चलिया चलिया चलिया, ऐसी चलिया।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं और मिलते हैं हमारे पहले कॉलर से जिन्होंने हमें कॉल किया है और जानते हैं उनका नाम और उन्होंने हमें कहां से कॉल किया। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: हाँ जी प्रेम जी, आपने कॉल किया उज्जैन से, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जी हीरो फिल्म का सुनना चाहेंगे।
0: अच्छा,
1: तू मेरा हीरो है।
0: तू मेरा हीरो है, हीरो 1983, राइट
1: जी।
0: ओके, तो किस किस को सुना रहे हैं आपको ये गाना?
1: जी बिल्कुल, आपके लिए डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और आप ही के यहाँ पे अलका जी है, उनके लिए डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: जी, और हमारा ग्रुप बनाया हेलो फरमाइश हो जाए अक्टा ग्रुप, उनके सभी श्रोता के लिए। और हाँ, एक उत्तर प्रदेश के हमारे दोस्त है मिंटू तिवारी जी,
0: जी जी ओके,
1: उनके लिए रहेगा। और एक है उत्तर प्रदेश से ही ओमकार जी।
0: ओके, तो भाई आपके सभी चाहने वालों के लिए और आपके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और हम जानते हैं आप हमारे काफ़ी पुराने लिसनर हैं, हमें अक्सर कॉल करते हैं, हम तक पहुंचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर कर। आप सुनते रहिए और हम आपके लिए ये गाना प्ले कर रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सो इन्जॉय एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM धड़कन,
1: थैंक यू सो मच,
0: लखनऊ की। ओके, बाय बाय,
1: गुड बाय।

0: हाँ जी दोस्तों, हमारे साथ देखिए कॉलर्स काफ़ी जुड़ रहे हैं और अभी फ़िलहाल जो कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उन्होंने आज उनका फ़ोन पहली बार लगाया और इस बात को वो सुन के बहुत ही एक्साइटेड थे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, उन्हें लाइन पर लेते हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैम बहुत बढ़िया।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश, विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा, कहा दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
3: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
2: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
4: जो दुर्घटना घटना हुई है लखनऊ में, के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज,

0: एक्सप्रेस वे, कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
1: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में FPO राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
2: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
3: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की होती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेट को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेट के अंदर आएगा उसका पैसा मेट का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने

का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दोस्तों 7:30 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो FM। तो न्यूज़ ब्रेक से पहले ये फरमाइश हुई थी, जो गाना अभी आप सुन रहे हैं, इन्होंने पंजाब से हमें कॉल किया था, आपके लिए ये गाना।

0: तो दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और 7:35 हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ काफ़ी कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं, अभी हम एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्होंने फरमाइश की है, और उससे उनकी फरमाइश पर जाने से पहले चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने हमें कहाँ से कॉल किया है। हेलो
1: हेलो, वेरी गुड इवनिंग सुवेता मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसे हैं?
1: मैं यासर अमित, जी मैं यासर अमित बात कर रहा हूँ मियांगंज उन्नाव से।
0: हाँ जी यासर जी बताइए।
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं
0: भी बढ़िया। आप ने हमें कॉल किया, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, मुझे याद है।
1: जी जी जी
0: जी, तो आपकी फरमाइश
1: हो गए तब बात हुई थी और जब से अब बात हो रही है।
0: अच्छा जी, आपको ये भी याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है और आपकी फरमाइश किस तक पहुँचानी है।
1: जी मुझे उमंग मूवी से सॉन्ग सुनना है, गाने के बोले तूने एक पल के लिए प्यार से देखा मुझको, कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। जी एक दो नाम है ले लें।
0: हाँ बिल्कुल।
1: नीलू शर्मा दीदी है रूपपुर चंदेला उन्नाव से, और अमीन भैया है गंगागंज लखनऊ से, और रोशनी दीदी है चंडीगढ़ से।
0: ओके, तो आपके
1: और आप
0: सभी
1: मैम
0: थैंक यू सो मच, आपके सभी चाहने वालों और फैमिली फ्रेंड्स के लिए ये गाना। टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय, कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से, जिन्होंने हमें कॉल किया है और जानते हैं वो कौन सा सॉन्ग प्ले करवाना चाहते हैं, उनकी फरमाइश क्या और किन किन तक वो ये अपना गाना पहुंचाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी देवगली अहमदुल बाजार बारामकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं मैम।
0: अच्छा जी, आप हमारे रेगुलर लिसनर्स में से हैं।
1: जी
0: हाँ जी, तो जल्दी से बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है और किन किन तक
1: जी
0: अपनी
1: मैम।
0: फरमाइश।
1: फिल्म का नाम है बादल और गाने के बोल हैं यार मेरे यारा मेरे यारम, और मैम डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को।
0: जी बता दीजिए जल्दी जल्दी
1: सबसे
0: ना।
1: पहले मैम आपको,
0: ओके थैंक यू।
1: और कुलदीप गुप्ता है उदोली बाराबंकी से, सुरभि सिंह है सीतापुर से, मोहम्मद फैज अंसारी रामपुर कट्टर से, और नवनीत मौर्या जी, प्रकाश तिवारी जी, साहिबान अंसारी जी, समा परवीन अंसारी जी हैं।
0: लिस्ट बहुत लंबी है। चलिए आपके सभी चाहने वालों और फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ये सॉन्ग हमारे स्टूडियो से आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून्ड।
1: थैंक यू,
0: यू मोस्ट वेलकम एंड बाय बाय। चलिए एंजॉय करते हैं आपकी फरमाइश और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी बिल्कुल 100.7 FM ने चुराया है आपका दिल और धड़कन दोनों ही. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की ओर, क्योंकि हमसे जुड़ चुके हैं एक और कॉलर और वो फरमाइश करें बेहतरीन से गाने की. चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनका नाम और जानते हैं उन्होंने कहाँ से कॉल किया है, किन तक वो अपना सॉन्ग पहुँचाना चाहते हैं. हेलो,
1: सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए.
1: मैम रजनी चौरसिया, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ से.
0: अच्छा रजनीश जी, आप हमारे क्या रेगुलर लिसनर हैं?
1: बिल्कुल मैम, आपके रेगुलर लिसनर हैं और महीने में 4-5 कॉल तो लग ही जाती हैं.
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा जानकर. आप बता दीजिए आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे और फरमाइश किन किन तक पहुँचानी है.
1: मैम फिल्म है राधा का संगम और गाने बोल हैं दो बोल कह के, मोहम्मद तालिब जी हैं.
0: Okay.
1: और इसके अलावा अकबर अच्छी चौकंडी बारा की से रिंकी पिंकी जी हैं और जितने लोग तो सभी से.
0: ओके ठीक है, आपका गाना मैंने क्यों कर दिया है और आपके लिए ये आप

फरमाइश, मैं होप करती हूँ पहुँचे आपके फैमिली फ्रेंड्स और चाहने वालों तक, और आप इंजॉय कीजिए. यस बाय बाय. आप इंजॉय कीजिए ये बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर.

है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। आपसे मैं अलविदा लेती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी मिलूँगी आपसे किसी दिन प्रोग्राम लेकर। तब तक सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM धड़कन लखनऊ की। और आपको मैं छोड़ जाती हूँ एक खूबसूरत से प्यारे ट्रैक के साथ, इस उम्मीद में कि हम जल्दी मिलेंगे। और इन्जॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का

संकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने से मुजफ्फरनगर रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन न केवल तेज सुरक्षित एवं सुविधाजनक होगा बल्कि यह पूरा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद बागपत ने बड़ौत क्षेत्र में गढ़ी खत्री में बिना अग्निशमन विभाग की NOC संचालित 17 कोचिंग सेंटर कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि निरीक्षण में कई संस्थानों में गंभीर खामियां पाई गईं, सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य में के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई,
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अब इसे मोहब्बत का जादू कहें या क्या कहें, जब भी कभी दिल किसी केश की गिरफ्त होता है ना, तो फिर नहीं करता जमाने की परवाह, नहीं फर्क पड़ता उसे कि लोग दुनिया में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, शायद अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता, वो तो बस हो जाता है किसी की राहों में जैसे मजबूर हो जाता है, और फिर दिल से यही आवाज़ आती है कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, बस दिल से दिल को राह जो हो जाती है। 8:21 का वक्त, आप शायर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी मेज़बान रिचा के साथ।

गजल में इश्क लिखते हैं तो चाहत सांस लेती है, गजल में इश्क लिखते हैं तो चाहत सांस लेती है, हमारी धड़कनों में खुद तुम्हारी मोहब्बत सांस लेती है।

होता है यूं भी कई बार मोहब्बत में कि आप जिसे चाहते हैं बात उस दिल तक नहीं पहुंच पाती और फिर वो एहसास जैसे किसी अजनबी एहसास की तरह आपके दिल में ही रह जाता है। शायर भी क्या खूब लिखते हैं कि मोहब्बत करने वाले बड़े नादान होते हैं, मोहब्बत करने वाले बड़े नादान होते हैं, हासिल कुछ नहीं होता मगर बदनाम होते हैं।

सबके साथ मोहब्बत का कुछ ऐसा ही हश्र हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कई बार दिलों से दिलों की राह होती है, मोहब्बत को उसका मंज़िल की मंजिल मिली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप अपनी मोहब्बत की अगर बात करें तो हाँ, हमें और आपको हमारी मोहब्बत की मंजिल मिलती है। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मोहब्बत के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। दीजिए आपकी मेज़बान रिचा को आबशार से इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे वापस हाजिर होंगे हम लेकर आपके लिए आपका शो पॉप टाइम। सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: दिया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई

0: दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति

0: प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और

0: पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बद ओ मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
3: शत्रुपा से।
4: अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा?
3: शत्रुपा से माँ जी।
5: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहां से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
3: शत्रुपा से।
6: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
3: शत्रुपा से।
7: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: सात रंग का इंद्रधनुष है,
9: सात सुरों की सरगम है,
10: सात जन्म है सात समंदर,
8: साथ हमारा हरदम है,
10: जिंदगी के सतरंगी रंग
9: एफएम रेनबो के संग।
11: ये है 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
12: इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आपका हमारा साथ जन्म जन्म का है, और देखिए इसी साथ को निभाने के लिए हर जन्म हर बार हम आपसे मिलने के लिए चले आते हैं। फिलहाल 9:03 का वक्त हो चुका है, लेकर आपका अपना शो पॉप टाइम जिसे आप कहते हैं। मैं आपके साथ आ चुकी हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे रिचा। तो आप कहाँ हैं, आइए मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपके बिना ये महफिल, ये समा, ये सफर हमेशा अधूरा रहता है। और कहाँ ना है एफ एम आकाशवाणी रखते हुए @gmail.com पर, जहाँ पर हमेशा की तरह मुझे रहता है बेसब्री से आपके ई मेल्स का इंतजार। तो खुशामदीद, वेलकम, नमस्कार एंड यस गुड इवनिंग।

अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि हम कहाँ हैं, तो हम कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर ही है। और रही बात सतरंगी चैनल की, तो हाँ ये सतरंगी चैनल है, तो आपका इस रंग में रंगना तो यूं लाजमी है ही, क्या कहते हैं आप।

तारानी शुरू हो जाते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप मुझे ईमेल्स भेजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वो टाइम है जहां पर पॉप टाइम शुरू होता है और उसके बाद आपके ईमेल्स का सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक लगातार ऐसे ही शुरू होता है। मेरे पास पहला ईमेल आ चुका है विजय पाल यादव जी का, ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपने ईमेल भेजा है। हमेशा की तरह बड़ी सारी तारीफें लिखी, दिल से धन्यवाद उसके लिए। आपको आप चार अच्छा लगा उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आपने ऐसी उम्मीद जताई है कि ये प्रोग्राम जो है पॉप टाइम वो झक्कास होगा ही होगा, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हुआ नहीं ये मुझे आप वापस बताएंगे, ठीक है। और आपने लिखा है कि भगवान की दुआ लेने से पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेना सीखो, क्योंकि कामयाबी का रास्ता माता पिता के चरणों से होकर निकलता। 110% बिल्कुल सही बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। और आपके साथ बबलू यादव, राजेश कुमार हैं जुड़े हुए, और वही लखीमपुर खीरी से। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर अभी अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बता दूं कि fmakashwani@gmail.com पर है मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार। लेकिन लेकिन लेकिन बड़े सारे ईमेल्स और भी हैं मेरे पास, तो उनको भी तो पढ़ते रहना पड़ेगा ना मुझे साथ साथ। सुल्तान रजा आ चुके हैं और लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हमेशा की तरह आपका ईमेल है। और आपके साथ जुड़े हुए हैं रजा, नहीं इकबाल रजा, जीशान, अफजल, मोनिश, सादिक और आपके मम्मी पापा, यानी कि पूरा रजा परिवार राजी खुशी के साथ पॉप टाइम को सुन रहा है। धन्यवाद। और हमेशा की तरह आपने एक बड़ा प्यारा सा वो एक फन टाइम की जो बात होती है चुटकुला वो भेजा है। लिख रहे हैं, पूछना ये था कि टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो पूछना ये था कि टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो फिर सब बर्गर बनते ही सेहत के लिए हानिकारक कैसे हो जाते हैं? भाई देखो, बड़ा तिकड़म वाला सवाल है, इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास भी नहीं हो, जैसे ही मिल जाए ना हमको बता दीजिएगा। ये सवाल तो है पेचीदा कि जैसे ही बर्गर में जाते हैं ये सबकी सेहत क्यों खराब हो जाती है, जानने वाली बात है। लेकिन चलो कोई नहीं, आपने पूछा, हमने आप तक पहुंचाया, जवाब मिल जाए तो वापस हम तक भेज दीजिएगा। अशनूर नूर अंसारी है, हमेशा की तरह रोज की तरह, और आपने हमें पोस्ट हर हर मटकली जिला बरेली से आपका ईमेल भेजा। और आपके साथ फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हैं। आप सभी को प्रोग्राम सब अच्छे लगते हैं ये वाले, दिल से धन्यवाद ये कहने के लिए और जुड़ने के लिए उससे भी ज्यादा धन्यवाद। रोशनी रावत आ गई है अपनी रोशनी को बिखेरती हुई, लिख रही है, आबशार आपको बहुत लाजवाब लगा पॉप टाइम, शुक्रिया धन्यवाद तारीफों के लिए। बाकी साथ निभाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मुझे पता है आपको रहना ना रात 12 बजे तक हमारे साथ। और आपने हमें बम्हना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आपका ईमेल भेजा, लेकिन आप इस वक्त चंडीगढ़ में रहकर हमें सुन रही हैं। क्या माहौल है चंडीगढ़ का, मौसम कैसा है वहां का, बता सकती हैं बिल्कुल तो बताइए। लिख रही, अर्ज किया है, किसी की बातों से इश्क हो जाए तो फिर क्या किया जाए, किसी की बातों से इश्क हो जाए तो फिर क्या किया जाए, धीरे धीरे बातें शुरू की जाए या वहीं रोक दी जाए। अरे ये करने की कतई कोई जरूरत नहीं है, खबरदार, जो बातें करनी रोकी तो बातें करने से ना बंद कर देने से चीजें खराब हो जाती हैं, करते रहिए भले थोड़ी थोड़ी करिए। और वो सारे नाम जो आपने लिखकर भेजे हैं सब एक साथ मिलकर सुन रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है सुन करके, सबको मेरा भी सलाम। अगला ईमेल किसका है, कृष्णकांत सिंह जी का ईमेल है और लिख रहे हैं, टाइम प्रोग्राम कार्यक्रम जैसे शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के साथ किसी म्यूजिकल पार्टी में बैठे। वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत आपने वो कहते हैं पर्सनिफिकेशन, नहीं उपमा दे दिए, कितना अच्छा सा काम किया ना ये, अच्छा लग रहा है पढ़ करके। आप लिख रहे हैं, आप जब अपने सुपर स्पीड अंदाज से इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं तो मुझे बेहद पसंद आता है। धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से करम मेहरबानी आपकी जो आपने ये लिखा। और लिख रहे हैं, एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम को सुनकर पता ही नहीं चलता। सच बताऊं, पता तो हमको भी नहीं चलता, कैसे घंटा हो जाता है बस आपके साथ ये वक्त बीत जाता है, सोचते हैं अच्छा ये वाला गाना बजाना था, अरे वो तो रह ही गया, लेकिन चलो फिर भी बच जाते हैं बहुत सारे गाने। और आपने हमें हमेशा की तरह कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल लिखा, दिल से धन्यवाद आपके इतने खूबसूरत प्यारे भरे प्यार भरे ईमेल के लिए। एक ईमेल और उसके बाद गानों का सिलसिला, ठीक है। रामराज जी का ईमेल है और हमेशा की तरह आपने हमें जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से आपका ईमेल भेजा है। आपके साथ रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण, बजरंगी काका सब हैं। और सबसे पहले आपकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आपने हमें भेजा, आशीर्वाद दी भेजा है, दिल से आपका धन्यवाद। गाने सुपर हिट होते हैं, आपका कार्यक्रम रोज सुनते हैं, फरमाइश, अच्छा फरमाइशी गाना ये नहीं है, आपको मालूम है रामराज जी हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहना जरूर है। चलो कोई नहीं, क्या पता किसी दिन, कहते हैं ना गुहार लगाते रहो, किसी दिन तो पुकार सुनी जाएगी। अच्छा करते हैं। बहरहाल 9:16 का वक्त हो चुका है पॉप टाइम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, एंड यस आपकी दोस्त आपके रुचा के साथ। और अगला गाना हमने भेज दिया है आपको आपके रेडियो सेट्स पर, तो चलिए इस गाने के साथ मिलाइए ताल से ताल और ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com

तो हम यही हैं आपके अपने 100.7 FM रेंदु पर। रही बात सतरंगी की, तो हाँ मुझे पता है कि सतरंगी चैनल है तो इसका असर, इसका रंग तो आप पर चढ़ेगा ही। और ये बात जो है ना, बिल्कुल आपके ईमेल्स मुझे बता रहे हैं, इतने सारे ईमेल्स।

हाँ, बस बस बस बस थक गए होंगे, थोड़ा देर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर आप लगातार डांस करते रहेंगे मेरे साथ तो भैया फिर कैसे. हाँ बिल्कुल, डांस करने वाली बात है, लेकिन जरा थम थम के करेंगे ना तो ज्यादा आप डांस और अच्छे से कर पाएंगे. 9:27 का वक्त हो चुका है. वापस आपके साथ आपके ईमेल्स को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं. यकीन मानिए मस्ती का ये जो मौका है ना, माहौल है ना, आपके ईमेल्स भी बिल्कुल वैसे ही मेरे पास है. राजकमल यादव जी का ईमेल है मेरे पास, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से है. लिख रहे हैं प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा है, 20 मिनट चला गया है इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा रुक गया है, सुन नहीं पा रहा हूँ. कोई बात नहीं, अगल बगल वालों से पूछ लीजिएगा, आपको सारी खबर मिल जाएगी क्या था कैसा रहा. और आपने लिखा है कि आपके साथ आपकी वाइफ संगीता यादव, सावंत कुमार यादव, अर्चना भाभी पकड़ियापुर से सुन रहे हैं. तो सबसे कहिए बस पकड़ के रखें रेडियो को अपने ढंग से, क्योंकि इतनी तेज तेज से गाने बज रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर गिर जाए नीचे उछल कर आपका रेडियो भी, है ना. तो ये भी जरूरी है. थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए, आपने हम तक पहुंचाया, दिल से धन्यवाद आपका. बबीता राव आ चुकी है मेरे साथ. क्या लिख रही हैं बबीता? लिख रही हैं आपको आपका गज़लों का आपशा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, टॉप टाइम में तो आपका जलवा रहता ही है, एकदम झक्कास गर्दा उड़ाने वाला, और रजनीगंधा तो सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट होता है. पढ़ के बड़ा मज़ा आया, रोज़ से कुछ अलग था इसलिए मुझे लगा मुझे पढ़ देना चाहिए, है ना. लिख रही है कि यूं तो मैं हज़ारों लफ्ज़ आपकी तारीफ़ में कह दूँ तो भी कम लगते हैं, शायद इस कायनात में वो लफ्ज़ ही नहीं जो आपकी तारीफ़ में बयां कर सकूँ. वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, रोज़ से हट कर है. और आपने लिखा है कि आपके साथ आपके आपका जो प्रोग्राम है, रजनीश भाई, विनीता दी, रोशनी वेक और रवि भैया, लॉन वाले सोम, रवि शंकर भैया, पिंटू और सीटू सब सुन रहे हैं, राधा भाभी, खुशबू भाभी और हेलो भाभी हैं, और हर्षवर्धन सब एक साथ सुन रही है. हेलो भाभी नाम थोड़ा समझ नहीं आया हमको, सब लोग सुन रहे हैं साथ में. आपने लिखा है, अच्छा इन सबको मैंने स्पेशली बोला है कि ऋचा दीदी, ऋचा मैम को सुनो. वाह क्या अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने हमारी सिफारिश कर दी, भाई सुन लो, दिल से धन्यवाद आपका. और आपने ईमेल किया बबीता, इसके लिए भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. बेबी कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से हैं, बेली कला से हैं आप हमारे साथ, दिल से धन्यवाद आपके ईमेल के लिए. वकील अहमद साहब आ चुके हैं, क्या लिखते, चलो पढ़ दें. आवाज़ आपको अच्छी लग रही है, दिल से धन्यवाद है इसके लिए भी, चलो कम से कम किसी लाइक तो हुई हमारी आवाज़. आपने लिखा पॉप टाइम आपको अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, और इस समय गर्मी, हाँ गर्मी तो देखिए बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा पानी वानी का इनटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि अभी तो गर्मी है फिलहाल, बारिश के आसार हैं, लेकिन जब तक अभी नहीं आ रहे तब तक तो ध्यान रखना पड़ेगा ना. और आपने हमें कटका हथूरी जिला सीतापुर से लिखा है, और आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, क्षमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशाह सिद्दीकी और अहमद नवाब भी हैं. अहमद ने आई भी बड़ी देर से आती होंगी, वो भी थोड़ी देर में अपना ईमेल लेकर हमारे पास. अरविंद कुमार दुबे जी का भी ईमेल आ चुका है, ग्राम धर्मदेवा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं. लिख रहे हैं आपके एंकरिंग का अंदाज भाई हमें तो बेहद पसंद है, तो दिल से आपका धन्यवाद ये लिखने के लिए, आपने जिस अंदाज में लिखा ना भाई हमें तो बेहद पसंद है, तो हम भी कह रहे हैं भाई बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका. और आपने लिखा है कि हम सभी रेनबो लखनऊ के सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मौसम में उमस है, आपकी संगीत से कुछ उपाय कीजिए तो कुछ राहत मिले. मेरे ख्याल से हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी राहत मिल सके, कितना सफल हो रही है बता दीजिएगा वापस हमें, ठीक है. अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, दीपा, प्रतिष्ठा, तन्वी, श्याम कुमारी हैं हमारे साथ. थैंक यू सो वेरी मच अरविंद जी आपके इतने खूबसूरत प्यारे से ईमेल के लिए. मोइनुद्दीन अंसारी भी हैं हमारे साथ और लिख रहे हैं मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है. और हुस्बा अंसारी लखीमपुर खीरी से, अच्छा अच्छा अच्छा आपने मोइनुद्दीन साहब की ईमेल आईडी से आपका ईमेल भेजा, चलो कोई नहीं पहुंच गया. कमल पांडे जी का ईमेल, ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल है. और आप रमाकांत विश्वकर्मा बिल्डिंग वाले मोहलिया कला, ओम प्रकाश भार्गव जी हैं, सुरेश जायसवाल भी हैं और सहदेवा हैं, आप लोग सारे लोग मिलकर प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, दिल से धन्यवाद आप सभी जो जुड़े हैं कीमती वक्त लेकर देकर. हाँ क्योंकि ये नहीं, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हमें कौन सुनेगा, बात सही है भाई, देखो सीरियस बात है जो है वही बता रहे हैं आपको.

विनीत कुमार जी का भी ईमेल आ चुका है, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाली रिचा बहन जी को गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि का शत शत प्रणाम स्वीकार करें। और लिखा है जब हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे पता है आप ये कह के मुझे वापस हंसा देते हैं ना। और सुरीली मीठी बोली सुपर हिट, आप आती हैं तो बाहर आती है ये। देखो जो अच्छी लाइन होती है उसको हम पढ़ देते हैं, छोड़ते नहीं उसे वापस, कुछ नया जब दिख जाता तो ज़रूर पढ़ देते हैं। और आपने लिखा है कि आपके दोस्तों के नाम कहाँ हैं, ये आज़ाद सिमरी से ओमकार अतरौली सीतापुर से हैं, सुरभि सीतापुर से है, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, और वीरपाल पट्टी अतरौली से है, ममता हरदोई से है, संजय अतरौली से है, रिंकी पिंकी रायबरेली से है, नवनीत हरिकेश लखनऊ से है, और मोहिनी हरदोई से। अब ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सारे नाम ले लिए हैं। बाकायदा जो जगह आपने मेंशन करी है उसके साथ भी मोनू सेठ जी वापस आ गए, मतलब वापस क्या आ गए, आ गए, अभी तक नहीं आए थे, अब आ गए। लिख रहे हैं कैसन है, तो उम्मीद है कि हम ठीक हैं। और आपको लग रहा है, आपने लिखा उम्मीद है बहुत नीक हुई। हाँ, अंजू बहन आई तो पता चला कि आप भी आ जाएंगी, क्योंकि जोड़ी साथ साथ चलती है। देखो बाद में दम है भाई ये, और ये कुछ ऊपर वाले का कर्म भी है, हो जाती हैं चीज़ें ऐसे, आप लोग दिल से चाहते हैं तो ऐसा कुछ हो भी जाता है। बट हम अच्छे हैं, शुक्रिया हाल चाल पूछने के लिए। मोबाइल में नेट खत्म हो गया था, लिख रहे हैं मेल नहीं भेज पाएंगे, भेजा तो है आपने, पर 11 बजे तक साथ रहेंगे, वादा है मेरा। 12 बजे तक हम रहते हैं तो 11 बजे तक का क्यों, 12 बजे तक का साथ निभाइएगा, ठीक है। मनीष गुप्ता जी है, और आपने गुसाईगंज से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम शिमला में सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, जबरदस्त प्रोग्राम, बेहतरीन सॉन्ग, शुक्रिया, धन्यवाद। वहां का मौसम कैसा जरा बताइए, यहां तो भाई बड़ी गर्मी है, लोग परेशान है इस गर्मी से, उम्मीद करती हूं कि वहां थोड़ी राहत जरूर होगी। एक ईमेल और लेते हैं फिर गाने की तरफ चलेंगे, ठीक है। आनंद तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं वक्त बीत तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देता है सुबह होते ही लोग उससे भी बुझा देते हैं। अब है कुछ ये दस्तूर, क्या किया जाए, आसमान में सूरज निकल आता है फिर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। बट एनीवेज आपका ईमेल आया, आपने लिखा है दारुकुइया मल्लावा हरदोई यूपी से, जबरदस्त प्रोग्राम, जब कोई सी बात लिखता है तो उसको तेज कर देते हैं, ये देखो। धन्यवाद, एक ईमेल और लेते हैं, ठीक है। अमित बहेलिया जी का ईमेल है, और आपने लिखा नमस्कार, बाराबंकी से हूँ, सॉन्ग मस्त है, शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। अमित जी आगे भी ईमेल कीजिएगा और कुछ अच्छा और अपने बारे में बताइएगा, अच्छा लगता है जब आप सब जुड़ते हैं, अपनी बातें हम तक रखते हैं। तो 9:33 का वक्त, पॉप टाइम इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपकी अपने 107 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा के साथ। चलिए गाना अगला दे रहे हैं, गाने को एंजॉय कीजिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।

रात के 2:29 का वक्त हो चुका है। गाना पता आपको मैंने क्यों बजाया, क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा प्यारा सा ईमेल खुला हुआ था, जिसको देखने के बाद मेरे भी जो है मुंह से निकल गया वाह। जानते हैं ईमेल किसका? ईमेल भेजा मुझे डॉक्टर सुमित कुमार चौहान जी ने जसपुर उत्तराखंड से। और जो बात इन्होंने लिखी ना, बड़ी प्यारी सी बात है, लिख रहे हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, जहां हर बात में एक अलग ही अदा है, यहां की हवा में भी शायरी घुली है, ये शहर नवाबों और अदब का गढ़ है। आपने लिखा कि आप कोई भी चैनल सुन रहे हो, रेडियो से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल सुन रहे हो, जो भी हो, लेकिन जब बात शाम की है तो सिर्फ लखनऊ के नाम है ये शाम। चाय की चुस्की के साथ गूंज रही है कोई पुरानी गजल और दिलों में धड़क रही है सिर्फ लखनऊ की हलचल, और ये जो चैनल है ये है सिर्फ और सिर्फ आपका अपना 100.7 FM। क्या बात है! इसको लिखने के बाद जब इन्होंने मुझे ये भेजा, इसको पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि मेरे मुंह से वाओ निकलना तो बनता ही था। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके इतने प्यारे खूबसूरत ईमेल के लिए और इतनी खूबसूरती के साथ ये बताने के लिए कि 100.7 FM रेनबो का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अगले ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहे हैं, मैं प्रोग्राम के साथ मैथ के प्रश्नों को झूम झूम कर हल कर रहा हूँ। अरे भैया, बड़ा जिगरा है आपके अंदर। एक तो गणित के सवाल हो भी आप झूम झूम के हल कर रहे हैं। आपको शायद पता हो गणित में बड़ा थोड़ा मतलब मामला हमारा सही नहीं है, 20 में 00 मिले थे किसी दौर में तो भाई ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है कि आप झूम झूम कर सवाल हल कर रहे हैं, वो भी गणित के। चलो अच्छी बात है, ईश्वर करे आप ऐसे ही यूं ही ना मतलब ये करते रहें, आप आपकी गणित ऐसे अच्छी बनी रहे। आपने लिखा है, मैं सौरभ प्रजापति उत्तर प्रदेश जिला अमेठी ग्राम गौतमपुर से हूँ, और वेलकम और शुभ संध्या के साथ लहजों की मलिका। आशा है कि हर दिन की तरह आज भी आपकी तबीयत चकाचक है। वैसे मुझे लगता तो ऐसा ही है, बाकी आपको सुनकर कैसा लग रहा है बता दीजिए। कह रहे लिख रहे हैं तभी तो कहूँ, आते आते करंट लगने वाला गाना बजा रही हूँ। कुछ लाइन लिखी है, पढ़ लो। वो आईना थी मेरी जिसको देखने पर खुद ब खुद सवर जाता था मैं, वो आईना थी मेरी जिसको देखने के बाद खुद ब खुद सवर जाता था मैं, वो रूह थी मेरी जिसे एहसास कर खुद को भूल जाता था मैं। बहुत प्यारा सा ये आपने भेजा है लाइक में लिख करके, और जिनके लिए भी लिखा है दिल से लिखा ही है, तो दिल से धन्यवाद आपका। अगला ईमेल किसका है मेरे पास? सुल्तान रजा जी वापस आए, लिख रहे हैं, अरे अपने ईमेल में एक बार लिखना भूल गया था, वो थी रॉकिंग रिचा अप्पी कैसी आप वही हम सोचे सुल्तान रजा साहब का ईमेल मुझे कुछ छोटा सा क्यों लग रहा है, कुछ कम क्यों लग रहा है, तो उसमें ये मिसिंग था। चलो आ गया। शैलेश कुमार उर्फ यानी कि नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से आ चुकी है। रजा दी को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार।

21 को मिसले नहीं सुन पाए थे कि अच्छा आप कहीं गई हुई थी, कोई बात नहीं आज सुन लिया, अच्छी बात है। और आपने लिखा यासिर भैया, रोशनी बबीता, गुलफसा सिद्दीकी, दीपशिखा, दीपू दीदी, पीहू को नमस्कार। तो मेरी तरफ से नमस्कार पहुंच चुका है, आपने लिखा है, धन्यवाद उसके लिए, आपके ईमेल के लिए। और अगला ईमेल किसका है? एम के राज जी का ईमेल मेरे पास है, मुनेश कुमार राज हैं और आपने हमें भानपुर हरनवा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल लिख रहे हैं। एवरी प्रोग्राम इज अनमैच्ड, ईयर्स हैव पास लिसनिंग टू यू, योर प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज एक्सलेंट। रुचा मैम थैंक यू सो वेरी मच, आगे पढ़ने से बोल दूँ, पहले बोल दूँ, योर वॉइस मेक्स अ नाइट इवन मोर ब्यूटीफुल, लिसनिंग टू यू हैज बिकम अ वंडरफुल हैबिट फॉर मी। देखो कितनी अच्छी बात आपने लिखी, मैं क्या कहूँ, ये लाजवाब हम उसके बाद हो जाते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते, हम क्या आपसे कहें, बस धन्यवाद कह सकते हैं। आपने लिखा कीप प्लेइंग ग्रेट सॉन्ग्स, कोशिश कर रही हूँ पूरी कि हाँ आप तक अच्छे गाने पहुँचा सके। और आपने लिखा वी विल कीप लिसनिंग टू एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए मुनेश कुमार राज जी। ऐसे ही अपने प्यारे जो आपके मन के भाव है ना हम तक पहुँचाते रहा करिए, हौसला बढ़ जाता है हमारा। मुजम्मिल शेख साहब आ चुके हैं, लिख रहे हैं लिस्टिंग फ्रॉम जुबली हिल्स हैदराबाद तेलंगाना। क्या बात है, देखो इसी बात पे खास लिखा कारले वाली बात आ गई। और आप लिखा गाने एकदम मस्त बज रहे हैं, प्रोग्राम में बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है मैडम जी, शुक्रिया मुजम्मिल शेख साहब, आपका ईमेल भेजा आपने इसके लिए। वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराष्ट्र से है मेरे पास, लिख रहे हैं अरे भैया सब लोगन का हमार राम राम, का हाल चाल है सबका, मेरे ख्याल से जितने सुनने वाले लोग हैं सबके हाल बिल्कुल बढ़िया चका सकें तभी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप मेरे हाल चाल पूछना चाहते हैं तो हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। आपने लिखा बहुत बढ़िया बारिश हुई है हमारे यहाँ, है यहाँ तो अभी फिलहाल नहीं हुई है, उम्मीद है कि हो जाएगी, बहरहाल उम्मीद तो दुनिया कायम ऐसा कहा जाता है। लिख रहे हैं अऊरी मौसम के साथ भैया प्रोग्राम ने चार चांद लगाई दी, क्या बात है, मतलब ये आपने पॉप टाइम में ना सुगंध माटी वाला तड़का लगा दिया, बता देंगे आपकी प्यारी जो अंजू शुक्ला मैम है ना जो आपके लिए लेकर आती है सुगंध माटी की, हम कह देंगे यहाँ भी एक ईमेल आया था सुगंध माटी के नाम से, फिर हम बताएंगे कि कैसा रहा उनका रिएक्शन। ठीक है, तेज बहादुर यादव जी का भी ईमेल है और आपने लिखा रॉकिंग ऋचा जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी लिखकर इतनी खूबसूरती से हमें एड्रेस करने के लिए, बहुत गजबो गजब बोली है आपके और गाने तो एकदम नाचने वाले बजाती, पर क्या करें हम तो अभी दुकान पर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, रजनीगंधा का भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, सुनेंगे जरूर, आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा और जो कोशिशें हम सब करते हैं वो पूरी हो जाती हैं इसी बहाने आप सबके रहने से। और आपने हमें गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद। और आप लिख रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है ना, इतनी दूर दूर से भी लोग सुनते हैं भला ऑडियो जोन AIR ऐप का, और जो ऑनलाइन आप हमसे जुड़ जाते हैं उसका, है ना, कितनी अच्छी सारी चीजें हो जाती हैं कई बार लाइफ में। नेक्स्ट ईमेल है मनीष गुप्ता जी का, मनीष जी शायद आपका ईमेल मैंने शामिल किया था बट कोई बात नहीं, आपने लिखा अच्छा मौसम कैसा ये पूछा था मैंने, तो आपने दोबारा मेल किया है और लिख रहे हैं मौसम इतना मस्त है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ने चारों तरफ एसी लगा दिया, देखो कितनी अच्छी बात है ना, नेचुरली आपके शिमला में एसी वाला माहौल है, हम लोग तो अभी तरस रहे हैं गर्मी के मारे सब परेशान है, कोई नहीं यहाँ भी बहारें आएंगी, फिलहाल आप उसका मजा लीजिए। स्वतंत्र सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं और लिख रहे हैं प्रोग्राम इज माइंड ब्लोइंग, देखो बजा दिया हमने तेजी से ये वाली बात, जब कोई ऐसा कुछ बढ़िया लिख देता है तो हम ये कर देते हैं। और आपने लिखा है योर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो हाईली अप्रिशिएबल, दिल से धन्यवाद, कीप रॉकिंग, आपने हमें लिखा है सीतापुर सफीपुर उन्नाव से आपका ईमेल है, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी आपके ईमेल के लिए। मिराज अली साहब हैं, लिख रहे हैं मैं कह रहा हूँ, अच्छा हैदराबाद तेलंगाना से आप कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, रहने वाले हैं झंडे राज जिला लखीमपुर खीरी की और जीमेल अपनी मॉम को डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरा नमस्ते दुआ सलाम उनको कहिए, लिखना है हज़ार गम है फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ तो सारे गम भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, तो माँ के चेहरे पर खुशी हंसी बना के रखिए, उनसे बेहतर तो कुछ होता नहीं है, है ना। और आपने लिखा है कहाँ से आपका ईमेल आ चुका, अच्छा गाने की फरमाइश आपने की है तो मैं बता दूँ कि रिक्वेस्टेड शो नहीं है, 2-3 दोपहर में एंड शाम को 7-8 यहाँ पर आपके रिक्वेस्टेड गाने सुन सकते हैं। सत्यम पाल जी हैं रिफतपुर ज़िला मुरादाबाद से और कार्यक्रम मस्त चल रहा है, कंपनी ऑडिट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जानता हूँ कार्यक्रम फरमाइश नहीं लेकिन अगर हो सके तो, चलिए आपने भेज दिया है हम इसको नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हो तो फिर आपके जो गाने आप हमको यहाँ लिखकर अभी भेजते हैं उन्हें किसी दौर में हम आप तक पहुँचा सकें, है ना। और अभी क्या है कि 9:46 का वक्त, गाना आप तक दे रहे हैं, गाने को इन्जॉय कीजिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना 127 FM रेनबो, आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ।

वैसे तो हम इस गाने के बाद एक और गाना बजाने की मूड में थे, लेकिन 9:50 हो चुके हैं, ईमेल से बड़े सारे मेरे पास, तो मुझे लगा कि वापस आपके ईमेल तक आ जाना चाहिए। विजय पाल यादव जी का ईमेल वापस आया, लिख रहे हैं, कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति अच्छी है, इसलिए दोबारा ईमेल करने पर मजबूर हो गया। आपके यहाँ मेहमान आए हैं, सभी के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, वो सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद हमें सुनकर तारीफों के 2 शब्द तक पहुँचाने के लिए। और आपका ईमेल हमेशा है जिला लखीमपुर खीरी से, तो शुक्रिया, धन्यवाद ईमेल के लिए। शैनीलू जी, आपका ईमेल, इतने सारे आप नाम लिखती हैं, मैं कई बार बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, दीप शिखा जी हैं, तो वापस उनका नाम आप तक पहुंचा दिया है हमने, उम्मीद करती हूँ अब उनका नाम उन तक सही से पहुंच गया होगा। हाउस दीक्षित जी, यानी कि हमेशा की तरह अनिल कुमार दीक्षित जी हैं, जब इस दरवाजे को नॉक करो ना तो अंदर से वही निकलते हैं, और लिख रहे हैं, आज मैं सोच रहा था कि आप शायद आज आएं, क्योंकि दिन में आई थी परसों, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है इस वक्त, और लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों ईमेल करने से खुद को रोक नहीं पाता। तो मेरा भी सवाल आपसे है कि आप ये सोचते ही क्यों है कि आपको खुद को रोकना है, हमें तो आप सबके

मेल्स का इंतजार रहता है। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम सोच रहे हैं कि मेल करें कि ना करें तो कैसे काम चलेगा, समझा करिए, तो आप ईमेल किया कीजिए, ठीक है ना। और आपने हमें LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ से आपका ईमेल हर बार की तरह भेजा है, पहुंचाया। दीपिका शर्मा जी हैं और लिख रही हैं, हेलो मैम, सुपर डुपर शानदार जबरदस्त प्रोग्राम काफ़ी दिनों बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है आपने लिखा और मूड फ्रेश हो गया। अच्छा लग रहा है हमें ये पढ़ के कि आपको ऐसा लगा और जो कोशिश हमने की है वो सक्सेसफुल हो रही है। और क्या चाहिए हमें, है ना, कीप इट अप, आपने लिखा है, बहुत शुक्रिया दिल से, धन्यवाद आपका। कहाँ से आपने लिखा था ये नहीं बताया, अगली बार जब दोबारा हमें ईमेल भेजे ना तो बताइएगा कि अच्छा रायबरेली से मिल गया आपका नाम। बहुत शुक्रिया दीपिका जी प्यारे ईमेल के लिए। मिराल यासिर मियागंज नाव से आ चुके हैं और लिख रहे हैं, मुझे डांस करना नहीं आता, एक बार सच बोलूं तो ठीक है, कौन कह रहा है कि प्रॉपर डांस करिए, दो एक हाथ उठाकर ऐसे डांस कर दीजिए, बोलिए हाँ हमने डांस कर लिया, तो जो प्रथा है डांस करने की वो भी रह जाएगी, हमारी बात भी रह जाएगी और लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि आपको डांस करना नहीं आता, समझा करिए। आपने लिखा है कि आपको अगर हम खाने तो बिना देर किए मियागंज चले आओ, तो देखो अभी तो भाई नहीं आ पाएंगे, जो वो सही बात है बिल्कुल, 12 बजे तक हम यहीं हैं, है ना, पूछना आपका फ़र्ज था तो हमने बता दिया कि मेरी ये मजबूरी है, आपका फ़र्ज था मेरी ये मजबूरी है, बाकी जब फुर्सत होगी तो हा हा हा जो आपने लिखा है ना तो हम भी आएंगे, ठीक है शुक्रिया ईमेल के लिए। राधे श्याम जी का ईमेल और लिख रहे हैं कसन कासगंज से और मास्टर राधे श्याम शाक्य हैं, गुड इवनिंग, शुक्रिया और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच राधे श्याम जी आपके प्यार भरे ईमेल के लिए। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं और आपने हमें रायपुर उडारा मितौली से आपका ईमेल भेजा है, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, करम मेहरबानी। एंड दिग्दर्शन गौर जी भी हैं और लिख रहे हैं ईमेल के माध्यम से फरमाइश आप कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है दिग्दर्शन जी, दोपहर में 2 से 3 और शाम को 7 से 8, ये दो ऐसे वक्त हैं जब आपके गानों को जो आप रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें आप सुन सकते हैं। कहाँ से भेजा आपने ये मुझे बता दें, मेरठ स्कैन से आपका ईमेल है, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। अगला ईमेल किसका है मेरे पास, ये भेजा है मुझे रूबी श्रीवास्तव जी का ईमेल है और लिख रहे हैं कि मैं पहली बार इस शो को सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रूबी अगली बार भी सुनिएगा, मेरा वादा है आपसे और उम्मीद भी है कि आपको आगे भी ये प्रोग्राम उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा आपको अभी लग रहा है। जानते हैं अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि आप सब जब जुड़ जाते हैं तो अंदर से उत्साह आता है, वो उत्साह ये फिर बढ़िया वाले गाने आप तक पहुँचा ही देता है। चलिए गाना और दे रहे हैं, इस गाने को एंजॉय कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, 9:54 का वक्त है फिलहाल ये गाना। अब आपने इतनी अच्छी बारी सारी बातें करी हैं तो कहते नहीं उस दिल पे छुरियां ना चलें, कैसे हो सकता है, लीजिए गाना सुनिए।

तो जानते हैं गाना किसके लिए बजाया, यासिर साहब के लिए। उन्हें डांस करना जरा कम आता है ना, तो हल्के फुल्के स्टेप्स के साथ एक दो ठुमके लगा लीजिए तो मन भी शांत होगा और लोगों को लगेगा कि आपको डांस भी करना आता है। क्या समझे आप?

रोशनी जी ने वापस ईमेल किया, लिखा इन्होंने आपने मौसम का हाल पूछा था तो 9 बजे से लाइट नहीं है चंडीगढ़ में, गर्मी का प्रचंड रूप है, सुन के अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते, मौसम है ये।

बस आपके दिलों को ऐसे ही फड़कने धड़कने दीजिए। रात के 9:56 का वक्त हो चुका है। फिलहाल पॉप टाइम को वाइंड अप करने की है बारी, तो दीजिए आपकी दोस्त आपकी उर्चा को आज के पॉप टाइम से इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगले घंटे भी हम रहेंगे आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा। और आपको पता है कि आपका रहना हमेशा हमेशा बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके बिना कहाँ कोई जर्नी पूरी होती है ना, जानते हैं ना। तो चलिए फिलहाल दीजिए ऋचा को इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। बट हम मिलेंगे अभी ठीक 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत रोड शो में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी व स्पीड का 3S मॉडल बन चुका है। उद्योग के लिए तीनों आयाम सबसे महत्वपूर्ण हैं, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेमिसाल कनेक्टिविटी, पारदर्शी प्रशासन और संस्थाओं का बेहतर नेटवर्क नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। स्किल्ड टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंडली पॉलिसी, कुल मिलाकर एक संपूर्ण इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के नए यूपी में मौजूद है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में 17 जून से 26 जून तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के 66 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू निषेध एवं नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नाव के नवाबगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 53 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दवाएं प्रदान की गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ

श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं की समय रहते पहचान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। सहारनपुर के गांव सावंतखेड़ी में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो घर में भट्टियां सुलगाकर बड़े पैमाने पर अपमिश्रित कच्ची शराब तैयार कर रहे थे। छापेमारी के दौरान 610 लीटर अवैध कच्ची शराब, 800 लीटर लहन, 5 किलोग्राम यूरिया तथा शराब बनाने में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खबर।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: तो रात के 10:05 का वक्त, धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी का स्वागत।

रात ढलती रही चांद चमकता रहा, रात ढलती रही चांद चमकता रहा, दिल में उनकी यादों का चिराग जलता रहा। ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू, ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू जो बिना कुछ कहे भी हवाओं में महकता रहा। तो रात के 10:09 और कुछ सेकंड्स और खूबसूरत से चांद को वापस एक बार साथ लेकर फिर से आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपके रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में। वो रजनीगंधा जहाँ दिलों के गलियारों से आती है बहुत मीठी सुरीली मोहब्बत भरी बातें, जो कभी कुछ कहकर और कभी सुनकर मुकम्मल कर जाती हैं हमारी आपकी मुलाकात को आसमान में धीरे धीरे चलते उस चांद के साथ। तो चलिए उस चांद का साथ लेकर, आपकी हमारी मुलाकात की बात लेकर रजनीगंधा के सफ़र को हम बढ़ाते हैं आपके साथ। और आप जानते हैं हमेशा की तरह आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो ये सफ़र पूरा होगा और शिद्दत से पूरा होगा। तो गुजारिश, इल्तजा कि आप इस सफ़र में रहें मेरे साथ।

जब कभी गहराई से सोचती हूँ ना, तो लगता है कि वाकई ये बहाने भी कितने ज़रूरी हैं ना ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये बहाने नहीं होते तो आपकी और हमारी मुलाकातों के फसाने कैसे बनते। वैसे भी लोग कहते हैं कि मुलाकातें ज़रूरी होती हैं, वरना लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। इसीलिए मुलाकातों के दौर में बहाने और वो फसाने बेहद ज़रूरी हैं, वो फसाने जो जिनसे गुलजार होते हैं आपकी हमारी मुलाकातों के ऊँचे सिलसिले हैं ना, जिनने बसी मोहब्बत के फूल अपनी खुशबू से दिल के आंगन को महका जाते हैं कई बार। जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, हमने खुद को खुश नसीब पाया। जिक्र जब भी हुआ मोहब्बत का, हमने खुद को खुश नसीब पाया। तेरी यादों का रजनीगंधा दिल में आंगन में महकता पाया। रात के 10:14 का वक्त, रजनीगंधा का सफर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

तो रजनीगंधा इस फूल की जब भी बात आती है ना, तो यकीन मानिए ये महज एक फूल नहीं बल्कि मिसाल है मोहब्बत की पाकीज़गी की। लोग कहते हैं कि मोहब्बत शोर मचाती है अक्सर, पर मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो रजनीगंधा जैसी होती है, खामोश, सफ़ेद, सादगी से भरी, जो रात के सन्नाटे में चुपचाप बस अपनी महक को बिखेरती है। जैसे चांद अपनी चांदनी से धरती को चूमता है, वैसे ही ये फूल अपनी खुशबू से कहीं रूह को छू लेते हैं और फिर फिजाओं में बिखरती है एक आरजू हवाओं के साथ किसी के आने की, जैसे हर बार हमें आरजू रहती है आपके आने की। मध्यम सी हो गई हैं धड़कनें आज फिर, मध्यम सी हो गई हैं धड़कनें आज फिर, आज फिर उसका ख्याल छू गया मुझे।

सच है ये बात, आसमान में जब तारों की बारात चलती है, ठंडी हवाएं जब चांद का साथ लेके साथ चलती हैं, तो यकीनन दिल में ऐसी आरजुओं का पलना बहुत जाहिर सी बात होती है। घड़ी की सुइयां जैसे ही एक दूसरे से मिलती हैं, शहर की रफ्तार कहीं थम सी जाती है। खिड़की से बाहर अगर जाकर देखें तो एक मध्यम सी चांदनी जैसे पूरे आसमान को गले लगाई बैठी हुई लगती है। रात की खामोशी, ठंडी हवाओं का रुख, ये सब मिलकर जैसे दिल के किसी कोने में सोई हुई यादों को, उनके एहसास को जगा देते हैं, किसी आरजू को जगा देते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे ये रात खुद हमसे कह रही हो कि चलो मोहब्बत के सफ़र पर चलते हैं, वो मोहब्बत का सफ़र जो शुरू होता है रजनीगंधा के उस गलियारे से जिसे हर रात 10 बजे हम और आप मिलकर यहाँ जीते हैं।

मौसम खूबसूरत हो, हम सफ़र दिल का हो, तो फिर कैसे कोई मोहब्बत के रास्तों पर चलना नहीं चाहेगा। वैसे कहते हैं कि मोहब्बत का सफ़र भी बहुत अजीब है ना। इसके के लिए ना किसी गाड़ी की ज़रूरत है, ना किसी टिकट की, बस एक ख्याल, एक चेहरा और बंद आंखों में तैरते हुए कुछ हसीन लम्हे। जब बाहर ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हों तो दिल किसी के साथ बिताए उस वक्त को ढूंढ ही लेता है। उन पलों को कहीं ना कहीं वो खोज कर ले ही आता है, तब जब बातें कम थीं और खामोशियां ज़्यादा, जिनमें सिर्फ नज़रों से इजहार होता था और दिल की धड़कनें पूरी दास्तान कह जाती थीं। तभी तो शायद वो कह बैठे कि दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है। क्योंकि ये राज सिर्फ नज़रें ही समझ पाती हैं, वही कह पाती हैं, और दिल उन्हें बहुत खूबसूरती के साथ अपने अंदर सहेज पाता है। यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है ना।

कई बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये राज हर दिल को समझ नहीं आते, क्योंकि ये दिल से निकलने वाले किस्से हैं जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचते हैं और उस राज को दो दिल ही समझ पाते हैं। तो जैसे ये दिलों के राज गहरे हैं ना, वैसे ही अगर इस रात को भी देखें ना, तो इस रात की गहरी खामोशी में भी कहीं एक राज सा नज़र आता है। रात की इस गहरी खामोशी में भी एक अजीब सा जादू नज़र आता है। दिन के उजाले में हम भागते रहते हैं, भागते फिरते हैं जिंदगी की तलाश में, मगर अजीब बात है ना ये कि जिंदगी हमें तब मिलती है जब हम इस रात के सन्नाटे में कहीं अकेले बैठते हैं, खुद से बातें करते हैं। और फिर उस वक्त ये खामोशी ही है जो हमें बताती है कि ठहरना भी कितना ज़रूरी है। और इसी ठहराव के बीच जब कभी ठंडी हवा का कोई झोंका खिड़की से बाहर आता हुआ अंदर आता है ना, तो यकीन मानिए वो सिर्फ हवा का झोंका नहीं होता, बल्कि अपने साथ किसी की याद को भी लेकर आता है। और तब समझ आता है कि जिंदगी और कुछ नहीं, बस प्रेम का एक अंतहीन सफ़र है, जिस सफ़र पर दो दिल एक दूसरे के हम सफ़र बनकर चलते चले जाते हैं, जैसे हवा और खुशबू, जैसे पंख और परवास, एक दूसरे के साथ बस उस सफ़र पर चलते चले जाते हैं।

पहुंचती है तो सिर्फ महज खुशबू नहीं होती, बल्कि वो खुशबू जो यादों के बंद दराज को भी खोल देती है कहीं जाकर। और बात जब यादों की हो तो कहते हैं कि यादों का सीधा ताल्लुक तो मोहब्बत से ही है, वो मोहब्बत जो दिलों में पलती है बहुत सारे अफसाने लेकर, बहुत सारे जज्बात लेकर, कभी कुछ तल्ख तो कभी कुछ मीठी सी याद लेकर। कुछ खटकता है पहलू में मेरे रह रह कर, कुछ खटकता है पहलू में मेरे रह रह कर, अब खुदा जाने दिल है मेरा या है याद तेरी।

तो तभी तो मैंने आपसे बात कही कि अगर हम सफ़र दिल का हो तो रास्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं, और फिर वो सफ़र जिस सफ़र पर दो दिल एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, वैसे जैसे पंख और परवाज, जैसे हवा में बिखरी खुशबू, तो यकीन मानिए वाकई उस वक्त वो सफ़र फिर कहीं जैसे एक अंतहीन सफ़र की तरह ही लगता है। और जब ये खुशबू सांसों से होती हुई दिल तक पहुँच

तभी तो कहती हूँ कि यादों का सीधा ताल्लुक मोहब्बत से है, वो मोहब्बत जो वाकई उन्हें नसीब होती है जो खुशकिस्मत होते हैं। हालांकि लोगों को कई बार ऐसा भी लगता है कि मोहब्बत क्या है, वो तो कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकती है, किसी से भी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे लोग कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो मोहब्बत क्या चीज़ है। पर वो ये नहीं जानते कि मोहब्बत कोई चीज़ नहीं जो ढूंढने से मिल जाए, ये तो वो एहसास है जो तब जागता है जब चांदनी रातों में कहीं किसी झील के साहिल से उठती हुई ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ किसी की याद का अक्स दिल के आईने में उतर जाता है। याद आया कुछ, कोई लम्हा,

कोई पल जब किसी पल कहीं चांदनी रात में किसी को देखा था और उसके बाद वो अक्स हमेशा हमेशा के लिए दिल में कहीं उतर सा गया, नजरों में कहीं बस सा गया। और जब भी कभी ऐसा होता है ना, उस वक्त आसमान से बरसती उस चांदनी के नूर और रात की इस तन्हाई में मोहब्बत फिर कोई कहानी नहीं रह जाती। यकीन मानिए, वो किसी इबादत की तरह हो जाती है, वो इबादत जिसे आप हर पल जीना चाहते हैं। खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, खामोश रात के पहलू में सितारे सो गए, चांदनी के साए में हम तुम खो गए। ठंडी हवाओं ने जब चुपके से कान में कुछ कहा, ठंडी हवाओं ने जब चुपके से कान में कुछ कहा, हम फिर से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हो गए। तो चलिए एक बार फिर से याद कीजिए उसी चांदनी रात को, जब किसी वक्त किसी दौर में किसी को देखना और फिर उसका अक्स सीधा दिल में उतर जाना।

ऐ सनम जैसे चांद के रोशन होने से ये रात है, जैसे चांद के होने से रोशन ये रात है, हाँ तेरे होने से मेरी ज़िंदगी में भी वैसी ही कुछ बात है। बेशक तुझे चांद सी सूरत दी है उस खुदा ने, बेशक तुझे चांद सी सूरत दी है उस खुदा ने, लेकिन मेरी मोहब्बत में भी कुछ अलग ही बात है। रात के 10:54 का वक्त और ये खूबसूरत सा नगमा आप दिए रेडियो ज़ेड पर।

नमस्कार। रात के 11 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर जोर दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियों तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। भारत की प्रथम हब एवं स्पीक विमेन संचालन व्यवस्था के शुभारंभ से पूर्व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री दो दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन का निर्माण भी किया। 25 जून को प्रातः वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रारंभ होने जा रही हब एवं स्पीक विमान सेवा के सफल आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन, SF के उच्च अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्य सचिव SP गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश को PM सूर्यघर योजना में देशभर में प्रथम स्थान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है।

0: जवान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: ये है 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: रात की 11:04 का वक्त, वापस आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। और गुजारिश हमेशा की तरह यही कि सफर को पूरा करने के लिए बस कुछ देर और यही रहिए मेरे साथ।

रात के 11:09 का वक्त हो चुका है और इस वक्त में एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी रज्जा आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। वो रजनीगंधा जहाँ बातें हैं किस्से हैं दिलों की, जहाँ कहानियाँ हैं मोहब्बत की। अच्छा सच है वैसे बात ना कि जिंदगी की दास्तान भी वाकई बहुत अजीब है। कई बार हम ढूंढते कुछ हैं और हमें मिल कुछ और जाता है, चाहते हम कुछ और हैं कि ऐसा हो लेकिन न जाने क्यों हो कुछ और जाता है। कई बार मंजिलें तो सामने होती हैं पर फिर भी रास्ते न जाने क्यों कहीं और मुड़ जाते हैं, उस मोड़ पर जहां से ना कोई आस ना किसी की सदा और ना कोई पुकार सुनाई पड़ता है कभी, और फिर दिल से वाकई आवाज आती है कि हाँ जिंदगी की दास्तान अजीब है। 11:10 का वक्त रजनीगंधा में आपके साथ मैं आपकी दोस्त आपकी रजा।

पता है दिल चाहता नहीं कई बार कि वो कभी किसी के साथ कुछ बेवफाई के दौर में आए. हो सकता है कभी कुछ ऐसे लम्हात होते हों, कभी कुछ ऐसे वक्त होते हों कि हाँ दिल कभी मजबूर भी हो सकता है. लेकिन वो कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ हैं होता कुछ है, और तब उस मोड़ पर याद आता है कि हाँ ज़िंदगी की दास्तानें वाकई बहुत अजीब हैं. और शायद ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ कई बार हमारे हिसाब से नहीं होती गई. कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को पा लेने की, रिश्तों को बचाने की भी, सपनों को सहेज कर रखने की भी, लेकिन बावजूद इसकी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हर चीज़ हमारे अख्तियार में जो नहीं होती. और फिर उस वक्त में, उस पल में समझ आता है कि ज़िंदगी में किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ मिलता नहीं. कभी कुछ अधूरा, कहीं कुछ आधा सा ज़रूर सा रह जाता है. और शायद इसीलिए फिर ये दिल से आवाज़ भी आती है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता. रात के 11:16 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर.

सच है ये बात कि हर किसी को कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन परेशानी का सबब तो तब बनता है जब इस बात को जानते हुए भी हम इस बात से सबक नहीं लेते। कहते हैं कि जिंदगी की किताब में सबसे महंगे सबक भी अक्सर वही होते हैं जो हमने सबसे सस्ती गलतियों से सीखे होते हैं। हर इंसान एक चलती फिरती किताब की तरह है कहीं, और इसकी जिंदगी उस किताब पर लिखी किसी कहानी की तरह। वो कहानी जो कभी पूरी है, कभी अधूरी है, तो कभी आधी है, कभी संजीदा है, तो कभी खुशगवार भी है, कभी जानी सी भी है, कभी पहचानी भी है, तो कभी कुछ शोर मचाती हुई, तो कई बार रजनीगंधा के फूलों की तरह खामोशी से अपनी महक को कहीं पीछे दर्ज कराती हुई। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ वही कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जब इस बात का सबक हम सीखते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी की कहानी को बेहतर तरीके से जी पाने की कोशिशों में भी साकार होते हैं। 11:22 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

तो जहाँ हर इंसान एक चलती फिरती किताब की तरह है और ज़िंदगी के सबसे गहरे सबक भी अगर किताबों से ही मिलते हैं, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं

कि ज़िंदगी को समझने के लिए किताबों की नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत होती है उस एकांत की जो अक्सर आपको रात के सन्नाटों में ही मिलता है। वो एकांत जहाँ आप खुद को समझ पाते हैं, खुद के बारे में जान पाते हैं, खुद से बातें करते हैं, जहाँ आपके साथ सिर्फ आपकी यादें, आपके सपने, और वो एक नाम होता है जो आपके दिल की धड़कन संभालता है, जो आपका अच्छा बुरा सही और गलत पहचानता है। और ये एहसास अक्सर रात के सन्नाटे में ही महसूस हो पाते हैं। तब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई पड़ती हैं जो ये कहती हैं कि तुम हो तो हाँ मैं हूँ। इसलिए कई बार सिर्फ किताबों की ज़रूरत नहीं बल्कि रात के उस गहरे सन्नाटे की ज़रूरत भी होती है जिसमें आप खुद को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं और जान पाते हैं।

कभी महसूस किया है कि दिल की धड़कनें ऐसे आवाज़ क्यों करती हैं, ऐसे सदाएं क्यों देती हैं? शायद तभी जब कोई आपकी ज़िंदगी बन जाता है, वो ज़िंदगी जो दिल की धड़कनों की तरह आपके दिलों में धड़कती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी और प्रेम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी और प्रेम में कोई फ़र्क नहीं है।

क्योंकि जिसने प्रेम नहीं किया उसने जिंदगी को सिर्फ जिया है, महसूस नहीं किया। और जिसने प्रेम को पा लिया या प्रेम में खुद को खो दिया, सही मायने में उसने जिंदगी के सबसे गहरे फलसफे को समझ लिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिंदगी को असल मायने में जीना है अगर, तो प्यार का फलसफा जो है उसको पढ़ना ही होगा, क्योंकि जिंदगी का फलसफा प्रेम के बिना अधूरा है। इसीलिए जिंदगी और प्रेम एक हैं, एक दूसरे से अलग कतई नहीं। तो जो ये कहते हैं कि जिंदगी और प्रेम में फर्क है, तो मैं उनसे कहूंगी कि नहीं, जिंदगी और प्रेम में कतई कोई फर्क नहीं।

एक बार किसी ने पूछा था मुझसे कि प्रेम में इतनी तड़प क्यों है, क्यों तन्हाई के दौर है उसमें। तो मैंने बस मुस्कुराकर उससे ही कहा कि बिना अंधेरे के दिए की अहमियत कैसे पता चलेगी। ये रात की खामोशी भी तो दिन के शोर के बाद ही खूबसूरत लगती है ना। प्रेम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमें तोड़ता है, हमें तन्हाई में रखने के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि हम अंदर से खूबसूरत

और जिसमें तड़प हो तभी मोहब्बत का एहसास गहरा है। वो मोहब्बत जो चुपचाप दिल के किसी कोने में कहीं दिया बनकर जलती रहती है, बिना किसी शर्त, बिना किसी चाहत के। इसीलिए प्रेम में तड़प और तन्हाई, ये दौर हमेशा शायद कुछ ज्यादा ही होते हैं।

0: सच है ये बात कि प्रेम किसी मंदिर में जलते उस दिए की तरह है जो निस्वार्थ है, निश्चल है, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ जलता है उसकी आस में जिसे वो चाहता है। प्रेम भी तो कुछ ऐसा ही है ना, जो कभी ऊंची आवाज में अपना नाम नहीं पुकारता, ना वो दावा करता है, ना क्रोध में रिश्तों को तोड़ता है कभी। प्रेम तो बस सह लेता है, ठहर जाता है और फिर दुआओं की तरह बस दुआएं ही देता है, क्योंकि प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप ही शायद किसी को बिना शर्तों के अथाह प्रेम करना है। इसीलिए प्रेम मंदिर में जलते किसी दिए की लौ की तरह ही है।
1: जमाना इसी

और शायद इसीलिए प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि उसमें दिल अपना कुछ खोता नहीं बल्कि और गहरा हो जाता है। और प्रेम पाना वो किसी सम्मान से कम नहीं, क्योंकि हर किसी को किसी की रूह में जगह जो नहीं मिलती। और फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें सच्चा प्रेम है तो वहाँ शिकायतें भी धीरे बोलती हैं और तकलीफ़ें भी थोड़ी कम लगती हैं। तो अगर कभी कोई ऐसा रिश्ता आपके पास है तो यकीन मानिए वो रिश्ता शुक्रिया का हकदार है जिन नज़रों में आपके लिए प्रेम पनपता हो, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ है और अगर किसी को मिल जाए तो बिल्कुल उपहार ही है।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत रोड शो में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी व स्पीड का 3S मॉडल बन चुका है। उद्योग के लिए ये तीनों आयाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेमिसाल कनेक्टिविटी, पारदर्शी प्रशासन और संस्थाओं का बेहतर नेटवर्क नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह महोबा के चरखारी स्थित ऐतिहासिक संभलगढ़ फोर्ट पैलेस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं कोचिंग संस्थानों, अध्ययन केंद्रों के विधि सम्मत संचालन को सुनिश्चित करने हेतु चित्रकूट विकास प्राधिकरण, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत 10 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:14 पर और सूर्यास्त 7:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेंदो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर

स्थित ऐतिहासिक संभलगढ़ फोर्ट पैलेस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं कोचिंग संस्थानों अध्ययन केंद्रों के विधि सम्मत संचालन को सुनिश्चित करने हेतु चित्रकूट विकास प्राधिकरण, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत 10 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:14 पर और सूर्यास्त 7:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेडियो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर